निकट वस नाही प्रभ दूर, लोक पति आरै कछु ना पाइया, साच लगै ताह मैं जाइया। जिसनो लाए लय सो लागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै, दुरमत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दुइ कर जोड़ करो अरदास, तुद पावै तायाण रास, कर कृपा अपनी भगती लाए। जन नानक प्रभसदा ते आए, सुही महला पंजवा, तन सोहागन जो प्रभु पछानै, मानै हुक्म तजै अभमानै, प्रेसे राती रलिया मानै, सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, मन तन अर्प तजला जलुकानी, रहाओ। सखी सहेली कौ समझावै, सोई कमावै जो प्रभावै, सा सुहागण अंक समावै, गर्भ घेली महल न पावै, फिर पछतावै जब रहन विहावै, कर्महीन मनमुख दुख पावै, बिनो करीजे जाना दूर, प्रभ अविनाशी रहा भरपूर, जन नानक गावै देखा दूर, सुही महला पंजवा। गृह वस गुर की ना हो कर की नार, दस दासी कर दीनी पतार, सगल समग्री मैं कर की जोड़ी, आस प्यासी पिर कौ लोड़ी, कवन कहां गुण कंत प्यारे, सुगुण स्वरूप दयाल मुरारे, रहाओ। सत सिंगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम तम बोल मुख खाया, कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे, जा पिर कर आवे, गुण कामण कर कंत।

प्रगटया सूर ज्योत उजियारा सेज विशाई सरदया पारा नव रंग लाल सेज राम ने आया जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उम क्यों हियो मिलन प्रभताई खोजत चरियो देखो प्रे जाई सुनत संदेसरो प्रे गृह सेज विशाई भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई किन बिद हियरो धीरे निमानो मिल साजनहा तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी तन कंता तन सूती पिर सद जागंता पियो मदरो तन मतवंता तन जागे जे पिर बोलंता पही निरासी बहुत दिन लागे देह दिसंतर मैं सगले चागे खिन रहन ना पावाओ बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिले इस पागे भयो कृपाल सतसंग मिलाया बूझी तप्त करै पिर पाया सगल सिंगार हुण मुझे सुहाया कहो नानक गुर परम चुकाया जै देखा तै पिर है भाई खोलियो कपाट ता मन ठहराई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा क्या गुण तेरे।

काल रंगीले प्रीतम मन मोहनो तेरे दर्शन कहो हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोह दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै मेरे ठाकुर अगम अपारे क्या सेवक मावाओ क्या कहरी जावाओ बिदगित पावाओ दरसारे मित नहीं पाईए अंत न लहिए मंत्र से चरनारे पावो दान ढीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे जन नानक कहो गुर कृपा तारी प्रभात दे निस्तारे सुही महला पंजवा करती जा एको अंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मांगन बहुता महला पावे कहतो पहुता जो प्रेमाने तिन की रीसा कूड़े मूर्ख की हाठीसा रहाओ पेख दिखावे सच ना कमावे कहतो महली निकट ना आवे अतीत सदाए माया का माता मन प्रीत कह मुखरा।

कहो नानक प्रभु न सुनी जय, कुचल कठोर कामी मुक्त की जय। दर्शन देखे की वडियाई, तुम सुखदाते पुरख सुभाई। रहाओ दूजा सूही महला पंजवा, बुरे काम को ऊठ खलोया। नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बुझे ना याना। माया मोह रंग लपटाना, रहाओ लोभ लहर कौ बिकस फूल बैठा। सात जना का दर्शन डीठा, कबहू ना समझे अज्ञान गवारा। बहुर बहुर लपट्यो जंजारा, रहाओ बिखे नाद करन सुन पीना। हर जा सुनते आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेखते अंदे। छोड़ जाहे झूठे सब तंदे, रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जय। कर कृपा मोहे साध संग दीजै, तौ किश पाईऐ जौ होइऐ रेना। जिसै बुझाए तिस नाम लैना, रहाओ सुही महला पंजवा। कर मैं ठाकुर नदर ना आवै, गल मैं पाहण लै लटकावै। भरमे पूला सागत फिरता, नीर बरोलै खप खप मरता। रहाओ जिस पाहण को ठाकर कहता, ओह पाहण लै उसको डुबता। गुनहगार लूण हरामी, पाहण नाव ना पार गिरामी। गुरमिल नानक ठाकर जाता, जल थल महियल पूर्ण विधाता। सुही महला पंजवां।

असाच नाम की अमृत वर्खा गोहज कथा ए गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही महला पंजवा जा कै दर्श पाप कोट उतारे भेटत संग एहो पव जल तारे ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हमको हर नाम चितारे रहाओ जा का शब्द सुनत सुख सारे जा की टहल जमदूत बिदारे जा की पीरक इस मने सुधारे जा कै सिमरन मुख उजलारे प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे सरन नानक तिन सद बलिहारे सूही महला पंजवा रहन ना पावै सुर नर देवा ऊट सिधारे कर मुन जन सेवा जीवत पेखे जिन्नी हर हर त्याया साध संग तिनी दर्शन पाया रहाओ बाद सहा सहा वापारी मरना जो दिसै सो कल खरना कूड़े मोहे लपट लपटाना छोड़ चलिया ता फिर पछताना किरपा निधान नानक कौ करहो दात नाम तेरा जपी दिन रात सूही महला पंजवा कड़क।

सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम्या गोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोलाया तेरा। सुही महला पंजवा, प्रातः काल हर नाम उचारी, ईत ऊत की ओढ़ सवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम। रहाओ प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ, जीवत मरत निहचर पावे थाओ। सो साहो सेव जे टोट ना आवे, खात खर्चत सुख अंध विहावे। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सुही महला पंजवा, गुर पूरे जपहे दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल। पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा, रहाओ। साध संगत स्यों प्रीत बन आई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न सके तीने ताप। निमख न बिसरे हर चरण तुम्हारे, नानक मांगे दान प्यारे। सुही महला पंजवा, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे।

जिस कृपा करे बसै तिस नेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे पज दिन नित रैणी, जन पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बेकार दो कर चहारत, राम रतन रित नहीं तारत। परन पोखन संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर। हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब बिन से, गुर पूरे मिल पापत जायण। रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म ते आई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पै जप दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवा, कर का काज ना जानी रूड़ा, झूठे तंदै रचियो मूड़ा।

दर्शन कह लोचे सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई। प्रेम विशोहा करत गसाई निर्दय जंतु तिस दया ना पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई करवास ना देवे दुत्तर माई। दिन रहने अपना किया पाई किस दोष ना दी जय कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भली सुहावी छापरी जा मैं गुण गाए कित ही कामना तौल हार जित हर बिसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी सुख मन संतोखाए। ऐसो राजना कित काज जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै ओह सोभा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया जेहरा चलो बाए। सब किश तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए। सास सास सिमरत रहा नानक दान पाए। सूही महला पंजवा हर का संत प्राण तानु तिसका पनिहारा। भाई मीत सुत सगलते जी हूं ते प्यारा। रहाओ केसा का कर बीजना संत चौर टोलावो। शीर्ष निहारो चरण ताल तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई। ताजा मान सरणी परो हर गुण निद पाई। अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार। अमृत बचन मन में सिंचाओ बंदाओ बार बार। चितव मन आसा करो जन का संग मांगो। नानक को प्रभ दया करो दास चरणी लागो। सुही महला पंजवा जिन मोहे ब्रह्मंड खंड ताहू मैं पाओ। राख लेहो एहो बिखई जियो देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी ता कै पाछे जाओ। छोड़ जाहे जो सगल कहो फिर लपटाओ। करहो कृपा करना पते तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवा कर पंजवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना जप मन गोबिंद एक है और नहीं को लेख है। संत लाग मने छाड़ दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया। विच मन कोट वरिया निज मंदिर प्रिया तहां आनंद करिया। न मरिया न जरिया कीर्तन जुरिया बहुविध फिरिया पर कौ हिरिया। बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया। सुही महला पंजवा रास मंडल कीनो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा पेखै खुशी भोगन ही हारा। सब रस लैत बस्त निरारा वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा नानक रेण।

जैसे पवन चुलाया, सुन सुन ही डराया, कर रो थ्रमराया, ग्रह अंध को पाया, पावक सगराया, गही ओढ़ साधाया, नानक हर त्याया, अब मैं पूरा पाया। राग सूही महला पंजवां, कर छेवां, एको ओंकार, सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेनंतियां, मिले नाम आधारा, तुठा सच्चा पात साहो, ताप गया संसारा, भगता की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा रहाओ, सच तेरी सामगरी, सच तेरा दरबारा, सच तेरे खजीनिया, सच तेरा पासारा, तेरा रूपया गम है, अनूप तेरा दरसारा, हम कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा, सबे इच्छा पूरियां, जा पाया अगम्या पारा, गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म, तेरिया चरणा कौ बलिहारा। राग सूही महला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरा पाना, तू है मनाए, जिसनो होए दयाला, साई भगत जो तुद पावे, तू सर्व जिया प्रतपा।

मेरे राम हौसो थान पालन आया, खोजत खोजत पाया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई। साधक सिद्ध फिरै बिल लाते, ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवधूता। तिन पी अंत न पायो तेरा, लाए थके बिपूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया। सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक, ता मन तन हर हर त्याया। सुही महला पंजवा, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। संत हो सागर पार उतरियै, जे को बचन कमावै संतन का। सो गुर प्रसादी तरियै रहाओ, कोट तीर्थ मजन इस नाना, इस कल में मैल भरी जै। साध संग जो हर गुण गावै, सो निर्मल कर लीजै। वेद कतेब सिमरत सब शास्त, इन पढ़िया मुक्त ना होई। एक अखर जो गुरमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद बैस, उपदेश चौ वर्ण कौ सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मैं, कड़कट नानक माजा। सूही महला पंजवा, जो किश करै सोई प्रमानै। ओए राम नाम रंग राते, तिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभ के चरण पराते। मेरे राम हर संतां जीवट ना कोई, भगता बने आई प्रभ अपने स्यों। जल थल मैयल सोई रहाओ, कोट अपराधी संत संग उदरै। जमता कै निर्ण आवै, जन्म जन्म का विछड़िया होवै। तन हर स्यों आन मिलावै, माया मोह परम पौ काटै। संत सरण जो आवै, जिहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावै। जन की महिमा केतक वर्णौ, जो प्रभु अपने पाणे। कहो नानक जिन सतगुर भेटिया, से सब ते पए निकाणे।

आस चुकाई मेरे राम राए तुद चित आया उबरे तेरी टेक परवासा तुमरा जपनाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंध कूबते काल लिए तुम आप है कृपाला सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेसर बंधन काट छड़ाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुखदाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवां जब कछ ना सीओ तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देख ठाकुर रचन रचाया मेरे राम राय मुझते कछु न होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतहू काची दे आणी कृपा करो प्रभ करण हारे तेरी बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही ते आई है तेरी गतमित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना सूही महला पंजवा पाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा प्रवान गणी से ही एह आए सफल तिना के कामा मेरे राम हर जन कह हम

ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सूही महला पंजवां, सगल त्याग गुरसरणी।

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौतरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्या इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे, सगल मनोरथ तिसके पूर्ण, जिस दया करे प्रभ आपे, दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी, तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजै, नानक साधर वाला। राग सूही अष्टपदियां महला पहला, कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत में लावा होई, ना मैं रूप ना बंके नैना, ना कुल ढंग ना मीठे बैना, रहाओ सहज सिंगार, कामन कर आवै ता सुहागण, जा कंतै पावै, ना तिस रूप ना रेख्या काई, अंत ना साहेब सिमरिया जाई, सुरत मत नाही चतराई, कर कृपा प्रभ लावो पाई, खरी सयाणी कंत ना पाणी, माया लागी परम पुलाणी, हौ मैं जाई ता कंत समाई, तौ कामण प्यारे नव निद पाई, अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गै ले हो प्रीतम प्रबराया, पंडित नानक सौ है पी होसी, जय पावै प्यारा तै रावेसी। सूही महला पहला, करनावा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंब का, थोड़िया दिन चार जियो, विनावै परम पुलिया, ठग मुठी कूड़ियार जियो, सच्चे सेकी रत्या, जन्म न दूजी वार जियो, रंगे का क्या रंगी है, जो रत्ते रंग लाए जियो, रंगण वाला सेवी है, सच्चे सोच तलाए जियो, रहाओ चारे कुंडा जे पवै, बिन भागा

तिन मुख नाम न उपजे दूजे व्यापे चोर जियो मूल न बुझे अपना से पशुआ से टोर जियो नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो करता चेतना आवई फिर लगे दुख जियो सुख दुख दाता मन वसै ते तन कैसी भुख जियो बाकी वाला तलबी है सिर मारे जंदार जियो लेखा मंगे देवना पुछे कर बिचार जियो सच्चे की लिव उबर है बख्शे बख्शन हार जियो अन को की जय मित्रा खाक रलै मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवे जाए जियो नजर प्रभु ते छुट्टी है नजरी मेल मिलाए जियो गाफल ज्ञान में होनिया गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो खिंचो तान में गुची है बुरा भला दोए नाल जियो बिन शब्द पैर त्या सब जो ही जमकाल जियो जिन कर कारण तारिया सब सहदे आधार जियो सो क्यों मनो विसारी है सदा सदा दातार जियो नानक नाम ना

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया चलै जन्म सवार वखर सच लै पथ पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ मन तन सच सलाहे साचे मन पाया लाल रता मन मानिया गुरपूरा पाया हौ जीवा गुण सारे अंतर तू वसै मन माए सहजे रस रसै मूर्ख मन समझाए आखो के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलै गुण नाल नाही दुख संतापना मन मुख परम भुलाना ना तिस रंग है मरसी होए विडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा कर आणिया गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सूही महला पहला ज्यों आरन लोहा पाए पन कढ़ाई है त्यों साक्त जोनी पाए पवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हो मैं आवै जाए परम पुलावना रहाओ तू गुरमुख रखन हार हर नाम ते आई है मेलै तुझै रजाए शब्द कमाई है तू कर कर वेखै आप देह सो पाई है तू देखै थापो थाप दर भी नाई है देही होवग खाक पमन उडाई है एह किथे कर औताक महल ना पाई है देहो दीवी अंध कोर कब मुहाई है गर्भ मुसै कर चोर के शुरू आई है गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है शब्द निवारी आग जोधी पाई है लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है सदा रह निकाम जे गुरमत पाई है आराध्य है हर नाव मन वसाई है नानक मेल मिलाए जे तुद पाई है सूही महला पहला मनो ना नाम विसार अहन सत्याई है ज्यो राखै कृपा तारत वै सुख पाई है मैं अंदले हर नाम लखटी टोहनी रहो साहिब की टेक ना मोह मोहनी रहाओ जै देखो तै नाल गुर दे खालिया अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुद पावै तवैर जाए परम पौ पंजना जन्मत ही दुख लागै मरना आए कै जन्म मरण परवान हर गुण गाए कै हौ नाही तू होवै तुद ही साजिया आपे थापो थाप शब्द निवाजिया देही पसम रुलाए ना जापी कह गया आपे रया समाए सो विस्माद पया तू नाही प्रभ दूर जाने सब तू है गुरमुख वेखा दूर अंतर पी तू है मैं दीजै नाम निवास अंतर सांत होए गुण गावै नानक दास सतगुर मत दे राग सूही महला तीजा कर पहला अष्टपदिया एको अंकार सतगुर प्रसाद नामै ही ते सब किश होवा बिन सतगुर नाम ना जापै गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापै कौडी बदलै जन्म गवाया चीनस नाही आपै गुरमुख होवै ताए को जाने हौ मैं दुख ना संतापै बलिहारी गुरे अपने विटों जिन साचे स्यों लिवलाई शब्द चीन आत्म पर गासिया सहजे रिया समाई रहाओ गुरमुख गावै गुरमुख बूझै गुरमुख शब्द बीचारे जियो पिंड सब गुरते उपजै गुरमुख कारज सवारे मनमुख अंधा अंध कमावै बेखटे संसारे माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुरियत प्यारे
ਸੋਈ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਚਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਫਤ ਹੈ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੈ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੱਟੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਾਏ ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਸਾਚਾ ਰੰਗਰਾਤਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਮਨਮੁਖ ਸਦ ਹੀ ਕੂੜੋ ਬੋਲੈ ਬਿਖ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਖਾਏ ਜਮਕਾਲ ਬਾਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਦਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਮਣ ਛਡਾਏ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਣ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਅੜ ਸੜ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਏ ਤਿਤ ਨਾ ਤੈ ਮਲ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ ਨਾ ਲਾਏ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਕਿਛ ਹਰ ਤਿਸ ਕੇਰਾ ਦੁਰਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਹਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸਹਿਜੇ ਚਾਖੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਯਗਨ ਬੁਝਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਾਤਾ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤਾ ਸਹਿਜੇ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਏ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਪਿਆਰੇ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸਮੈ ਵਰਤੈ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪੇ ਮੇ ਲਏ ਤਾਂ ਬਖਸੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਸਵਾਰੇ ਸਭੋ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮੋ ਵਰਤੈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਾਇਆ ਕਾਮਣ ਅਤ ਸਵਾਲਿਓ ਪਿਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਲੇ ਪਿਰ ਸੱਚੇ ਤਿਸ ਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ

काया अंदर सब किश वसा है, खंड मंडल पाताला। काया अंदर जग जीवन दाता वसा है, सबना करे प्रतपाला। काया का मन सदा सुहेली, गुरमुख नाम समाला। काया अंदर आपे वसै, अलख ना लखया जाई। मन मुख मुग्ध बूझै नाही, बाहर पालन जाई। सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लिखाई। काया अंदर रतन पदार्थ, भगत परे भंडारा। इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी, हाट पटन बाजारा। इस काया अंदर नाम नवनिध पाई है, गुर कै शब्द विचारा। काया अंदर तोल तुलावै, आपे तोलनहारा। एहो मन रतन जवाहर माणक, तिसका मोल अफारा। मोल कित ही नाम पाई नाही, नाम पाई गुर बिचारा। गुरमुख होवै सो काया खोजै, होर सब परम पुलाई। जिसनो दे सोई जन पावै, होर क्या को करे चतराई। काया अंदर पाओ पाओ वसै, गुर प्रसादी पाई। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, सब ओपत जित संसारा। सच्चा अपना खेल रचाया, आवा गौण पसारा। पूरा सतगुरे आप दिखाया, सच नाम निस्तारा। सा काया जो सतगुर सेवै, सच्चा आप सवारी। विण नावै दर ढोई नाही, ता जम करे खुवारी। नानक सच वडियाई पाए, जिसनो हर कृपा धारी। राग सुही महला तीजा, कर दसवां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद दुनिया ना साला है, जो मर वंज सी। लोका ना साला है, जो मर खाक थी। वाहो मेरे साहेबा वाहो, गुरमुख सदा सलाही है, सच्चा वे प्रवाहो। रहाओ दुनिया केरी दोस्ती, मनमुख दज मरन। जंपर बदे मारी है, वेला ना लाहन। गुरमुख जन्म सकार था, सच्चे शब्द लगन। आत्म राम प्रगासिया, सहजे सुख रहन। गुर का शब्द विसारिया, दूजे पाए रिचन। तिसना भुख ना उतरै, अंधन जलत फेरन। दुष्टा नाल दोस्ती, नाल संतां वैर करन। आप डुबे कुटुंब स्यों, सगले कुल डोबन। निंदा भली किसै की नाही, मनुख मुग्ध करन। मोह काले त्रिनिंदका, नरके कोर पवन। ए मन जैसा

राग सूही अष्टपदियां महला चौथा कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा हाँ तिस पै आप विचाई दर्शन हर देखण कै ताई कृपा करै ता सतगुर मेलै हर हर नाम ते आई रहाओ। जे सुख देहे ता तुझे आराधी दुख पी तुझे ते आई जे भुख देहे ता इतही राजा दुख विच सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आ

मन कुचज जी अमावन डोसड़े हौ क्यों सौ रावण जाओ जियो एक दू एक चढ़न दिया कौन जाना मेरा नाओ जियो जिन्नी सखी सौरावे आ से अंबी शावड़ी ये जियो से गुण मंजना यावनी हौ कह जी दोस्त रेव जियो क्या गुण तेरे विथरा हौ क्या क्या किन्ना तेरा नाओ जियो एक तटोल ना अंबड़ा हौ सतगुर बाणा तेरे जाओ जियो सोइना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यो लाया चित जियो मंदिर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरा अस जियो हौ एनी टोली पुली अस तिस्कंत ना बैठी पास जियो अंबर कूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो सातन चली साहोरे क्या मोह देसी अगे जाए जियो सुती सुती चाल थिया पुली वटड़ यास जियो तै सह नालो मुक्ति अस दुखा को तरियास जियो तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो सवराती सोहागणी मैं डोहागण काई रात जियो सुही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी राह जियो तुद अंतर हो सुख वसा तू मंत्र साबाह जियो पाणे तख्त वडाईया पाणे पीखो दास जियो पाणे थल सिर सर्व है कमल फुल आकाश जियो पाणे पवजल लंगी है पाणे मंज परियास जियो पाणे सो सहो रंगला सिफतरता गुणदास जियो पाणे सह पीहावला यावन जान मुहिया जियो तू सौ अगमा तोलवा हौ कह कह टह पैया जियो क्या मांगा क्या कह सुनी मैं दर्शन पूख प्यास जियो गुर शब्दी सह पाया सच नानक की अरदास जियो सूही महला पंजवा गुणवंती जो दिसे गुर सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो सोई

कौड़ा बोल न जाने पूर्ण भगवान अवगुण को न चितारे पतत पावनो हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने कहले कट कट वासी सर्व निवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हाँ बिसम पई जी हर दर्शन देखिया पारा मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण का

रोग, शुद्ध पदार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग। गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिंगार, सहज सच फिर रावया हर नामा अवतार। आज्ञाकारी सदा सुहागणो आ मेली करतार, नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार। महला तीजा सुहवीए निमाणी है सो सहो सदा समाल, नानक जन्म सवार अपना कुलपी छुट्टी नाल पौड़ी। आपे तख्त रचायो आकाश पताला, हुक्मे तरती साजिया नो सची धर्मशाला। आप उपायख पाएंदा सच्चे दीन दयाला, सब नारी के संभाहेंदा तेरा हुक्म निराला। आपे आ वरदा आपे प्रतपाला, श्लोक महला तीजा। सुहबता सोहागणी जा मन लह सच नाओ, सतगुर अपना मनाए लै। रूप चढ़ी ता अगला दूजा नाही थाओ, ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे ना हो वई एन सलागे पाओ। नानक सोहागण का क्या चहन है, अंदर सच मुख उजला खसमै माहे समाए। महला तीजा लोका वेह सुहवी सुहा वेस करी, वेसी सह ना पाई है कर कर वेस रही। नानक तिन्नी सह पाया जिन्नी गुर की सिख सुनी, जो तिस पावे सो थी है इन बिद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सिट साजियन बहु पित संसारा, तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा सचे लाख्या पारा।

कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जा का नाओ बबे को। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहकी सार सोहागन जानै, ताजा मान सुखरलिया मानै, तन मन दे न अंतर राखै, अवरा देखना सुनै अपाखै, सो कत जा

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद राग बिलावल महला।

जी जंत सब सरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे, जो तुद भावै सोई चंगा। एक नानक की अरदासे, बिलावल महला पहला। आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान। आपे कर कर वेखै तान, तू दाता नाम प्रमाण। ऐसा नाम निरंजन देओ, हम जाचक तुम लाखा पेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार, पूंडी कामण कामण यार। राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार। चख छोड़ी सहसा नहीं कोए, बाप दिसै वे जात ना होए। एके कहो नाही पौ कोए, करता करे करा वैसोए। शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मनसा चै तारिया। अवरना सूजै गुर कौ वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सही ध्याने। हर कै रंग रता मन माने, मनमुख परम भुले बौराने। हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै। खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसरै हमरो दुखाली। सास गिरास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली। अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए। प्रभ आगमा गोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए। हम मैं मेड़ चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास। गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दसन दास। जन नानक हर नाम धन रास। बिलावल महला तीजा, कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया। त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटुंब सहित सिओ। जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवै। अहला जन्म गवाया, दूजा पाव ना दे लिव लागण। जिन हर के चरण विसारे, जग जीवन दाता जन सेवक तेरे। तिनके तै दुख निवारे, रहाओ तू दयाल दया पदाता। क्या है जंत विचारे, मुक्त बंद सब तुते होए। ऐसा आख वखाणे, गुरमुख होवै सो मुक्त कहिए। मनमुख बंद विचारे, सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी। सदा रह हर नाले, तिनकी गहन गत कही ना जाई। सच्चा आप सुवारे, परम पुलाने से मनमुख कहिए। नारोवार ना पारे, जिसनो नजर करे सोई जन पाए। गुर का शब्द संभाले, हर जन माया माहि निस्तारे। नानक भाग होवे जिस मस्तक, काले मार बिदारे। बिलावल महला तीजा, अतुल क्यों तो लिया जाए। दूजा होए ता सोजी पाए, तिसते दूजा नाही कोए। तिसदी कीमत किकू होए, गुर प्रसाद वसै मन आए। ता को जाने दुबदा जाए, रहाओ आप सराप कसवटी लाए। आपे परखे आप चलाए, आपे तोले पूरा होए। आपे जाने को सोए, माया का रूप सब तिस्ते होए। जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तसे आए। सब सच दिखाले ता सच समाए, आपे लिव तात है आपे। आप बुझाए आपे जापे, आपे सतगुरु शब्द है आपे। नानक आख सुनाए आपे, बिलावल महला तीजा। साहिब ते सेवक सेव साहिब ते, क्या को कहे बहाना। ऐसा एक तेरा खेल बनया है, समय एक समाना। सतगुर परचय हर नाम समाना, जिस कर्म होवै सो सतगुर पाए। अंधन लागै सही ध्यान ना रहाओ,
क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अवमाना। जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी तब कोई करो दिखा वखियाना। आपे गुर चेला है आपे आपे गुणी निधाना। जो आप चलाए तवे कोई चाले जो हर पावे भगवाना। कहत नानक तू साचा साहेब कौन जाने तेरे कामा। एक ना करमै दे वड़ियाई एक परम पवै अभमाना। बिलावल महला तीजा पूरा थाट बनाया पूरा वेखो एक समाना। इस परपंच में साचे नाम की वड़ियाई मत को तरो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवै सो सतगुर माए समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिसे अंतर रवै हरनामा। रहाओ चहो जुगा का हुन नबेड़ा नर मनुखा नो एक निधाना। जत संजम तीर्थ ओना जुगा का धर्म है कल मैं कीर्त हरनामा। जुग जुग आपो अपना धर्म है सोध देखो वेद पुराना। गुरमुख जिनी ध्याया हर हर जगते पूरे परवाना। कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए चूकै मन अभमाना। कहत सुनत सबे सुख पावै मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बिलावल गुर शब्द सुहाए। मंगल नारी गावै आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हाँ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए। हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावे सह सुभाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए हर जो वसै मन आए। आपे सोभा सद ही पाए गुरमुख मेले मेल मिलाए। गुरमुख राते शब्द रंगाए निज कर वासा हर गुण गाए। रंग चलू लै हर रस पाए एहो रंग कदे न उतरै साज समाए। अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सच राते तन बौन ना फेरा नानक नाम दरड़ाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा पूरे गुरते वड्याई पाई अचिंत नाम वस्या मन आई। हाँ मैं माया शब्द जलाई दर साचै गुरते सोभा पाई। जगदीश सेवो मैं अवर ना काजा अन दिन अंध होवे मन मेरा। गुरमुख मांगाओ तेरा नाम निवाजा। रहाओ मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुरते शब्द बुझाई। जीवन मरण को संसार वेखै बहु न मरे ना जंपे खै। कर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभमान। सद ही लागा सही ध्यान अंधन गावे एको नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुरते नाम ते आई। जै देखा तरिया समाई सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई। पूरे भाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निदान दिखाया। गुर का शब्द वत मीठा लाया नानक तृष्ण बुझी मन तन सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उद्दम मत प्रभ अंतर जामी ज्यों प्रेरे त्यों करना। ज्यो नटुआ तंत वजाए तंती त्यों वाजै जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिखत लिखे गुर पाया। हर हृदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना। ज्यों प्रहलाद हर नाक्ष ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत मित कही है हर किए पतत पवन्ना। ओह ढोवे ढोर हाथ चम चमरे हर उदर्यो पर्यो सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पवतारनो हम पापी राख पपना। हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दसन्ना। बिलावल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती शरणागत पुरख्या जन्मा। कर कृपा रख लेवो मेरे ठाकरो हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन भज राम ना मैं रामा गुरमत हर रस पाई है। होर त्यागो निफल कामा। रहाओ
ਹਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸੇ ਹਰ ਤਾਰੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਉਪਮਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਜਪਿਆ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾ ਨਾਮਹੀਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਸਹਮਾ ਓਏ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨ ਭਵਾਈ ਹੈ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਮੂੜਿਆ ਕਰਮਾ ਹਰ ਜਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਧੁਰ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਵਡਕਰਮਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਜਨਮਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਮਰਾ ਚਿੱਤ ਲੁਭਤ ਮੋਹੇ ਵਿਖਿਆ ਬਹੁ ਦੁਰਬਤ ਮੈਲ ਪਰਾ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਾ ਸਕੈ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਕਿਉ ਕਰ ਮੁਗਧ ਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਨਰਹਰ ਨਾਮ ਨਰਹਰਾ ਜਾਨੀ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਪਰਾ ਰਹਾਓ ਹਮਰੇ ਪਿਤਾ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਹਰ ਦੇਹੁ ਮਤੀ ਜਸ ਕਰਾ ਤੁਮਰਾ ਸੰਗ ਲੱਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ ਜਿਉ ਸੰਗ ਕਾਸ਼ਟ ਲੋਹ ਤਰਾ ਸਾਗਤ ਨਰ ਹੋਛੀ ਮਤ ਮਧਮ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸੇਵ ਨਾ ਕਰਾ ਤੇ ਨਰ ਭਾਗਹੀਨ ਦੋਚਾਰੀ ਓਏ ਜਨਮ ਓਏ ਫਿਰ ਮਰਾ ਜਿਨ ਕਹੋ ਤੁਮ ਹਰ ਮੇਲੋ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਨਾਏ ਸੰਤੋਖ ਗੁਰਸਰਾ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਈ ਹਰ ਭਜਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਪਰਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਆਵੋ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਕਰੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਇਥ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਖੇਵਟ ਗੁਰ ਸਭ ਤਰੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਗੁਣ ਹਰ ਉਚਰੋ ਮਸਤਕ ਲਿਖਤ ਰਖੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਪਰੋ ਰਹਾਓ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਸੀ ਉਤਮ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਉਪਦੇ ਜਨ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪੀਓ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੀਠਾ ਹਰ ਸੰਤੋ ਚਾਖ ਦਿਖਾਓ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ ਤਿਨ ਬਿਸਰੇ ਸਭ ਬਿਖਰਸੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਹਰ ਸੇਵੋ ਸੰਤ ਜਨੋ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰੇ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜੋ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਕੋ ਜਾਪੈ ਹਰ ਮੰਤਰ ਜਪੈਨੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਪੂਜੋ ਨਿਤ ਸੇਵੋ ਦਿਨ ਸੋ ਸਭ ਰੈਨੀ ਹਰ ਜਨ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੈਨੀ ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ ਹਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰਮਤ ਬੈਨੀ ਰਹਾਓ ਅਨ ਕਿਉ ਪਾਵ ਚਿਤਵੀਐ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਸਾ ਹੋਵੈ ਜੇ ਬਾਤ ਹੋਵੈ ਨੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਬੰਛੈ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਚਿਤੈਨੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ ਇਹਾ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈਨੀ ਮਤ ਸਮਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸਵਾਮੀ ਹਮ ਜੰਤ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਜਨਤੈਨੀ ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਵੈ ਬੁਲੈਨੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਅਨਦ ਮੂਲ ਧਿਆਇਓ ਪੁਰਖੋਤਮ ਅਨ ਦਿਨ ਅੰਦ ਅਨੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੀ ਕਾਣ ਚੁਕਾਈ ਸਭ ਚੁਕੇ ਜਮਕੇ ਛੰਦੇ ਜਪ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ਰਹਾਓ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਧਕ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਫਿਰੈ ਫਿਰੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਾਂਧੇ ਜਿਉ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਭਵੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵ ਲੱਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਤਿਨ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸਭ ਟੂਟੇ ਮਾਇਆ ਫੰਦੇ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਗੋਵਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪੇ

एक ओंकार सतगुर प्रसाद बोलो भैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगतारनो हर भरपुरे रहा जल थले राम नाम नित गाइये हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसार नहारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निरासी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो राग बिलावल महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवै तिस्यो मोह क्यों मिलिया प्रभ नासी तोहे कर कृपा मोय मार्ग पावो सात संगत कै अंचल लावो क्यों तरिय बिखिया संसार सतगुर बोहित।

हम मैं पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिंगार करे नहीं पावै, जा होए कृपाल ता गुरु मिलावै। हाँ फिरो उदासी मैं करत दसाया, निर्मोल हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिसमें लाल, गुर खोलिया पड़दा देख पही निहाल। जिन चाखिया तिस आया साध, जो गुंगा मन में मिसमाद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण अक्स माया। बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव। बिघन ना लागे जप अलाख्या पेव, तरत पुनीत पई गुण गाए, दुरत गया हर नाम ते आए रहाओ। सबनी थाई रव्या आप, आद जुगाद जाकावड प्रताप। गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न होए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सदगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले। नानक दास खसम प्रतपाले, बिलावल महला पंजवा। सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे। मोहे अनाथ तुमरी सरनाई, कर कृपा हर चरण ते आई। दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़, हर सेवक नाही जम पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मन तन आधार, बिसरत नाम हो तन शार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर बिसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा यानड़िए कै कर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे। मैं मन तेरी टेक अवर स्याण पा बिरथिया प्यारे, राखण कौ तुम एक रहाओ। सतगुर पूरा जे मिले प्यारे, सो जन होत निहाला। गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला। सफल मूर्त गुरदेव स्वामी, सर्व कला परपूरे। नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिन अपना प्रभ जाता। हर नाम आराधे नाम वखाणे, हर नाम में ही मन राता। सेवक जन की सेवा मांगे, पूरे कर्म कमावा। नानक की बेनंती स्वामी, तेरे जन देखण पावा। वडभागी से काढ़िए प्यारे, संत संगत जिन्ना वासो। अमृत नाम आराधिए निर्मल, मने होवे परगासो। जन्म मरण दुख काटिए प्यारे, चूके जमकी काणे। तना प्राप दर्शन नानक, जो प्रभ अपने पाणे। ऊंच या

मेरे, पशु प्रेत मुगत कवतारे पान पारो तारे, नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहार है। बिलावल महला पंजवा, बिखै बन फीका त्यागरी सखिए, नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुड गई सगली, सुखी ना होवत जियो। मान महतना सकत ही काई, सादा दासी थियो, नानक से दर सो बावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंगौरी चित प्रम सखिए, मृग तृष्णा द्रुम छाया, चंचल संगना चालती सखिए, अंत तज जावत माया। रस भोगण अत रूप रस माते, इन संग सुख नाम पाया। तन तन हर सा जन सखिए, नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वट पागनी सखिए, संता संग समाई है, तह दुख ना भूख ना रोग व्यापै, चरण कमल निवलाई है। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना, निश्चर सरणी पाई है। प्रेम बिशो न मोह व्यापै, नानक हर एक त्याई है। दृष्ट तार मन बेदया प्यारे, रतड़े सह सुभाए, से सुहावी संग मिल प्रीतम, अंध मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती, मन तन इच पुजाए, नानक अचरज अचरज से मिलिया, कहना कछु ना जाए। राग बिलावल महला पंजवा, कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक रूप सगलो पा सारा, आपे बनजे आप ब्योहारा, ऐसो ज्ञान बिरलोई पाए। जत जत जाइए तत दृष्टाए, रहाओ अनक रंग निर्गुण एक रंगा, आपे जल पा आप ही तिरंगा, आप ही मंदिर आपै सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा, आपै जोग आप ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा, आपो पावन आप सुधरना, आप करावन दोष ना लेना, आपन बचनो आप ही।

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप लिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुरमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकड़ सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तन मन धन अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जपना।

होवत वटभागी सा संग्राम लिव लागी मत पत तहन सुख सहज आनंदा एक निमख ना विसराओ परमानंदा हर दर्शन की मन प्यास कनेरी पंत नानक शरण प्रभ तेरी बिलावल महला पंजवा मोहे निर्गुण सब गुणे बेहूना दया तारे अपना कर लीना मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया कर किरपा प्रभ घर में आया रहाओ भगत वछल पै कट नहारे संसार सागर अबुतरे पारे पतत पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया सासंग प्रगटे नारायण नानक दास सब दुख पलायण बिलावल महला पंजवा कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा प्रभ अविनाशी लाख्या पेवा गुण बेअंत प्रभ गैर गंभीरे ऊच महल स्वामी प्रभ मेरे तू अपरंपर ठाकुर मेरे रहाओ एक सबे नाही को दूजा तुम ही जानो अपनी पूजा आपो कछु न होवत पाई जिस प्रभ देवै सो नाम पाई कहो नानक जो जन प्रभ पाया गुण निदान प्रभ तिन्ही पाया बिलावल महला पंजवा मात गरमै हाथ दे राखिया हर छोड़ बिख्या फल चाखिया भज गोबिंद सब छोड़ जंजाल जब जम आए संगारे मूड़े तब तन बिन सजाए बेहाल रहाओ तन मन तन अपना कर थापिया करन हर एक निमख ना जापिया महा मोह अंध कूपरिया पार ब्रह्म आया पटल बिसरिया वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया संत संग नानक प्रभ पाया बिलावल महला पंजवा मात पिता सुत बंधु भाई नानक होवा पार ब्रह्म सहाई सुख सहज आनंद कणे गुरपुरा पूरी जाकी बाणी अनक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ सगल सरंजाम करे प्रभ आपे भय मनोरथ सो प्रभ जापे अर्थ धर्म काम मोह का दाता पूरी पई सिमर सिमर विधाता सासंग नानक रंग माणिया कर आया पूरे गुरियाणिया बिलावल महला पंजवा।

हर नानक बिसर ना काहूं बेरे। बिलावल महला पंजवां। चरण कमल प्रभ हृदय त्याए, रोग गए सगले सुख पाए। गुर दुख काटिया दीनो दान, सफल जन्म जीवन परवान रहाओ। अकथ कथा अमृत प्रभानी, कहो नानक जब जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवां। सांत पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। ताप पाप संताप विनासे, हर सिमरत किलविक सब नासे। आनंद करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पैसवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रोह मदमाता, बंधन बांध्यात बिकराल। दिन दिन शिजित बिकार करत आउद, फाही फाथा जम कै जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला, महा बिखम सागरत पारी। उधरो साधु संगर वाला रहाओ। प्रभ सुखदाते समर्थ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। प्रम के बंधन काटो परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवां। सगला नंद किया परमेश्वर, अपना बिरद सुमारिया। साजना होए कृपाला, बिकसे सब परवारिया। कार्य सतगुर आप सवारिया, वड्डी आरजा हर गोबिंद की। सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाओ। वन त्रिण त्रिपवन हरिया, होए सगले जी साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया। बिलावल महला पंजवा। जिस उपर होवत दयाल, हर सिमरत काट सो काल रहाओ। साध संग भजिए गोपाल, गुण गावत टूटे जमजाल। आपे सतगुरे आपे प्रतपाल, नानक जाचे साधरवाल। बिलावल महला पंजवा। मन में सिंचो हर हर नाम, अंदन कीर्तन हर गुण गाम। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पहर प्रभ जानो नेरे रहाओ। कहो नानक जाके निर्मल भाग, हर चरणी ताका मन लाग। बिलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज कर आया रहाओ। रज रज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम अरद मायते आई। नानक गुरपूरे सरनाई, जिने अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा। सतगुर कर दीने अस्थिर घर बार रहाओ। जो जो निंद करे इन ग्रहण की, तिस आगे ही मारे करतार। नानक दास ता की सरनाई, जा को सबद्या खंडिया पार। बिलावल महला पंजवा। ताप संताप सगले गए, बिनसे ते रोग। पार ब्रह्म तू बख्सिया, संतन रस भोग रहाओ। सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मंतन या रोग। गुण गावो नित राम के, ए अवखद जोग। आए बसो कर देश में, ए पले संजोग। नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे, लह गए बेयोग। बिलावल महला पंजवा। काहू संग न चल ही माया जंजाल। ऊठ सिधारे छत्रपातो, संतन कै ख्याल रहाओ। अहम बुद्ध कौ बिनसना, ए तुरकी ढाल। बहजोनी जन्म मरे बिखिया बिकराल। सत बचन साधु कह, नित जपै गोपाल। सिमर सिमर नानक तरे, हर के रंग लाल। बिलावल महला पंजवा। सह समाधानंद सुख, पूरे गुरदीन। सदा सहाई संग प्रभ, अमृत गुण चीन रहाओ। जय जय कार जगत्र मैं, लोचे सब जिया। सो प्रसन्न पए सतगुर प्रभु, कछ बिघ्न ना थिया। जां का अंग दयाल प्रभ, ताके सब दास। सदा सदा वड़ियाइया, नानक गुरपास। राग बिलावल महला पंजवा। कर पंजवा चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृत मंडल जग साजिया, ज्यों बालू कर बार। बिनसत बार ना लाग गई, ज्यों कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मनै माहे, सत देख बिचार। से सतक गिरि जोगी, तज गए कर बार रहाओ। जैसा सुपना रैन का,
तैसा संसार दृष्टमान सब बिनसी क्या लगे गवार। कहां सो भाई मीत है देख नैन प्रसार, एक चाल सह सब अपनी वार। जिर पूरा सतगुर सेव्या से असर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राग पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा लोकन किया वड्याईया, बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना। ते बोल करा गो जो प्रभ जियो दयाल होए, तो भक्ति लागो लपट रहो मन बासना, गुर मिले त्यागो रहाओ। करो बेनती अत कनी यो जियो हमांगो, अर्थ आन सवारिया प्रे निमक सुहागो। पंच संग गुर ते छुट्टे दोख हर रागो, हृदय प्रगास प्रगट भया निस्बा सिर जागो। सरण सुहागन आया जिस मस्तक भागो, कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा लाल रंग तिसको लगा, जिसके वड भागा मैला कदे ना हो वही न लागे दागा। प्रभ पाया सुखदाइया मिलिया सुख पाए, सहसमाना भीतरे छोड़िया न जाए रहाओ। जरा मरा न व्यापई फिर दुख ना पाया, पी अमृतया गान्या गुर अमर कराया। सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी। बिलावल महला पंजवा रखो अपनी सरन प्रभ, मोहे कृपा तारे सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे। मान करो तुदी उपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद पूलते तुम बख्शन हारे। रहाओ हम अवगन करें असंख नीत, तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग ए कर्म हमारे, तुम देवो सबके दया तार। हम अकृत कनारे लाग परे तेरे दान स्यो नैचित खसमारे। तुय ते बाहर किश नहीं पव काट नहारे, कहो नानक सरण दयाल गुर लेहो मुगदे उधारे। बिलावल महला पंजवा दोष ना काहू दीजिए, प्रभ अपना त्याई है। जित सेवे सुख होए घना मन सोई गई है। कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब।

जो तुम करो सोई भला, मन लेता मुक्ता, सगल समग्री तेरी आ, सब तेरी जुगता, चरण पखारो कर सेवा, जे ठाकर पावै, हो कृपाल दयाल प्रभ, नानक गुण गावै। बिलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे, पशुआ नहीं बूझै, बाद साध हंकार मैं, मरना नहीं सूझै, सतगुर सेवो अपना, काहे फिर अपागे, देह कुसुम बारंगला, काहे फूल लागे, रहाओ कर कर पाप दर्पण की, कर कर पाप दर्ब किया, वर्तन कह ताई, माटी स्यो माटी रली, नांगा उठ जाई, जा कह किया, श्रम कर ते बैर विरोधी, अंत काल पा जाहेंगे, काहे जलो क्रोधी, दास रेण सोई होवा, जिस मस्त कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे, सतगुर की सरना। बिलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे, खल चतर बकीता, अंदले त्रिपवन सूजिया, गुरपेट पुनीता, महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अगहरे, निर्मल पै चीता, रहाओ ऐसी भगत गोविंद की, कीट हस्ती जीता, जो जो कीनो अपनो, तेसा पैदान दीता, सिंह बिलाई होए गयो, त्रिन मेर दखीता, श्रम करते दम आड़को, ते गनीत नीता, कवन वडाई कह सको, बेअंत गुनीता, कर कृपा मोहे नाम देहो, नानक दर सरीता। बिलावल महला पंजवा, आहं बुद्ध पर बाद नीत, लोभ रसना साद, लपटो कपटो ग्रह बेदया, मिथ्या बिख्याद, ऐसी पेखी नेत्र मैं, पूरे गुर प्रसाद, राज मिलख तन जोबना, ना मैं बिन बाद, रहाओ रूप तूप सो गंधता, कापर पोगाद, मिलत संग पापिष्ट तन, होए दुर्गाद, फिरत फिरत मानुख पया, खिन पंगन देहाद, ए अवसर ते चुकिया, बहु जोन परमाद, प्रभ कृपा ते गुरमिले, हर हर बिस्माद, सुख सहज नानक आनंद, ताके पूर्ण नाद। बिलावल महला पंजवा, चरण पहे संत बोए था, तरे सागर जेत, मार्ग पायो ध्यान मैं, गुरदसे पेत, हर हर हर हर हर हरे, हर हर हर हेत, उठत बैठत सोबते, हर हर हर चेत, रहाओ पंच चोर आगे पगे, जब साध संगेत, पूंजी सावत कणो लाभ, गृह शोभा सेत, निहचल आसन मिटी चिंत, नाही डोलेत, परम भुलावा मिट गया, प्रभ पेखत नेत, गुण गंभीर गुण नायका, गुण कहिया केत, नानक पाया साध संग, हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवा, बिन साधु जो जीवना, ते तो बिरथारी, मिलत संग सब प्रम मिटे, गत पई हमारी, जा दिन पेटे साध मोहे, उवा दिन बलिहारी, तन मन अपनो जियरा, फिर फिराओ वारी, रहाओ एत छिडाई मोहे ते, इतनी दृढ़तारी, सगल रेन एहो मन पया, बिनसी अपतारी, निंद चिंद पर दुखना, ए खिन में जारी, दया मया अर निकट पेख, नाही दूरारी, तन मन शीतल पय अब, मुक्ते संसारी, हीत चीत सब प्राण तहनो, नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा, टहल करो तेरे दास की, पग चारों बाल, मस्तक अपना पेट देओ, गुण सुनो रसाल, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलो दयाल, निस्बासर मन अंध हो, तो चिरवत कृपाल, रहाओ जगते उदाहरण साध प्रभ, तिन लागो पाल, मोको दीजे दान प्रभ, संतन पगराल, उक्त सियान पो कश नहीं, नाही कश काल, ब्रह्म पै राखो मोहते, काटो जमजाल,
बिनौ करो करुणा पते, पिता प्रतपाल गुण गावो तेरे साध संग नानक सुखसाल। बिलावल महला पंजवा, कीता लोड़े सो करे, तुझ बिन कछ नाहे प्रताप तुम्हारा देख कै, जम दूत छड़ जाहे तुमरी कृपा ते छूटी है, बिनसै अहमेव सर्व कला समरथ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाओ। खोजत खोजत खोजिया नामे बिनकूर, जीवन सुख सब साध संग ब्राह्मण सापूर। जित जित लावो तित तित लगे, सियानप सब जाली जत का तुम भरपूर हो, मेरे दीन दयाली। सब किश तुम ते मांगना वड भागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। बिलावल महला पंजवा, साध संगत कै बास बै, कलमल सब नसना प्रभ सेती रंग रातिया। ता ते गर्भ ना ग्रसना, नाम कहत गोविंद का सूची पई रसना। मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना रहाओ, हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना। बुद्ध प्रगास प्रगट भई उल्ट कमल बिगसना, शीतल सांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा, दह दिस तावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हारे राखिया पय परम पसना, नाम निधान नानक सुखी पेक साध दर्शना। बिलावल महला पंजवा, पानी पखा पीस दास कै तब होए निहाल, राज मिलख सिकदारिया अग्नि में जाल। संत जना का शोहरा तिस चरणी लाग, माया तारी शत्रपात तिन छोड़ो त्याग रहाओ। संतन का दाना रूखा सो सर्वन दान, गृह साक्त शक्ति प्रकार ते बिहू समान। भगत जना का लुगरा ओढ़ नगन ना होई, साक सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई। साक्त स्यो मुख जोर है अदवीचो टूटे, हर जन की सेवा जो करे इत उते छूटे। सब किश तुम ही ते होवा, आप बणत बनाई दर्शन भेटत साधका नानक गुण गाई। बिलावल महला पंजवा, सरवणी सुनो हर हर हरे, ठाकर जस गावो संत चरण कर सीस तार, हर नाम ते आवो कर कृपा दयाल प्रभ एह निद सिद्ध पावो। संत जना की रेणका लै माथे लावो रहाओ, नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बुलावो। पाव मलोवा आप त्याग संत संग समावो, सास सास न विसर अनकत ना तावो। सफल दर्शन गुर भेटी है मान मोह मिटावो, सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो। सफल सुहागण नानका अपने प्रभावो। बिलावल महला पंजवा, अटल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया, जिस जन होवा सा संग तिस पेटे हर राया। एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया, अनक बाता सब कर रहे गुर कर ले आया रहाओ। शरण परे की राखता नाही सहसाया, कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुर्बाया। अंतरजामी आप प्रभु सब करे कराया, पतत पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया। मत भूलो मानुख जन माया परमाया, नानक तिस पत राखसी जो प्रभ पहराया। बिलावल महला पंजवा, माटी ते जन साजिया कर दुर्लभ देह,
अनक छिद्र मन में टके निर्मल दृष्टि क्यों बिसरे ब्रह्म नैते जिसके गुण ए है प्रभ तज रचे जे आन स्यो सोर लिये खे रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे हे छोड़ परपंच प्रभ स्यो रचो तज कूड़े ने है जिन अनक एक बहु रंग किए है होसी ए है कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुरते मत ले है ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरने है दास दास को दासरा नानक कर ले है बिलावल महला पंजवा एक टे गोविंद की त्यागी अन्यास सब ऊपर समर्थ प्रभ पूर्ण गुणतास जन का नामाधार है प्रभ सरणी पाहे परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतपार दीन दयाल कृपा निदे सासा सुमार करणहार जो कर रहे साई वड्याई गुरपुर उपदेसिया सुख स्मर जाई चिंत अंदेसा गणत तज जन हुकम पछाता नह बिनसै नह छोड़ जाए नानक रंग राता बिलावल महला पंजवा महा तपते पई सात परसत पाप नठे अंध कूप में गलत थे काढ़े दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन पेड़ होवत सुखी जी दान देन रहाओ परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए बहत संग हर साध कै पूर्ण आसाए पै बिन से तिह लोक के पाए सुखथान दया करी समर्थ गुर बसिया मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करण कारण समर्थ प्रभ हर अगम अपार बिलावल महला पंजवा सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ बिसराना करने हर ना बूझई आप गने बेगाना दुख तदे जद विसर सुख प्रभ चित आए संतन कै आनंद हो नित हर गुण गाए रहाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खन में थापे कीमत कहीं ना जाइए ठाकर प्रतापे पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया करण कारण समर्थ प्रभ तेरी सरनाई हर दिन सरैन नानक जपै साध साध बल जाई बिलावल महला पंजवा जल ढोवो एह सीस कर पग पख लावो बार जाओ लख बेरिया दर्श पेख जीवावो करो मनोरथ मन माहे अपने प्रभ ते पावो देव सुहनी साध कै बीजन टोलावो रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पीलावो ओवा रस में सांत तृप्त होए बिखे जलन बुझावो जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जान तूर मुख लावो ऊठत बैठत जपो नाम एहो कर्म कमावो नानक की प्रभ बेनती हर शरण समावो बिलावल महला पंजवा एहो सागर सोई तरै जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसै वडपागी पाए सुन सुन जीवै दास तुम बाणी जन आखी प्रगट पई सब लो मैं सेव की राखी रहाओ अग्न सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचिया गुर पय सहाई जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया काटी सिलक प्रमोह की अपने प्रभ पाया मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ कै हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ बिलावल महला पंजवा बंधन काटे आ प्रभ होवा कृपाल दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नदर निहाल गुरपुरे कृपा करी काटिया दुख रोग मन तन शीतल सुखी पाया प्रभ त्यावन जोग रहाओ
औखद हर का नाम है, जित रोग ना व्यापै, साध संग मन तन हितै, फिर दुख ना जापै। हर हर जापिए अंतर लिवलाई, किलवख उतरै सो दोहे साधु सरनाई। सुनत जपत हर नाम जस, ताकी दूर बलाई, महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा, पहते उपजै भगत प्रभ, यंत्र होए सांत, नाम जपत गोविंद का बिनसै परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया, ताकै सुख प्रवेश, मन की मत त्यागी है, सुनिया उपदेश रहाओ। सिमरत सिमरत सिमरिया, सो पुरख दातार, मन ते कवो न विसरै, सो पुरख अपार। चरण कमल स्यों रंग लगा, अचरज गुरुदेव, जां कहो कृपा करहो प्रभ, तां कहो लाभो सेव। निध निधान अमृत पिया, मन तन आनंद, नानक कबो ना विसरै, परमानंद। बिलावल महला पंजवा, त्रिशन बुझी ममता गई, नाठे पै परमा, थित पाई आनंद पया, गुर कीने धर्मा। गुरपुरा आराध्या, बिनसी मेरी पीर, तन मन तन मन सब शीतल पया, पाया सुख बीर रहाओ। सोवत हर जप जागया, पेखिया बिस्माद, पी अमृत तृप्ता सिया, ताका अचरज स्वाद। आप मुक्त संगीतरे, कोल कुटां ब्योदारे, सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीचा नाथया जान मैं निर्गुण गुणहीन, नानक कहो कृपा पई, दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा, हर भगता का आसरा, अन नाही ठाओ, तान दीबान परवार तन, प्रभ तेरा नाओ। कर कृपा प्रभ अपनी, अपने दास रख लिए, निंदक निंदा कर पचे, जमकाल ग्रसिए रहाओ। संता एक त्यावना, दूसर को नाहे, एक सिया गै बेनती, रव्या सर्वथाए। कथा पुरातन इओ सुनी, भगतन की बानी, सगल दुष्ट खंड खंड की है, जान लिए मानी। सत बचन नानक कहे, प्रगट सब माहे, प्रभ के सेवक शरण प्रभ, तिन को पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा, बंधन काटै सो प्रभु, जा कै कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटी है, राखो हरनाथ। तौ शरणागत माधवे, पूर्ण दयाल, छूट जाए संसार ते, राखै गोपाल राव। आसा परम विकार मोह, इन मैं लोभाना, झूठ समग्री मन वसी, पार ब्रह्म ना जाना। परम ज्योत पूर्ण पुरख, सब जी तुम्हारे, ज्यो तू राखै त्यो रहा, प्रभ अगम अपारे। करण कारण समर्थ प्रभ, देह अपना नाओ, नानक तरिय साध संग, हर हर गुण गाओ। बिलावल महला पंजवा, कवन कवन नहीं पतरिया, तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोहया, नरक की रीत। मन खुट हर तेरा नहीं विश्वास, तू महा उदमादा, खरका पैखर तव छुटै, जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संजम तुम खंडे, जम के दुख डांड, सिमरै नाही जोन दुख, निर्लजे पांड। हर संग सहाई महामीत, तेस्यों तेरा भेद, बीदा पंच बटवारई, उपजो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन वस कीना, तन तन सर्बसे अपना, प्रभ जन कौ दीना। बिलावल महला पंजवा,
ਉਦਮ ਕਰਤੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖਸਾਰ ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇ ਜਪਤ ਹਰ ਜਪ ਹਉ ਜੀਵਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਰਾਧ ਤੇ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾਂ ਰਹਾਉ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖ ਬਸੇ ਸਭ ਕੈ ਮਨ ਲੋਚ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤਵਤੇ ਨਾਹੀ ਕਛ ਪੋਚ ਧਨ ਸੋ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਧਨ ਜਹ ਜਪੀਐ ਨਾਮ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਅਤ ਘਨਾ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਸਰਾਮ ਮਨ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਂਗਤੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਭ ਕਿਛ ਹਾਥ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਨ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੋਡਿਆ ਫੁਰ ਸੁਖ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਸੀਤਲ ਹੋਤਾਇਆ ਜੀਵਿਤ ਆ ਅਥਵਾ ਮੋਇਆ ਕਿਛ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ ਜਿਨ ਇਹੋ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਕੋਉ ਤੇ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਰਹਾਓ ਹਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸਨ ਸੀਤ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਕਾਮ ਤੇ ਕਾਢੈ ਕੀਰੀ ਤੇ ਅਸਤੀ ਕਰੈ ਟੂਟਾ ਲੇ ਗੰਢੈ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਨ ਸਰਵ ਫਲ ਰਵੀਐ ਹਰ ਨਿਰਤ ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਨਾ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਦ ਮੋਹ ਮਗਨ ਕੂਪ ਅੰਧ ਤੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਾਢ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮੈਂ ਫੇਰਾ ਖੋਜੋ ਬਨਥਾਨ ਅਸ਼ਾਲਿਆ ਸ਼ੇ ਦਾ ਭੇਦ ਪ੍ਰਭ ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ ਕਬ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਕੈ ਰੰਗ ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਪਲਾ ਬਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਰਹਾਓ ਵਰਨ ਆਸਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਨੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਪੰਚ ਤਤ ਠਾਕਰ ਅਬਨਾਸ ਉਹ ਸਰੂਪ ਸੰਤਨ ਕਹੈ ਵਿਰਲੇ ਜੋਗੀ ਸਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਾ ਕੋ ਮਿਲੇ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਈਸਰ ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰੇ ਬਿਨਸੇ ਤਹ ਪਰਮਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੇਟਿਆ ਜਾਂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ ਜੰਤ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਏ ਦੇਖ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰ ਜੋ ਤਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਹਰਿ ਆਪ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਨਿਬਹਤ ਰਹੇ ਗੁਰਸਬਦ ਅਖੂਟ ਪੂਰਨ ਪਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕਬਹੁ ਨਹੀਂ ਤੂਟ ਰਹਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗ ਆਰਾਧਨਾ ਹਰ ਨਿਧ ਅਪਾਰ ਧਰਮ ਅਰਥ ਹਰ ਕਾਮ ਮੋਖ ਦੇਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਰ ਭਗਤ ਆਰਾਧੈ ਏਕ ਰੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਸੰਚਿਆ ਜਾਂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਸੁਮਾਰ ਸਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਈ ਐ ਬੇਅੰਤ ਗੁਸਾਈ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਰਜ ਪਏ ਰਾਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਸ।

प्रवयग में अपार, बस्त कमावत सब सुखी किश उन्ना दिसै, संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै, जय जयकार सबै करै सच थान सुहाया, जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवां, हर हर हर यारा दिया होई है आरोग, रामचंद की लष्ट का जिन मारिया रोग, रहाओ गुरपुरा हर जापिया नित कीचै भोग, साध संगत कह वारण मिलया संयोग, जिस सिमरत सुख पाई है बिन सह बेहोग, नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवा, दो पदे कर पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आवरियो पाप सब त्यागया, दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग, शीतल मन पया गुरपुरा आराध्या, सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी करमया, रहाओ बहा पकड़ प्रभ का डेया की ना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया। बिलावल महला पंजवा, कर धर मस्तक थापया नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान, आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित वै साध जान सो लेता मान, रहाओ शरण परे चरणार बिंद, जन प्रभ के प्राण सह सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा, चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणांगत जन परे ताका सत प्रताप, राखन हारिया पार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज रामदास पुर कीने गुरुदेव, रहाओ सदा सदा हर त्याई है किश बिघन ना लागे, नानक नाम सलाही है पै दुश्मन भागे। बिलावल महला पंजवा, मन तन प्रभ आराधी है मिल साध समागे, उचरद गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे, राम नाम जो जन जपै आंदन सज जागे, तंत मंत न जो है तित ताख न लागे, रहाओ काम क्रोध मदमान मोह बिन से अनरागे, आनंद मगन रस राम रंग नानक शरणागे। बिलावल महला पंजवा, जी जूत वस प्रभु कै जो कह सो करना, पय प्रसन्न गोपाल राय पौ किश नहीं करना,

साथ रहाओ जीवन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद। रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जय कार जगत में सफल जा की सेव। ऊच अपार गणत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा।

गावत प्रभ नाम सहज सुख्या आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल पय राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जा कावड़ परताप। बिलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान, पूर्ण पय काम पौ नाठा प्रभ मिट गया रव्या नित राम। सात जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट भय संसार मैं फिरते पहनाम, नानक ते शरणागति कड़कड़ सब जान। बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया आप प्रभ उपजया सुख सात, वट प्रताप अचरज रूप हर की नीदात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई, हम तिसकी शरणागति जोसदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। बिलावल महला पंजवा मर मर जन्मे जन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेवया अंदन रंगराता। सांत सहज आनंद घना पूर्ण पई आस, सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन तुम्हें अंतर जामी, थान थनंतर रव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पय सहाई। बिलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखिया नो पार ब्रह्म गुरुदेव, सुख सात सहज आनंद पय पूर्ण पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जी वालिया नो जा कावड़ प्रताप। दोख हमारे बख्शिया नो अपनी कल तारी, मन बाइत फल दित्या नो नानक बलिहारी। राग बिलावल महला पंजवा चौप दे दुप दे कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मोहन श्रवणी यह ना सुनाए, साकत गीत नाद तुन गावत बोलत बोलिया जाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवाओ सदा करो किरताए, अपैदान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख पंजन। मोहे चरण हृदय वसाए, सब हूं तले तले सब ऊपर एह दृष्ट दृष्टाए। अभिमान खोए खोए खोए खोई हों, मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अतुल्य अतुल अतुल नह तुलिया भगत वच्छल कृपाए, जो जो शरण पर्यो गुरु नानक अपह दान सुख पाए। बिलावल महला पंजवा प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाओ बार है रहाओ। उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितार है, सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरा परिवार है। जो तुम करहो सोई पल हमरे, पेख नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगले उदाहरण, मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मने विसारन रहाओ। संच बिख्याले ग्रह जकीनी अमृत मनते डारन, काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बेदारन। इनते काट लेहो मेरे स्वामी हार परे तुम सारन, नानक की बेनंती प्रप है साध संक रंक तारन। बिलावल महला पंजवा संतन कै सुनियत प्रभ की बात,
कथा कीर्तन आनंद मंगल तोन पूर रही दिन से रात रहाओ। कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवा। राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिरस गए सब शोक संताप। रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवारी राम रसायण आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुखदाते गुर कै बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम पै बिनसे कहो नानक ठाकर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। ताप लाहया गुर सृजनहार सतगुर अपने कौ बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार। रहाओ कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगह परवान। राग बिलावल महला पंजमा चौपदे दोपदे कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा। रहाओ बिस्मन बिस्म पए जौ पेखियो कहन न जाए वड़ियाई। मगन पए ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा। ऊचन ऊंचा बीचना खींचा हों तेरा तू मोरा। एक अंकार एक पासारा एक है प्रयापारा। एक विस्तीर्ण एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा। अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानकी ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर काम ना आवत है जा स्यो राच माय तुम लागे ओ मोनी मोहावत है। रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिन मैं जावत है। उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो बिखै ठगौरी खावत है। तृण को मंदिर साज सवारियो पावक तलै जरावत है। ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूंड पर ठंडे केस गहे फेर आवत है। दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मदमावत है। जाल पसार चोग विस्थारी पंखी जोफा हावत है। कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम अपारिया मोली प्राण प्यारो मन आधारो। चीत चितवो जैसे पांत बोली। रहाओ सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली। प्रेम मुख लागो जौ वट पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली। कहो नानक प्रेरवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा। गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते पेटे सा दयारा तब ते दुर्मत दूर पही। रहाओ पूर्ण पूर रहो संपूर्ण शीतल सां दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते हो मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साके एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा। बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किश कथन न जाई। जह जह देखा तह रया समाई। रहाओ जय महा भयान दुख जम सुनिए त
तह मेरे प्रभ तुह सहाई, शरण परयो हर चरण गए प्रभ, गुरु नानक बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, आगम रूप अविनाशी करता, पतत पवित एक निमख जपाई है, अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले, संत चरण चरण मन लाई है, कित विधि है कित संयम पाई है, कौ सुरजन के जुगति त्याई है। रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, ओ तिसकी लई लई फुन जाई है, नानक सरन सरन सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत सरन संत टहल करी, तंद बंद अर सगल जंजारो, अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज अर करो आनंदा, गुरते पायो नाम हरी, ऐसो हरस बरना सा कहो, गुरपुर है मेरी उल्ट धरी, पेख्यो मोहन सब कै संगे, ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहो कृपा निध, कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हौ क्या कहता, जान प्रभीन ठाकुर प्रभ मेरे, किसे आज्ञा क्या कहता रहाओ। अन बोले कहो तुही पछाने, जो जियन मैं होता, अरे मन काय कहां लौ डहके, जो पेहती संग सुनता, ऐसो जान पहे मन आनंद, आन न बियो करता, कहो नानक गुर पहे दयारा, हर रंग न कभू लहता। बिलावल महला पंजवा, निंदक ऐसे ही चर परी है, एह निशानी सुनो तुम पाई, जो कालर पीत गिरी है। रहाओ जो देखे शिदर तो निंदक उमा है, पलो देख दुख परी है, आठ पहर चितवे नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरी है, निंदक प्रभु पुलाया, काल नेरा आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानका रखाया प्रभ स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा, ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे, पेखत सुनत सदा संघरे। रहाओ काज बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिखिया मैं लपटाए जरे, अंधकूप मैं परे उपरानी, परम गुबार मोहे बंद परे, कहो नानक प्रभ हो दयारा, गुर पेटे काडे भा फरे। बिलावल महला पंजवा, मंतन रसना हर चीना, पय आनंदा मिट आंदे से, सर्व सुख मोको गुरदीना। रहाओ एआनप ते सब पई सियानप, प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे रख अपने कहो, काहू ना करते कशकीना, बल जावो दर्शन साधु कै, जे प्रसाद हर नाम लीना, कहो नानक ठाकुर पारोसै, कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। रहाओ

प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण पर्यो नानक दास, जाते उपर को नाही। बिलावल महला पंजवा, सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कहीं दुख न व्यापै, अगै दरगै पूर्ण काम। रहाओ आप त्याग परिय नित सरणी, गुर ते पाइए हो निदान, जन मरण की कटिए फांसी, साची दरगै का निशान। जो तुम करहो सोई पल मानो, मन ते छूटे सगल गुमान, कहो नानक ता की शरणाई, जाका किया सगल जहान। बिलावल महला पंजवा, मन तन अंतर प्रभ आही, हर गुण गावत पर उपकार नित, तिस रसना का मूल किश नाही। रहाओ कुल समूह उदरेखन पीतर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, आनंद सेती बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के बोहित पाए, पव सागर पार पराही, संत सेवक भगत हर ताके, नानक मन लागा है ताही। बिलावल महला पंजवा, तीरो देख तुम्हारे रंगा, तुही स्वामी अंतर जामी, तुही वसै साध कै संगा। रहाओ खिन मैं थाप निवाजे ठाकर, नीच कीट ते करह रजंगा, कबहू ना बिसरे ही ये मोरे ते, नानक दास ही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा, अचित पूजा जो गोपाल, मन तन अर्प रखो हर आगै, सर्ब जिया का है प्रतपाल। रहाओ शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल, कंठ लाए राख अपने को, तिसनो लगे न ताती बाल। दामोदर दयाल स्वामी, सर्बस संत जना तलमाल, नानक जाचक दर्स प्रमांग, संत जना की मिलै रवाल। बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन पए, साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन कौ त्रास अहे। रहाओ जेते पुनः चरण से कीने, मंतन प्रभ के चरण गहे, आवन जान परम पौ नाठा, जन्म जन्म के किल विख दहे। निरपौ होए पजो जगदीश, एहो पदार्थ वड पाग लहे, कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण।

तन तन कलातो सब देख अभमाना, बिन नामै किछ संग ना जाना रहाओ। कीचै रस भोग खुशियां मन केरी, तन लोका तन पसमै टेरी। खाकू खाक रलै सब फैल, बिन शब्द नहीं उतरै मैल। गीत राग कंताल से कूरे, त्रिगुण उपजे बिन से दूरे। दूजी दुरमत दर्द ना जाए, छूटै गुरमुख दारू गुण गाए। तोती उजल तिलक गल वाला, अंतर क्रोध पड़े नाटशाला। नाम विसार माया मद पिया, बिन गुर भगत नाही सुख थिया। सूकर स्वान गर्दप मंजारा, पशु मलेश नीचंडाला। गुर ते मोह फेरे तन जोन पवाईऐ, बंधन बांध्याई जाइऐ। गुर सेवा ते लह पदार्थ, हृदय नाम सदा कृतार्थ। साची दरगह पूछना होए, माने हुक्म सीजै दर सोए। सतगुर मिलै तां तिसको जाणै, रहर जाई हुक्म पछाणै। हुक्म पछाण सच्चै दरवास, काल बिकाल शब्द पै नास।

ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰ ਦਸਵਾਂ ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਗ ਕਊਆ ਮੁਖ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਝੂਠਿਆ ਮਾਨ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਪਾਜ ਰਹਿ ਗਨਿਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਚੀਤ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਹੋਰ ਝੂਠ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਕਹੇ ਆਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵੋ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਸਹਿਜ ਕਰ ਆਵੋ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਵਡਾਈ ਪਾਵੋ ਆਪ ਨਾ ਬੂਝੈ ਲੋਕ ਭਜਾਵੈ ਮਨ ਕਾ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਵੈ ਦਰ ਘਰ ਮਹਿਲ ਠੌਰ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ਹਰ ਜੀਓ ਸੇਵੀਐ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਜਿਸ ਕੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਆ ਚੱਲੈ ਪਹਿਨਾਮੀ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੈ ਆਪੈ ਆਪ ਮਿਲੈ ਚੁੱਕੈ ਅਭਿਮਾਨੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਖਾਨੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਜਾਈ ਔਗਣ ਕਾਟ ਪਾਪਾਂ ਮਤ ਖਾਈ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੋ ਕਾਟੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਈ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ ਗੁਰਮਤ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਗੁਰਮਤ ਮਾਨਿਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤ ਮਾਨਿਆ ਪਰਵਾਰ ਹੈ ਸਾਧਾਰ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਗਿਆਰਵਾਂ ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪੈ ਆਪ ਖਾਏ ਹੋ ਮੇਟੈ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਰਸ ਗੀਤ ਗਵਈਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਨਿਰਭਉ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਈਆ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਰਮਈਆ ਖਿਨ ਪਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਪਾਠ ਪੜਈਆ ਰਹਾਓ ਏਕ ਗਿਰਾਓ ਦਸ ਦੁਆਰ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਨਸ ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਚੋਰ ਲਗਈਆ ਧਰਮ ਅਰਥ ਸਭ ਹਿਰਲੇ ਜਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਦਲੇ ਖਬਰ ਨਾ ਪਈਆ ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਬਹੁਮਾਨਕ ਭਰਿਆ ਜਾਗੇ ਗਿਆਨ ਤਤ ਲਿਵ ਲਈਆ ਤਸਕਰ ਹੇਰੂ ਆਏ ਲੁਕਾਨੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਕੜ ਬੰਦ ਪਈਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪੋਤ ਬੋਇਥਾ ਖੇਵਟ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਪਾਰ ਲੰਘਈਆ ਜਮਜਾ ਗਾਤੀ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਤਸਕਰ ਚੋਰ ਲਗਈਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤੇ ਅੰਤ ਨਾ ਲਈਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁਆ ਇਕਤ ਘਰ ਆਵੈ ਮਿਲੋ ਗੋਪਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਈਆ ਨੈਨੀ ਦੇਖ ਦਰਸ ਮੰਤ੍ਰ ਤੈ ਸਰਵਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸੁਣਈਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਤਮ ਦੇਵ ਹੈ ਭੀਨੇ ਰਸ ਰਸ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਰਵਈਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਵੇ ਆਪੇ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਈਆ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣ ਹੈ ਨਦਰੀ ਆਵੈ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਰਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸਬਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਈਆ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਹੈ ਭਗਤ ਪਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਦਈਆ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੁਹੀਆ ਜਪ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਈਆ ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ ਜਿਉ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ ਰਹਾਓ ਪਾਰ ਅਠਾਰੈ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਉਤਮ ਚੰਦਨ ਨਿਗਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਊਬ ਸੁੱਕ ਹੋਵੇ ਮਨ ਅਭਮਾਨ ਵਿਛੜ ਦੂਰ ਗਈਆ ਹਰ ਗਤਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਭਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਨਈਆ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਵੈ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮਿਟਈਆ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁਲਈਆ ਗੁਰਚਰਨੀ ਇਕ ਸਰਦਾ ਉਪਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਹੀਆ ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰ ਧਿਆਏ ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਪਾਵਨੀ ਕਹੀਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਕਹੀਏ ਹਰ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਰੈ ਪਰਈਆ
शास्त्र वेद पुराण पुकारे, धर्म करो खट कर्म दृढ़ैया, मनमुख पाखंड परम विगूते, लोभ लहर नाव पार बुढ़ैया। नाम जपो नामे गत पावो, सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया, होमै जाए ता निर्मल होवै, गुरमुख परचय परम पद पैया, एहो जग वर्ण रूप सब तेरा, जितला वैसे कर्म कमैया। नानक जंत वजाए वाजै, जित पावै तित राहे चलैया, बिलावल महला चौथा। गुरमुख अगमया गोचर ध्याया, हों बल बल सतगुर सतपुरखैया, राम नाम मेरा प्राण वसाए, सतगुर परसार नाम समैया। जन की टेक हर नाम टकैया, सतगुर की तर लागा जावा, गुर कृपाते हर दर लहिया रहाओ। एहो शरीर कर्म की धरती, गुरमुख मथ मथ तत कढ़ैया, लाल जे वेहर नाम प्रगासिया, पांडे पाओ पवै तितैया, दासन दास दास होए रहिया। जो जन राम भगत निज पैया, मन बुद्ध अर्प धरो गुरे आगै, गुर प्रसादी मैं कथ कथैया। मनमुख माया मोहे वे आपे, एहो मन तृष्णा जलत दिखैया, गुरमत नाम अमृत जल पाया, अग्न बुझी गुर शब्द बुझैया, एहो मन नाचै सतगुरे आगै। अनहद शब्द तुन तूर वजैया, हर हर उसत करै दिन राती, रख रख चरण हर ताल पूरैया। हर कै रंग रता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चोवै तिन निर्मल, जिन पिया तिन ही सुख लैया, मन अठ कर्म करै अभिमानी, ज्यो बालक बालू कर उसरैया, आवै लहर समुद सागर की, खिन मैं भिन्न भिन्न टै पैया, हर सर सागर हर है आपे, एहो जग है सब खेल खिलैया, ज्यो जल तरंग जल जलै समावै, नानके आपे आप रमैया। बिलावल महला चौथा, सतगुर परचय मन मुंदरा पाई, गुर का शब्द तन पसम दृढ़ैया, अमर पिंड पय साधु संग, जन मरण दो मिट गैया। मेरे मन साध संगत मिल रहिया, कृपा करो मधुसूदन माधव, मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रहाओ। तजै ग्रस्त भया बनवासी, एक खिन मनुआ टिकै ना टिकैया, तावत ताए तदे कर आवै, हर हर साधु शरण पवैया। तिया पूत छोड़ सन्यासी, आसा आस मन बहुत करैया, आसा आस करे नहीं बूझै, गुर कै शब्द निरास सुख लहिया, उपजी तर्क दिगंबर होवा, मन दै दिस चल चल गमन करैया। पर पवन करै बूझै नहीं तृष्णा, मिल संग साध दया कर लहिया, आसन सिद्ध सिखै बहु तेरे, मन मांगै रिद सिद्ध चेटक चेटकैया। तृप्त संतोख मन शांत ना आवै, मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया, अंडज जेरज सेतज उत्पुज, सब वर्ण रूप जी जंतो पैया, साधु शरण परै सो उबरै, खत्री ब्राह्मण सूद वैसो चंडाल चंडैया। नामा जय देव कबीर त्रिलोचन, औ जात रविदास चमयार चमैया, जो जो मिले साधु जन संगत, धन धन्ना जट सहन मिलया हरदैया, संत जना की हर पैज रखाई, भगत वछल अंगीकार करैया, नानक शरण परे जग जीवन, हर हर कृपा तार रखैया। बिलावल महला चौथा, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरबचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया, राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हों आकल बिकल पई गुर देखे, हों लोट पोट होए पैया रहाओ, हों निरखत फिराओ सब दे दिसंतर, मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया,
मन तन काढ़ दियो गुरे आगे, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाइया। कोई आण संदेशा दे प्रभ केरा, हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काढ़ दियो चरणा तल, जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधै, गुण कामण कर हर प्रभ लैया। भगत वछल उवा को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछै पैया। खिमा सिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आग्या जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनिया, मन मोती चूर बड गहन गहनैया। हर हर सरदा सेज विशाई, प्रभ छोड़ ना सके बहुत मन पहिया। कह प्रभ अवर अवर किश की जय, सब बाद सिंगार फोगट फोगटैया। कियो सिंगार मिलन कह ताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पहिया। हम चेरी तू अगम गुसाई, क्या हम करे तेरे वस पहिया। दयाधीन करो रख ले वो, नानक हर गुर सरण समैया। बिलावल महला चौथा, मैं मंतन प्रेम अगम ठाकर का। खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया, गुर देखे सरदा मन पूरी। जो चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया। मिल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मेले। मैं तिस आगे सिर कट कट पैया, रहाओ रोम रोम मंतन एक बेदन। मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया, वैदिक नाटक देख भुलाने। मैं हृदय मंतन प्रेम पीर लगैया। हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम, ज्यो बिन अमल अमली मर गैया। जिन को प्यास होए प्रभ केरी, तिने अवर ना पावै। बिन हर को दुइया, कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावै। हौ तिस विटो बल बल घूम गैया, अनेक जन्म के विछड़े जन्मे ले। जा सत सत सतगुर शरण पवैया। सेज एक एको प्रभ ठाकर, महल ना पावै मन मुख परमैया। गुर गुर कर तो शरण जे आवै, प्रभ आए मिलै खिन ढील ना पैया। कर कर क्रिया चार वधाए, मन पाखंड कर्म कपट लोबैया। बेसुवै का बेसुआ कै, कर बेटा जन्मया। पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए। गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया। जा हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई। आपे कोल कोल अंग लैया, जिन को ठाकर कृपा तारी। बहां पकड़ नानक कढ़ लैया। राग बिलावल महला पंजवा, अष्टपदी घर बारवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की। उपमा जात ना कही, तज आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमल आधार, हौ जाओ सत बलिहार। मन प्रीत लागी ताहे, तज आन कतै ना जाहे। हर नाम रसना कहन, मल पाप कल मल दहन। चढ़ नाव संत उधार, पैतरे सागर पार। मन डोर प्रेम प्रीत, ए संत निर्मल रीत। तज गए पाप बेकार, हर मिले प्रभ निरंकार। प्रभ पेखी है बिस्माद, चख आनंद पूर्ण साध। नह डोलिए इतियूत, प्रभ बसे हर हर चीत। ते नाहे नरक निवास, नित सिमर प्रभ गुणतास। ते जमना पेखे नैन, सुन मोहे अनहत बैन। हर शरण सूर गोपाल, प्रभ भगत।

गोविंद पूर्ण आस एक निमख रहन ना जाए वड भाग नानक पाए प्रभ तुझ बिना नहीं होर मन प्रीत चंद चकोर जो मीन जल सो हेत अल कमल पहना पेत ज्यों चकवी सूरज आस नानक चरण प्यास ज्यों तरन भरत प्राण ज्यों लोभिए धन दान ज्यों दूध जलै संजोग ज्यों महा खुदियारथ भोग ज्यों मात पूतै हेत हर सिमर नानक नेत ज्यों दीप पतन पतंग ज्यों चोर हिरत निसंग महंग लैका मैं बंद ज्यों ग्रस्त बिखई तंद ज्यों जुआर बिसन ना जाए हर नानके हो मन लाए कुरंक ना दैने हो चात्रक चाहत में हो जन जीवना सतसंग गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्व फल हर ले कुल समूह कर तो दार संसार उत्तर सुपार हर चरण बोस्तता है मिल साध संग जसगाहे हर पैज रखे मुरार हर नानक शरण द्वार बिलावल महला पहला थिति कर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक में एक अंकार निराला अमरा जोनी जात ना जाला आगमा गोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देखिया जो देख दिखावै तिसको बल जाई गुरप्रसाद परम पद पाई क्या जब जापो बिन जगदीसै गुर कै शब्द महल कर दीसै रहाओ दूजे पाए लगे पछताने जमदर बांधे आवन जाने क्या लै आवै क्या ले जाहे सिर जमकाल से चोटा खाहे बिन गुर शब्द ना छूट सकोए पाखंड कीने मुक्त ना होए आपे सच किया कर जोड़ अंडज फोड़ जोड़ विछोड़ धरत आकाश किए बैसन को थाओ रात दिनंत किए पौ पाओ जिन किए कर वेखण हारा अवर ना दूजा सिरजनहारा तृतीया ब्रह्मा बिशन महेसा देवी देवो पाए वेसा ज्योति जाति गणत ना आवै जिन साजी सो कीमत पावै कीमत पाए रहा भरपूर किस नेड़े किस आखां दूर चौथे उपाए चारे बेदा खानी चारे बाणी भेदा अष्ट दशा खड़की ने उपाए सो बुझे जसिया बुझाए तीन समावै चौथे वासा प्रणवत नानक हम ताके दासा पंचमी पंचभूत बेताला आपा गोचर पुरख निराला एक ब्रह्म भूखे मोह प्यासे एक रस चाख शब्द तृप्तासे एक रंगराते एक मरतूर एक दर कर साचे देख दूर झूठे को नाही पत नाओ कबो न सूचा काला काओ पिंजर पंखी बंदिया कोए शेरी भरमै मुक्त ना होए तव छूटै जां खसम छड़ाए गुरमत मेले भगत रड़ाए खष्टी खट दर्शन प्रभ साजे अनहद शब्द निराला वाजे जे प्रभ पावै ता महल बुलावै शब्दे भेदे तव पत पावै कर कर वेस खपै जल जावै साचे साचे साज समावै सप्तमी सत संतोख शरीर सात समुंद भरे निर्मल नीर मज्जन सील सचरदै विचार गुर कै शब्द पावै सब पार मन साचा मुख साचो पाए सचमी साणे ठाक ना पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधै सच नेह केवल कर्म आराधै पौन पानी अग्नि बिसराओ तही निरंजन साचो नाओ तिसमें मनुआ रह लिवलाए प्रणवत नानक काल ना खाए नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ महाबलवंडा
आई पूता एहो जग सारा प्रभ आदेश याद रखवारा आज जुगादी है पी होग ओ परंपर करना जोग दसवीं नामदान इशनान अंदन बजन सच्चा गुण ज्ञान सच मैल न लागै भ्रम पौ पागै बिलम न टूट सका चै तागै ज्यों तागा जग एवै जानो अस्त्र चा अस्त्र जी साज रंग माणो एकादशी करदै वसावै हिंसा ममता मोह चुकावै फल पावै व्रत आत्म चीनै पाखंड राज तत् नहीं बीनै निर्मल निराहार नेह केवल सूचे साचे ना लागै मल जै देखो तह एको एका होर जियो पाए वेको वेका फलो हर किए फल जाए रस कस खाए साध गवाए कूड़ै लालच लपटै लपटाए छूटै गुरमुख साच कमाए द्वादस मुंद्रा मन अवदूता अहनस जागै कवै ना सूता जागत जाग रहै लिवलाए गुर परचै तस्खाल ना खाए अतीत भय मारे बैराई प्रणवत नानक तै लिवलाई द्वादशी दया दान कर जाणै बाहर जातो भीतर आणै बरती बरत रहै नेकाम अजपा जाप जपै मुख नाम तीन पवन मैं एको जाणै सब सुत संयम साच पछाणै तेर सतरवर समुंद किनारै अमृत मूल शिखर लिवतारै डर डर मरै ना बूढ़ै कोए निडर बूढ मरै पत खोए डर मैं घर घर मैं डर जाणै तख्त निवास सच मन पाणै चौदस चौथे थावै लै पावै राजस तामस सतकाल समावै ससियर कै कर सूर समावै जो जूत की कीमत पावै चौदस पवन पताल समाए खंड ब्रह्मंड रहा लिवलाए अमावस्या चंद गुप्त गैनार बुझो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन जोत तिहो लोई कर कर वेखै करता सोई गुरते दिसै सो तिसहि माहे मनमुख पूले आवै जाए घर दर थाप थिरथान सुहावै आप पछाणै जां सतगुर पावै जह आसा तह बिनस बिनासा फूटै खप्पर दुबदा मनसा ममता जाल ते रहै उदासा प्रणवत नानक हमता के दासा बिलावल महला तीजा वार सत कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदित वार आद पुरख है सोई आपे वरतै वरना कोई ओत पोत जग रहा परोई आपे करता करे सो होई नाम रते सदा सुख होई गुरमुख विरला बूझै कोई हिरदय जपनी जपो गुणतासा हर अगम्या गोचर परंपर स्वामी जन पग लग त्यावो होए दसन दासा रहाओ सोमवार सच रहा समाए तिसकी कीमत कही ना जाए आख आख रहे सब लिवलाए जिस देवै तिस पल्लै पाए अगमा गोचर लखिया ना जाए गुर कै सबदा रहा समाए मंगल माया मोह उपाया आपे सिर सिर तंद लाया आप बुझाए सोई बूझै गुर कै शब्द दर कर सूझै प्रेम भगत करे लिवलाए हम मैं ममता शब्द जलाए बुधवार आपे बुध सार गुरमुख करनी शब्द विचार नाम रते मन निर्मल होए हर गुण गावे हम मैं मल खोए दर सच्चै सद सोभा पाए नाम रते गुर शब्द सुहाए लाहा नाम पाए गुरुद्वार आपे देवै देवनहार जो देवै तिसको बल जाइए गुर प्रसादी आप गवाइए नानक नाम रखो और तार देवनहारे कौ जयकार वीरवार वीर परम पुलाए प्रेत पूत सब दूजै लाए आप उपाय कर वेखै वेका सबना करते तेरी टेका जी जंत तेरी शरणाई सो मिले जिस लह मिलाई
ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰਵਰਿਆ ਸਮਾਈ, ਆਪਿਓ ਪਾਏ ਸਭ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਰ। ਵਰਤ ਨੇਮ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਪੂਜਾ, ਬਿਨ ਬੂਜੇ ਸਭ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਸ਼ਨਿਸ਼ਰਵਾਰ ਸਾਉਣ ਸਾਸਤ ਵਿਚਾਰ, ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਮੈ ਸੰਸਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਦੂਜੈ ਪਾਏ, ਜਮਦਰਬਾ ਦਾ ਚੋਟਾ ਖਾਏ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਾਚ ਲਿਵਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੇਵਟ ਭਾਗੀ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਹਾਰ ਸੱਚ ਲਿਵਲਾਗੀ। ਤੇਰਾ ਰੰਗਰਾਤੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਤੂੰ ਸੁਖਦਾਤਾ।

ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिया आप करता आप पहुता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया बिलावल महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वस आओ सखी असी फिरका मंगल गावै तजमान सखी मत अपने प्रीतम पावै तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजन हो लग चरण सरण दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी ताजो दासी बहुड बिदी ना तावा नानक पयम पै करो कृपा ताम मंगल गावा अमृत प्रे का नाम मैं अंधले टोहनी ओह जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी महाबचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए टीठ मीठी मन लागे नाम लैण ना आवे ग्रेब बने तीरे बर्त पूजा बाट काटे जोहनी नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंदरे टोहनी मोह नाथ प्रे नाथ जो जानो त्यो रखो चतराई मोह नाए रिझावो कै मुखो नह चतर सुगर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं।

ब्रह्मो ही दुख न जानही कोड़ जोनी बसना राम। नानक बिन हर अवर जे चाहना बिष्टाक्रम पसमा राम। लाए ब्रो भगवंत संगे होय मिल बैरागन राम। चंदन चीर सुगंध रसा हमे बिखत्या गन राम। ई तूत ने डोली है हर सेवा जगन राम। नानक जन प्र पाया अपना सा अटल सुहागन राम। बिलावल महला पंजवा हर खोजो वड़ भागियो मिल साधु संगे राम। गुण गोविंद सद गाई पार ब्रह्म कै रंगे राम। सो प्रभ सद ही सेवी पाई फल मंगे राम। नानक प्रभ शरणागति जप अंत तरंगे राम। एक तिल प्रभु ना विसरै जिन सब किश दीना राम। वड भागी मेला वड़ा गुरमुख पिरची नाराम। बाहां पकड़ो तम ते काढ़िया कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवै शीतल मन सीना राम। क्या गुण तेरे कह सको प्रभ अंतर जामी राम। सिमर सिमर नारायण पै पार ग्रामी राम। गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पुजामी राम। नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम। रस पिन अड़े अपने राम संगे से लोइन नीके राम। प्रपेक्त इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम। अमृत रस हर पाया बिखिया रस पीके राम। नानक जल जलै समाया ज्योति ज्योत मी के राम। बिलावल की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला चौथा हर उत्तम हर प्रभ गाव्या करनाद बिलावल राग। उपदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा पाग। सब दिन सरैन गुण उचरै हर हर हर उर लिव लाग। सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग। अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग। जन नानक जीवै देख हार एक निमख कड़ी मुख लाग। महला तीजा बिलावल तब ही कीजिए जब मुख होवै नाम। राग नाद शब्द सोहने जान लागै सहि त्यान। राग नाद छोड़ हर सेवी तां दरगै पाईए मान। नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी है चूकै मन अभमान। पौड़ी तू हर प्रभ आप या गम है सब तो दे पाया। तू आपे वरदा सब जग सवाया तो दे आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया। हर त्यावो भगतो दिन सरात अंतले छड़ाया। जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया। श्लोक महला तीजा दूजे पाए बिलावल ना हो वही मन मुखाए ना पाए। पाखंड भगत ना हो वही पार ब्रह्म ना पाया जाए। मन अठ कर्म कमावणे थाए ना कोई पाए। नानक गुरमुख आप बिचारी है विचों आप गवाए। आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए। जमन मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाए। महला तीजा बिलावल करो तुम प्यारे हो एक सिंह।

सत्संगति बह पाओ कर सदा हर के गुण गाए। नानक से जन सोहने जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी सबना जिया विच हर आप सो भगतां का मित हर सब कोई हर कै वस भगतां कै आनंद कर हर भगतां का मेली सरबत सो निसल जन टंग तार हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर तुद अपड़ कोय ना सकै सब चख चख पवे चाड़। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदै ते ब्राह्मणा जे चलै सतगुर पाए जिन कै हृदय हर वसै हम मै रोग गवाए। गुण रवै गुण संग्रह ज्योति ज्योत मिलाए इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदै चित लाए। नानक जिन को नजर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाए। महला तीजा। सतगुर की सेवना कीतिया शब्द ना लगो पाओ हम मैं रोक मावना अदीर्घ बहु सुआओ। मन हठ कर्म कमाव दे फिर जोनी पाए गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लय मिलाए। नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्लै पाए पौड़ी। सब वड्याइया हर नाम विच हर गुरमुख त्याई है जे वस्त मंगी है साई पाई है जे नाम चित लाई है। गोहज गल जी की कीचै सतगुरु पास ता सर्व सुख पाई है गुरपुरा हर उपदेश दे सब भुख लै जाई है जिस पूर्व होवै लिखिया सो हर गुण गाई है। सलोक महला तीजा। सतगुर ते खाली को नहीं मेरा प्रभ मेल मिलाए सतगुर का दर्शन सफल है जिहा को इच्छे तिहा फल पाए। गुर का शब्द अमृत है सब तृष्णा भुख गवाए हर रस पी संतोख होवा सच वस्या मन आए। सच ते आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सचो दैद पसरिया गुर कै सह सुवाए। नानक जिन अंदर सच है से जन छपै ना किसै देश पाए। महला तीजा। गुरसेवा ते हर पाई है जा को नदर करे मानस ते देवते पए सच्ची भगत जिस दे हाँ मैं मार मिलायन गुर कै शब्द सोचे नानक सह जे मिल रहे नाम वड्याई दे पौड़ी। गुर सतगुर विच नाम है की वड्डी वड्याई हर करतै आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओना अंदर हिरदै पाई। निंदक दुष्ट वड्याई वेख ना सकन ओना प्राया भला ना सुखाई क्या होवै किसी दी क्या होवै किसी की चख मारी जा सच्चे स्यों बने आई। जे गल करते पावै सा नित नित चढ़ै सवाई सब चख चख मरै लोकाई। सलोक महला तीजा। त्रिग एह आसा दूजे भाव की जो मोहे माया चित लाए हर सुख पल्लर त्यागिया नाम विसार दुख पाए। मनमुख अज्ञानी अंधले जन्म मरै फिरे आवै जाए कार्य सिद्ध न होवनी अंत गया पछताए। जिस कर्म होवै तिस सतगुर मिलै सो हर हर नाम ते आए नाम रते जन सदा सुख पाए। न जन नानक तन बल जाए। महला तीजा। आसा मनसा जग मोहनी जिन मोया संसार सब को जम के चीरे विच है जेता सब आकार हुक्मी ही जम लगदा सोबरै जिस बख्शै करतार। नानक गुर प्रसादी हो मंतांतर है जा छोड़ै हंकार आसा मनसा मारे निरास होए गुर शब्दी विचार पौड़ी। जिथे जाइए जगत मैं तिथे हर साई अगै सब आपे वरतदा हर सच्चा न्याई। कूड़ यारा के मोह फिटकी सच भगत वड्याई सच साहेब सच्चा न्याओ है सिर निंदक शाई

तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार। कह कबीर सेवा करो मन मंज मुरार, बिलावल जन मरण का भ्रम गया गोविंद लिवलागी, जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रहाओ। काशी ते तुनी उपजै तुन काशी जाई, काशी फूटी पंडता तुन कहां समाई। त्रिगुटी संद मैं पेखिया कट हूं कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी कट माहे त्यागी। आप ते जानिया ते ते समाना, कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना। बिलावल चरण कमल जहां कर दे बसै, सो जन क्यों डोले देव। मानो सब सुख नव निदता कै, सहज सहज जस बोले देव रहाओ। तब एह मत जो सब मैं पेखै, कुटल गांठ हो जा।

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग गोंड चौप दे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर जिसकी आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रहा समाई। मेरे मानो आसा कर जगदीश गुसाई। जो बिन हर आस अवर कहूं की जय साने फल आस सब बिरथी जाई रहाओ। जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किश हाथ नहीं कहां करे एह बपड़े इनका वाहया कश नाम वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की। जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छिड़ाई। जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कितै कम आई। ए आस पर मित्री पाओ दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की। जो तेरा कालिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी। जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बुझ बुझाई। जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित्याई है जो खिन मैं किले बखो सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेव सब भूख लहसा। मेरे मन हरि उपर की जय परवासा। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ताया गए अपनी बिरथा बह बहुत कटासा। अपनी बिरथा कहो हरि अपने स्वामी पहे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए अवरा पह कहे मन लाज मरासा। जो संसार है के कुटंब मित्र भाई दिसे मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा। जे

जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरपुरे की बेअंत वडाई, गुर प्रसाद ऊर्द कमल विगास, अंधकार मैं भया प्रगास, जिन किया सो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया, गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेसर है पी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, बिन गुर मुक्त ना पाई है पाई, गोंड महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहो दिन रात, जा की कोई न मिटे दात, गुर परमेसर एको जान, ज्योतिष पावे सो प्रवान, रहाओ गुर चरणी जा का मन लागे, दुख दर्द प्रमता का भागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर उपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूर्ण काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापै, गुर का सेवक दे जापै, गुर की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुर आसमाए, कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ता का मन लाग, गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देओ अलाखा पेओ, सर पू चरण गुर से ओ, गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अंधन जपो गुरु गुर नाओ, रहाओ गुर मेरा ज्ञान, गुर दै ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोइथ तारे पव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार मैं गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाइए वड भागी, गुर की सेवा दुख ना लागी, गुर का शब्द ना मेटै कोए, गुर नानक नानक हर सोए, गोंड महला पंजवा, राम राम शंकर व्यवहार, राम राम राम प्राण आधार, राम राम राम कीर्तन गाए, रमत राम सबरे उसमाए, संत जना मिन बोलो राम, सब ते निर्मल पूर्ण काम, रहाओ राम राम तन संच पंडार, राम राम राम कर आहार, राम राम विसर नहीं जाए, कर कृपा गुर दिया बताए, राम राम राम सदा सहाय, राम राम राम लिवलाए, राम राम जप निर्मल पै, जन्म जन्म के किल बिख गए, रमत राम जन्म मर निवार, उचरत राम पै पार उतार, सब ते ऊच राम प्रगास, निस्बासर जप नानक दास, गोंड महला पंजवा, उनको खसम कीनी ठाक हारे, दास संगते मार बिदारे, गोविंद भगत का महल ना पाया, राम जना मिल मंगल गाया, सगल श्रेष्ठ के पंच सिकदार, राम भगत के पानी हार, रहाओ।

हाँ, जा कौ राख राखनहार, तिसका अंकर निरंकार। रहाओ मात गर्व में अगन्ना जो है, काम क्रोध लोमो नापो है। साध संग जप निरंकार, निंद कै मोय लागे शार। राम कवचो दास का सन्ना हो, दूत दुष्ट तिसको हत नाहे। जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए। जे को बहुत करे अहंकार, ओ खिन मैं रुलता खाकू नाल। है पी साचा हो बनहार, उस दास दा जाई बलिहार। अपने दास रखे कृपा तार, नानके प्रभ प्राण आधार। गोंड महला पंजवा, अचरज कथा महानूप। प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ। ना हो बूढ़ा ना हो बाला, ना इस दुख नहीं जमजाला। ना हो बिनसे ना हो जाए, आज गादी रहा सुमाए। ना इस पुसन नहीं है सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत। ना इस अर्ख नहीं है सोग, सब किश इसका यो करने जोग। ना इस बाप नहीं है समाया, यो परम्पर होता आया। पाप उनका इसलिए अपना लाग गए, कटकट अंतर सद ही जग गए। तीन गुणा एक सकतो पाया, महामाया ता की है छाया। अशाला शेदा पे दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल। ता की गतमित कशु ना पाए, नानक ता कह बल बल जाए। गोंड महला पंजवा, संतन कह बलहार है जाओ। संतन कह संग राम गुण गाओ। संत प्रसाद किलवख सब गए, संत शरण वड पागी पए। राम जपत कछ विघ्न ना लागे, राम जपत कछ विघ्न ना व्यापै। गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै रहाओ। पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करै लवाल। काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसै मन आए। सफल जन्म ताका प्रवाण, पार ब्रह्म निकट कर जान।

देख इस मरते कहो जे कहो रोवे जो रोवे सोई पत खोवे गुर प्रसाद मैं डगरो पाया जीवन मरण दो मिटवाया कहो कबीर एहो राम की अंश जस कागत पर मिटे ना मंस गोंड टूटे तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चिलकावे कान कूच बिचारे फूए फाल या मुंडिया सरचंड बोकाल एहो मुंडिया सगलो दरब खोई आवत जात नागसर हो।

नरते सुर होए जात निमुख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई नरते उपज सुर्ग कौ जीते ओ सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेकै नैकट काव मोहे तेरे नाम अवलंब बहुत जने उदरे नामे की निजमत एहे गोंड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली पानिया बिन मीन तलफै ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाओ जैसे गाय का बाचा शूठला तन थन चोखता माखन कूटला नाम देव नारायण पाया गुर भेटता लख लखाया जैसे बिखै हेत पर नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी जैसे ताप ते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गोंड बाणी नाम देव जियो की कर दूजा एको अंकार सदगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम लै उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंधले की लकरी हर ए नमस्ते हर ए नमः हर हर कर तो नहीं दुख जमाए रहाओ हर हर नक्श हरे पर

कपटै परी सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सला निस्तरी केसी कंस मथन जिनकिया जी दान काली कौदिया प्रणवै नामा ऐसो हरी जास जबद पै अपदा तरी गोंड पैरो पूत सीतला तावै खर बाहन ओ शारो डावै हाँ तो एक

बर्द चढ़े डौरू टमकावे, महामाई की पूजा करै, नरसे नर होए अवतरै। तू कहत ही अद भवानी, मूत की बरिया कहां छपानी। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो पी आवत देखा था। रावण सेती सरबर होई कर की जो गवाई थी। हिंदू अन्ना तुर्कु काना दोहा ते ज्ञानी सियाना। हिंदू पूजा देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या। जय देहोरा नाम सीत। रागौंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे ताके सेव कौसदा आनंदे रहाओ। मुकंद मुकंद हमारे प्राणं जप मुकंद मस्तक निशानं। सेव मुकंद करे बैरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादी। एक मुकंद करे उपकार हमरा कहां करे संसार। मेटी जात हुए दरबार तुही मुकंद जोग जुगतार। उपजो ज्ञान हुआ प्रगास कर कृपा लीने कीत दास। कहो रविदास अब तृष्णा चुकी जप मुकंद सेवा ताहू की। गौंड जे हो 68 तीर्थ नावे जे हो द्वादश शिला पूजावे। जे हो कूप तटा देवा वै करे निंद सब बिरथा जावे। साध का निंद

जे हो अनक प्रसाद करावै भूमदान शोभा मंडप पावै अपना बिगार बिराना सांडै करै निंद बोजो नी हांडै निंदा कहा करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया जोड़ राम कली महा।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन सजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवै अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नरहरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंधकूप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सरबर भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रया सुमाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसै कमन दर कहिया। दरा पीतर दर कमन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिया। जीव त्याने मरिया रहाओ, दुख दरवाजा रोहो रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कै आसन पुरख रह, किंते न मायंत न जानिया। तुम सर नाही अवर हरे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना। आपे जाने आप करे, जब आसा अंदेसा तब ही। क्यों कर एक कह, आसा पीतर रह निराशा। तव नानक एक मिले, इन बिद सागर तरिय। जीवत आयो मरिय रहाओ दूजा। राम कली महला पहला, सुरत शब्द।

गोरख सो जन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन को धरती दीनी एते गुण विसरे। सिद्ध साधक यार योगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे जेतन मिला ता कीर्त आखा ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला सुन माशिंद्रा नानक बोले वसगत पंच करे नहीं डोले। ऐसी जुगत जो कौ पाले आप तरह सगले कुल तारे। सो अवधूत ऐसी मत पावे अहनिस सुन समाज समावे रहाओ। भिखिया पाए भगत पै चले होवे सो तृप्त संतोख अमुले। ध्यान रूप होए आसन पावे सच नाम ताड़ी चितलावे। नानक बोले अमृत बाणी सुन माशिंद्रा औदू निशानी। आसा महे निरास वलाए निहचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगमुख सुनाए गुर चेले की संध मिलाए। दिखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए। राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप परी है पवन लगे मत जाई। सनमुख सिद्ध पेटन को आए निहचो दे वड़ियाई। गुरतार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अविनाशी हाँ तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी त्याया। परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेसर नानक पेटे ओ साचे शब्द नवेरा। राम कली महला पहला सुरती सुरतर लाइए एत तन कर तुल्हा लंगे जेत। अंतर पाहित से तू रख एनस दीवा बल अथक। ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सो जी पाए रहाओ। हच्ची

रामकली महला पहला, सागर में बूंद, बूंद में सागर, कवन बुझे बिद जाने, उत्पो चलते आप कर चीने, आपे तत् पछाणे, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ, दिन में रहण रैन में दिनियर उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित यवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई, पुरख में नार, नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी, मन में जोत, जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई, राम कली महला।

सो हर जनो हर प्रभु भावै, अहनस भगत करे दिन राती, ला छोड़ हर के गुण गावै रहाओ। धुन वाजे अनहद कोरा, मन मान्या हर रस मोरा, गुर पूरे सच समाया, गुर आदि पुरख हर पाया, सब नाद वेद गुरबाणी, मन राता सारंग पाणी, तह तीर्थ वर्त तप सारे, गुर मिलिया हर निस्तारे, जय आप गया पौ भागा, गुरचरणी सेवक लागा, गुर सतगुर भरम चुकाया, कहो नानक शब्द मिलाया, आराम कली महला पहला, शादन भोजन मांगत पागै, खुदया दुष्ट जलै दुख आगै, गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई, गुरमत भगत पावै जन कोई, जोगी जुगत सहज कर वासै, एक दृष्ट एको कर देखिया, भीखिया पाए सब तृप्ता सह रहाओ। पंच बैल गड़िया देह तारी, राम कला निबह पत सारी, तर टूटी गाडो सिर पार, लकड़ी बिखर जरी मंज पार, गुर का शब्द विचार योगी, दुख सुख सम करना सोग बियोगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी, अस्त्र कंध जपै निरंकारी, सहज जगोटा बंधन ते छूटा, काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन मैं मुंदरा हर गुर सरना, नानक राम भगत जन तरना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम कली महला तीजा, कर पहला सतयुग सच कह सब कोई, कर कर भगत गुरमुख होई, सतयुग धर्म पैर है चार, गुरमुख बूझै को बीचार, जुग चारे नाम वड्याई होई, जे नाम लागै सो मुक्त होवै, गुरबिन नाम ना पावै कोई रहाओ। त्रेता एक कलकीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जान दूर, गुरमुख बूझै सोजी होई, अंतर नाम वसै सुख होई, द्वापर दूजै दुबदा होए, परम भुलाने जाने दोए, द्वापर धर्म दोए पैर रखाए, गुरमुख होवै ता नाम दृढ़ाए, कल युग धर्म कला एक रहाए, एक पैर चलै माया मोह वधाए, माया मोह अत गुबार, सतगुर पेटै नाम उधार, सब युग में साचा एको सोई, सब में सच दूजा नहीं कोई, साची कीर्त सच सुख होई, गुरमुख नाम वखाणै कोई, सब युग में नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझै कोई, हर नाम ते आए भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम वड्याई होई, राम कली महला चौथा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जे वडभाग होवै वडभागी, ता हर हर नाम ते आवै, नाम जपत नामे सुख पावै, हर नामे नाम समावै, गुरमुख भगत करो सद प्राणी, हृदय प्रगास होवै लिव लागै, गुरमत हर हर नाम समाणी रहाओ। हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग होवै वड मस्तक, तिन गुरमत कड काढ लिया, रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर काढ तली दिखलाया, भागहीन मनमुख नहीं लिया, तृण ओलै लाग छपाया, मस्तक भाग होवै तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवेहर पावै, तन तन गुरमत हर पाए, राम कली महला चौथा, राम जना मिल पया आनंदा, हर निकी कथा सुनाए, दुरमत मैल गई सब निकल, सतसंगत मिल बुद्ध पाए, राम जान गुरमत राम बोलाए, जो जो सुने कह सो मुक्ता, राम जपत सोहाए रहाओ। जेवड़ भाग होवै मुख मस्तक, हर राम जना पेटाए, दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दालत दुख लह जाए, हर के लोग राम जानी के, पागहीन ना सुखाए,
ज्यों ज्यों राम कहे जन उच्चे नरनिंदक डंस लगाए। त्रिग त्रिग नरनिंदक जिन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए से हर के चोर। वे मुख मुख काले जिन गुर की पैज ना पाए, दया दया कर राखो हर जियो हम दीन तेरी शरण आए। हम बार्क तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मिलाए। राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जानी के तनी ऊपर हाथ बतावे। गुरमुख साध से प्रभ पाए, कर कृपा आप मिलावे। राम मोको हर जन मेल मन पावे, अम्यो अम्यो हर रस है मीठा। मिल संत जना मुख पावे रहाओ, हर के लोग राम जानी उत्तम। मिली उत्तम पदवी पावे, हम होवत चेरी दास दासन की। मेरा ठाकर खुशी करावे, सेवक जन सेवे सेवट पागी। रिद मंतन प्रीत लगावे, बिन प्रीति करे बहु पाता। कूड़ बोल कूड़ो फल पावे, मोको तार कृपा। जग जीवन दाते हर संत पगी ले पावे। हों काटो काट बाढ़ सिर रखो, जित नानक संत चढ़ आवे। राम

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे एहो नृतकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक।

कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बंश है पिस्त, कोई सुरग हिंदू। कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक।

अगली किश खबर ना पाई, रोवनहार पे उठ सिधाई, पर मोह के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंद। एहो तौ रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार, नह को मुआ ना मरने जोग, नह बिनसै अविनाशी होग। जो एहो जानो सो एहो नाए, जानन हारे कौ बल जाओ। कहो नानक गुर भरम चुकाया, ना कोई मरै ना आवै जाया। राम कली।

जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगे टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचे लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला। ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर जन नानक जोगी होवा अस्तर। इउं जपया नाथ दिन रहन आई हुण पाया गुर गोसाई रहाओ। दूजा राम कली महला पंजवां करण करावन सोई आना दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै डीठा रहाओ। निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर भय ने काम। तन मन शीतल अगन निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किश तेरा सत बलिहार जाऊं लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब

संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सोरत मत बुद्ध प्रगास, गहर गंभीर अपार गुणतास, जी जन

हर हर नाम जपै जन कोए ता की आसा पूर्ण होए। हर भगतन को नाम आधार संती जीता जन्म अपार। हर संत करे सोई प्रमाण नानक दास ता कै कुर्बान। आराम कली महला पंजवां सिंचै दर्ब देह दुख लोग तेरा काज ना अवरा जोग। कर अहंकार होए वरतै अंध जम की जेवड़ी तू आगे बंद। छाड़ विडाणी तात मूड़े इहां बसना रात मूड़े। माए माया कै माते तैं उठ चलना राच रहो तू संग सुपना रहाओ। बाल व्यवस्था बार के अंध पर जोबन लागा दुर्गंध। तृतीय व्यवस्था सिंचे माए बिरध भया छोड़ चले।

ताप कपट खुलाने प्रम नाठे दूरे नानक कौ गुर पेटे पूरे। राम कली महला पंजवा कोट जापता विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रसै गुरमुख नाम निमख हृदय वसै हर के नाम की वड़ियाई कीमत कहन न जाई रहाओ सूर बीर।

रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे तब यो सेवक सेवा करे मुख बेरावे अंत ठगावे एक ठौर ओ कई ना सुमावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड राम जनी की नी खंड खंड जो मांगे सो भूखा रह इस संग राचै सो कछु ना लह। ऐसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक हो तरह। राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्व मैं पेख पूर्ण पूर रहा प्रभ एक। रत्न मोल हृदय मैं जान अपनी वस्तु पछान पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाइए बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ दस वेद सुने कह डोरा कोट प्रकाश ना दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचे जिसनी बुझावे सो कित बिद बुझे। जानन हार रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे नानक तिन जम नेण न आवे। राम कली महला पंजवा दीनो नाम कियो पवित हर तन रास निरास ए बित। काटी बंद हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जानू अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ

मिट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मनते कबो न विसर गोपाल तेरे दास की हो मातूर नानक की प्रभ सरदा पूर रामकली महला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुझ में दूजा नाही कोय तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरन तारण प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा तुझ बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ जप जप जीवा तेरा नाओ आगे दरगे पावो ठाओ दुख अंधेरा मन ते जाए दुर्मत बिनसै रचै हर नाए चरण कमल स्यों लागी प्रीत गुरपुरे की निर्मल रीत पहो पागा निरपव मन बसै अमृत नाम रसना नित जपै कोट जन्म के काटे फाहे पाया लाभ सच्चा तन लाहे तोट न आवै अखुट पंडार नानक भगत सोहै हर द्वार राम कली महला पंजवा रतन जिवे हर नाम सत संतोख ज्ञान सुख सहज दया का पोता हर भगता हवाले होता मेरे राम को पंडार खात खर्च कष्ट उठना आवै अंत नहीं हर पारावार रहाओ कीर्तन निर्मोल हीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी सुन समाध गुफा तय आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन भगत भगत संग प्रभ गोष्ठ करत तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप देवाया साध संग तिन हर तन पाया दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी वर्त

अवतार न जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत, अपनी गाते आप जाने, सुन सुन अवर वखाने रहाओ, संकरा नहीं जाने पेव, खोज तहारे देव, देविया नहीं जाने मर्म, सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपने रंग करता केलो, आप बिछोरा आपे मेल, एक परमे एक भक्ति लाए, अपना किया आप जनाए, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी, नहीं लेप तिस पुन्ना पाप, नानक का प्रभ आपे आप, रामकली महला पंजवा, किशु काज न कियो जान, सुरत मत नाही किश ज्ञान, जाप ताप सील नहीं धर्म, किशु ना जानो कैसा कर्म, ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे, तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, भूले चूके प्रभ तेरे रहाओ, रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास, बिखे ब्याद के गाव में बास, करणहार मेरे प्रभ एक, नाम तेरे की मन में टेक, सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम, पाप खंडन प्रभ तेरो नाम, तू अगंत जी का दाता, जिसे जनामे तिन तू जाता, जो उपायो तिस तेरी आस, सगला राधा है प्रभ गुणपास, नानक दास तेरे कुर्बान, बेअंत साहिब मेरा मेहरबान, रामकली महला पंजवा, रखन हर दयाल, कोट पव खंडे निमख ख्याल, सगल अराधय जंत, मिलिय प्रभ गुर मिलमंत, जियन को दाता मेरा प्रभ, पूर्ण परमेश्वर स्वामी, कट कट राता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट, बंधन ते होई छोट, हृदय जप परमानंद, मन माहे पै आनंद, तारण तरण हर शरण, जीवन रूप हर चरण, संतन के प्राण आधार, ऊचे ते ऊचा पार, सुमत सार जित हर समरीजै, कर कृपा जिस आबे दीजै, सुख सहज आनंद हर नाओ, नानक जपया गुरमिल नाओ, राम कली महला पंजवा, सगल सियान पिछाड़, कर सेवा सेवक साज, अपना आप सगल मिटाए, मन चिंदे से ही फल पाए, हो सावधान अपने गुर स्यों, वासा मनसा पूर्ण होवे, पावे सगल निधान गुर स्यों रहाओ, दूजा नहीं जाने कोए, सतगुर निरंजन सोए, मानुख का कर रूप न जान, मिलीन माने मान, गुर की हर टेक टकाए, अवर आसा सब लाहे, हर का नाम मांग निधान, ता दरगह पावे मान, गुर का बचन जप मंत, एहा भगत सार तत्, सतगुर पै दयाल, नानक दास निहाल, राम कली महला पंजवा, होवे सोई पल मान, अपना तजा मान, दिन रहन सदा गुण गाओ, पूर्ण ही सो आओ, आनंद कर संत हर जप, शाड़ सियाणप बहु चतराई, गुर का जप मंत निर्मल रहाओ, एक की कर आस भीतर, निर्मल

वे प्रवाह व गोचर आप आठ पहर मंता को जाप जिस चित आए बिनसै दुखा हलत पलत तेरा उजल मुखा कौन कौन उदरे गुण गाए गन न जाई किम न पाए बूढ़त लोहो साध संग तरै नानक सै प्राप्त करै राम कली महला पंजवा मन माहे जाप भगवंत गुरपुर एहो दीनो मंत मिटे सगल पैतरास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किश कहण ना जाई साचे साचा लाखा पेवा रहाओ करन कराम ने आप तिसको सदा मन जाप तिसकी सेवा करनी तो सच सह सुख पावे मीत साहेब मेरा अत पारा खिन मैं था प्यो था पनहारा तिस बिन अवर ना कोई जनका राखा सोई कर कृपा अरदास सुनी जय अपने सेवक को दर्शन दी जय नानक जापी जब जाप सब ते उजा का प्रताप राम कली महला पंजवा बिरथा प्रवासा लोक ठाकर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकर भेटे गुणतास एको नाम त्याय मन मेरे कार्य तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही ते आया आनंद हर रूप दिखाया तिस ही की ओर सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान रखन हार निदान सर्व की

कारण करण करीम सर्व प्रतपाल रहीम अल्लाह लाख अपार खुद खुदाए वड बेसुमार। ओ नमो भगवंत गुसाई खालक रव रया सर्व ठाई रहाओ जगनाथ जगजीवन माधो पौ पंजन रिद माया राधो रिखी केस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद।

सब नसे। गोपाल को जस गाओ प्राणी, अकथ कथा साची प्रपूर्ण, ज्योति जो समानी रहाओ। तृष्णा पूख सब नासी, संत प्रसाद जपया बनासी। रहन दिनस प्रभ सेवक मानी, हर मिलने किए निशानी। मिटे जंजाल होए प्रभ दयाल, गुर का दर्शन देख निहाल। परा पूर्वला कर्म बने आया, हर के गुण नित रसना गाया। हर के संत सदा प्रवान, संत जना मस्तक निशान। दास की रेण पाए जे कोए, नानक तिसकी परम गत होए। राम कली महला पंजवा, दर्शन कौ जाइए कुर्बान। चरण कमल हृदय तर ध्यान, तूर संतन की मस्तक लाए। जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए, जिस भेट मिटे अभमान। पार ब्रह्म सब नदरी आवे, कर कृपा पूर्ण भगवान रहाओ। गुर की कीर्त जपिए हर नाओ, गुर की भगत सदा गुण गाओ। गुर की सुरत निकट कर जान, गुर का शब्द सत कर मान। गुर बचनी समसर सुख दुख, कदे ना व्यापै तृष्णा भूख। मन संतोख शब्द गुर राजे, जब गोविंद पढ़दे सब काजे। गुर परमेश्वर गुर गोविंद, गुरदाता दयाल बख्शिंद। गुर चरणी जा का मन लागा, नानक दास तिस पूर्ण भागा। राम कली महला पंजवा, किस परवासै बिचरै भवन। मूड मुगद तेरा संगी कवन, राम संगी तिस गत नी जानै। पंच बटवारे से मीत कर मानै, सो कर सेव जित उदरै मीत। गुण गोविंद रविया दिन राती, साध संग कर मन की प्रीत रहाओ। जन

हर चरण कमल सरनाए मना, राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावै साई तना, रहाओ उन्ने काजन होवत पूरे, काम क्रोध मसद ही चूरे, करै बेकार जिया रे कह ताई, गाफल संगनत सुवा जाई, तरत तोह अनक शर जान, कौडी कौडी कौ खाक सिर शान, जिन दिया तसेरा चेतै मूल, मिथ्या लोभना उतरै सूल, पार ब्रह्म जप हे दयाल, इह मन होवा सादरवाल, हस्त कमल लड़ लीनो लाए, नानक साचै साज समाए, राम कली महला पंजवा, राजा राम की सरनाए, निरपो पय गोविंद गुण गावत, साध संग दुख जाए रहाओ, जां कै राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही, सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने, जिसके मस्तक हाथ गुर धरै, सो दासां देसा काहे करै, जन मरण की चूकी कान, पूरे गुरु उपर कुर्बान, गुर परमेसर भेट निहाल, सो दर्शन पाए जिस होए दयाल, पार ब्रह्म जिस कृपा करै, साध संग सो पवजल तरै, अमृत पीवाओ साध प्यारे, मुखी उजर साचै दरबारे, अंध करो तज सगल बेकार, नानक हर जप उतरो पार, राम कली महला पंजवा, ईंदन ते बै संतर भागै, माटी कौ जल दै दिस त्यागै, ऊपर चरण तलै आकाश, कटमै सिंध की ओ प्रगास, ऐसा समर्थ हर जियो आप, निमखना बिसरै जी, भगतन कै आठ

मनसा मार मन सह समाणा बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी चेता दिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत मिलाई, हाँ गुरसा लाही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई। नानक एक है बेनंती नाम गत पत पाई, राम कली महला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु न जाई। संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ, हर बिन सब किश मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई। हर साचे पावे सा पूजा होवै पाणा मन वसाई, पूजा करे सब लोग संतो मन मुक्ताए ना पाई। शब्द मरै मन निर्मल संतो एह

पवित्र पावन सहजन सचे एक शब्द लेवे लाई, बिन नामे होर पूजना होवी भरम भुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणे संताओ राम नाम लेवे लाई, आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करे पर विद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई। गुरमुख होवे सो पूजा जाने, पाणा मन वसाई। पहाने ते सब सुख पावे संतो, अंते नाम सखाई। अपना आपना पछाणे संतो, कूड़ करे वड़ियाई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, लै जासी पत गवाई। जिन अंतर शब्द आप पछाणे, गत मित तिन ही पाई। एहो मनुआ सुन समाध लगावै, ज्योति ज्योत मिलाई। सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे, सतसंगत में लाई। गुरमुख गावै आप गवावै, दर साचै सोभा पाई। साची बाणी सच वखाणे, सच नाम लिवलाई। पै पंजन अत पाप निखंजन, मेरा प्रभ अंत सिखाई। सब किछ आपे आप वरतै, नानक नाम वड्याई। राम कली महला तीजा, हम कुचल कुचील अत अभिमानी। मिल शब्दे मैल उतारी, संतो गुरमुख नाम निस्तारी। सच्चा नाम वस्या कट अंतर, करतै आप सवारी रहाओ। पारस परसे फिर पारस होए, हर जीव अपनी कृपा तारी। एक भेख करै फिर अभिमानी, तिन जुए बाजी हारी। एक आंदन भगत करै दिन राती, राम नाम उर तारी। आंदन राते सहजे माते, सहजे हों मैं मारी। पै बिन भगत ना होई कभी, पै पाए भगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया, ज्ञान तत् बिचारी। आपे आप कराए करता, आपे बख्श भंडारी। तिस क्या गुणा का अंत ना पाया, हों गावा शब्द विचारी। हर जियो जपी हर जियो सालाही, विचों आप निवारी। नाम पदार्थ गुरते पाया, खुट सच्चे भंडारी। अपनिया भगतां नू आपे तुठा, अपनी कृपा कर कल तारी। तिन साचे नाम की सदा भुख लागी, गावन शब्द विचारी। जियो पिंड सब किश है तिसका, आखण बिखम बिचारी। शब्द लगे से जन निस्तरे, भौजल पार उतारी। बिन हर साचे को पार ना पावै, बूजे को विचारी। जो तुर लिखिया सोई पाया, मिल हर शब्द सवारी। काया कंचन शब्दे राती, साचे नाए प्यारी। काया अमृत रही पर पूरे, पाइय शब्द विचारी। जो प्रभ खोजै से ही पावै, होर फूट मोए हंकारी। बादी बिनसै सेवक सेवै, गुर कै हित प्यारी। सो जोगी तत ज्ञान विचारे, हम मैं तृष्णा मारी। सतगुर दाता तने पछाता, जिसनो कृपा तुम्हारी। सतगुर ना सेवै माया लागे, डूब मुए हंकारी। जिचर अंदर सास, तिचर सेवा कीचै, जाय मिलिए राम मुरारी। अन दिन जागत रह दिन राती, अपने प्रे प्रीत प्यारी। तन मन वारी वार कुमाई, अपने गुरविटों बलिहारी। माया मोह बिन सजाएगा, उबरे शब्द विचारी। आप जगाए सही जागे, गुर कै शब्द विचारी। नानक से ही मुए जे नाम ना चेतै, भगत जीवे विचारी। राम कली महला तीजा, नाम खजाना गुरते पाया। तृप्त रहे आघाई संतो, गुरमुख मुक्त गत पाई। एक नाम वसे

अवर न करना जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए सिर सिर धंधे लाई, तिसै श्री वो ता सुख पावो सतगुर मेल मिलाई। अपना आप यो पाए अलख न लखना जाई, आपे मारजी वाले आपे तिसनो तिल ना तुमाई, एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई, सेवड़ भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कह न जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम भुलाई, वड्डा दाता गुरमुख जाता निगुरी अंध फिरै लोकाई, जिनी चाखिया तिना साध आया सतगुर बूझ बुझाई, एक ना नामो आप पुलाए एक ना गुरमुख दे बुझाई, सदा सदा सा लाहो संतो तिस दी वड्डी वड्याई, तिस बिन अवर ना कोई राजा करत पावस बढ़त बनाई, न्याओ तिसै का है सद साचा विरले हुक्म मनाई, तिसनो प्राणी सदा त्यावो जिन गुरमुख बणत बनाई, सतगुर भेटै सो जन सीजै जिस हिरदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई, नानक सुन वेख रया विस्माद मेरा प्रभ रवया सर्बथाई। रामकली महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किन्ही किया परवृत पसारा किन्ही किया पूजा विस्तारा, किन्ही निवल भयंगम सादे मोहे दीन हर हर यारा दे, तेरा भरोसा प्यारे आना जाना वेसा रहाओ, किन्ही गृह तज वनखंड पाया किन्ही मोन अवधूत सदाया, कोई कहतो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती, किन्ही कहया हौ तीर्थवासी कोई अन्न तज पया उदासी, किन्ही पवन सब धरती करया मोहे दीन हर हर दर परया, किन्ही कहया मैं कुलै वड्याई किन्ही कहया बा बहु पाई, कोई कह मैं तने पसारा मोहे दीन हर हर आधारा, किन्ही कुगर नृत कराई किन्हू वर्तने माला पाई, किन्ही तिलक गोपी चंदन लाया मोहे दीन हर हर हर त्याया, किन्ही सिद्ध बहु चेट कलाए किन्ही पेख बहु थाट बनाए, किन्ही तंत मंत बहु खेवा मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतर कहावै पंडित को खट कर्म सहत स्यो मंडित, कोई करै आचार सुकरणी मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म धर्म जुग सोदे बिन नामै ओ मन ना प्रबोदे, कहो नानक जो साध संग पाया बूझी तृष्णा महा सीत लाया। राम कली महला पंजवा इस पानी ते जंतू करया माटी काले देहरा करया, उगत जोत लै सुरत परीखिया मात गर्भ मैं जंतू राखिया, राखण हार समार जना सगले छोड़ विचार मना रहाओ, जिन दिए तुद बाब महतारी जिन दिए प्रात पुतहारी।

सोधत जीवत संत बिहावै हर रस पीवत जित को लाया तित ही लगाना ना को मूड़ नहीं को स्याना कर कृपा जिस देवै नाओ नानक ता कै बल बल जाओ। राम कली महला पंजवा दावा अग्न रहे हर बूट मात गर्भ संकट ते छूट जाका नाम सिमरत पौ जाए तैसे संत जना राखे हर राए ऐसे रखन हर दयाल जत का देखो तुम प्रतपाल रहाओ। जल पीवत ज्यो तिखा मिटंत तन बिकसै गृह आवत कंत लोभी का तन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यो राखै रखवाला मात पिता दया ज्यो बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यो अंदले

राम कली महला पंजवा जी जंत सब पेखिए प्रभ सगल तुम्हारी तारना एहो मन हर कै नाम उदाहरना रहाओ खिन मैं थाप थापे कुदरत सब करते के कारना काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारना नाम जपत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारना भगत सरण जो आवे प्राणी तिस इहां उहां ना हारना सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना अनक बार कोट जन ऊपर नानक वन्ये वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई हरहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुखलाई पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई करण कारण समर्थ स्वामी नानक ते सरनाई बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई नाम रसायण एहो मन राता अमृत पी तृपताई संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिनयान ना पाई नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई जप तप संजम सुच है सोई आपे करे कराई पुत्र कलत्र महा बिखिया मैं गुरसच लाए तराई अपने जीता आप संभाले आप लिए लड़ लाई साज धर्म का बेड़ा बांधया पवजल पार पवाई बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूर्त अजूनी संपो काले अंधकार दीपाई अंतर जामी जियन का दाता देख तृप त्यागाई एक अंकार निरंजन निरपो सब जल थल रया समाई भगत दान भगता को दीना हर नानक जाचै माई राम कली महला तीजा राम कली महला पंजवा सलोक सिखो शब्द प्यारे ओ जन मरण की टेक मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक मंत्रण दाता राम प्यारे हर प्रेम भगत बने आई संतो सतगुर खेप निबाही संतो हर नाम लहा दास कौ दिया सगली तृष्ण उलाही संतो रहाओ खोजत खोजत लालिक पाया हर कीमत कहन ना जाई संतो चरण कमल स्यों लागो ध्याना साचै दर्श समाई संतो गुण गावत गावत पए निहाला हर सिमरत तृप्त आगाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवै कत जाई संतो आदि जुगादी हैपी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रया सब ठाई संतो मीत साजन माल जो बन सोत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बच कर्म राम नाम चितारी कुमन केर महात बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन पए दुष्टारी जिसते लागे इतने निवारे प्रभ जीव अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरणी पच बिन से महा अहंकारी
ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਫਲ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਣਾ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ ਤੁਮ ਸਮਰਾਥਿਆ ਕਾਥਾ ਗੋਚਰ ਰਵਿਆ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ। ਕੀਮਤ ਕਾਉ

राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वछलते होलोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोए जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमरिया टालिया तोल ठाकर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रपाह जियो सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज रखो हर जना केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चलदिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबाह जियो मेरे सिख सुनो पुत पाई हो मेरा हर पाणा आओ मैं पास जियो हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मेलावे तुसी पुत पाई परवार मेरा मन वेखो कर निर्जाह जियो तुर लिखिया प्रवाणा फिरै नाही गुर जाए हर प्रपाह जियो सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिकसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पैनावे सतगुरु प्रतख होंदै बहराज आप टिकाया सब सिख बंदप पुत पाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंड सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आण निवाया हर गुरह पाणा दी वड्याई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कहे सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो रामकली महला पंजवां शंत एको अंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोए अड़ा मेरा साजनड़ा जानी अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोए अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोया कटकट सोया अत अमृत प्रे गूड़ा नाल होवंदा लहना सकंदा स्वाव न जाने मूड़ा माया मदमाता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा कहो नानक गुरबिन नहीं सूजै हर साजन सब कै निकट खड़ा गोबिंदा मेरे गोबिंदा प्राण आधारा मेरे गोबिंदा कृपाला मेरे कृपाला दान दा तारा मेरे कृपाला दान दा तारा प्रापारा कट कट अंतर सोहनिया एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोहनिया जिसनो राखै सो सच पाखै गुर का शब्द बिचारा कहो

महागर्भ मुठिया जलबाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया। कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानके ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो। सलोक सरदा लागी संग प्रीत मैं एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सह सुभाए। कर गै लीनी सजने जन्म जन्म के मीत चरने दासी कर लई नानक प्रभित चीत। शंत रुत बरस सुहेलिया सावन पादवे आनंद जियो कण उन्म बुठे जल थल पूरिया मकरंद जियो। प्रभ पूर रहया सर्ब ठाई हर नाम नवनित गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे। प्रेरंग जागे ने शिदर लागे किरपाल सद बख्शेंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो। सलोक आस प्यासी मैं फिराऊं कब पेखां गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मिलनहार। बिन मिल बे सांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। शंत रुत सरद अडंबरो असू कतके हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणताह जियो। बिनकंत प्यारे ने सूख सारे हार कंगण त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती सास बिन जैसे तना। ईत ओत दह दिस्या लोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिलो प्रभ गुणताह जियो। सलोक जलन बुझी शीतल पए मन तन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले दुतिया बिनसी प्रांत। साध पठाए आप हार हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर। शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहे जियो जलन बुझी दर्श पाया बिनसे माया त्रोह जियो। सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर सिंगार सब रस गुण गाओ लाखा पेवया। पाओ भगत गोविंद बांशत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बिश हो जियो। सलोक हर तन पाया सोहागणी डोलत नाही चीत संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभ मीत। नाद बिनोद आनंद कोड प्रे प्रीतम संग बने मन बाइथ फल पाया हर नानक नाम पने।

चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोए, चेता एक तही सफोए चित वसै राचे हर नाए, मुक्त पया पत स्यो कर जाए। छीजे देह खुले एक गंड, छे अन देखो जगहंड, तूप शाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने। छाया छूची जगत पुलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना, छीजे जोबन जरुआ सिरकाल, काया छीजे पई सिवाल। जापै आप प्रभु तेह लोए, जुग जुग दाता अवर ना कोए। ज्यो पावै त्यों राखै राख, जस जाचौ देवै पत साख। जागत जागरा हां तुद पावा, जा तू मेले ता तुझे समावा। जय जयकार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीसा कीस। चख बोलन क्या जग स्यो वाद, चूर मरै देखै प्रमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पहे आस निरासा।

ज्ञानो बोलै आपे बुझै आपे समझै आपे सूझै गुर का कहया अंक समावै निर्मल सूचे साचो पहावै गुर सागर रतनी नहीं तोट लाल पदार्थ साचा खोट गुर कहया साकार कमावो गुर की करनी काहे तावो नानक गुरमत साच समावो। टूटै ने हो के बोले सही टूटै बांधू दिस गही टूट प्रीत गई बुरबोल दुरमत पर हर छाडी टोल। टूटै गंठ पड़े विचार गुर सबदी कर कार्ज सार लाहा साच ना आवै तोटा त्रिपवन ठाकर प्रीत मोटा। ठाको मनुआ रखो ठाए ठहक मुई अवगन पछताए ठाकर एक सबाई।

आओ जिन नाम दिया तिस सेवसा तिस बलहार जाओ जो उसारे सो ढासी तिस बिने अवर ना कोए गुर प्रसादी तिस संभला तां तन दुख ना होए हणा को मेरा

फिर फाही फासे कौआ, फिर पछताना अब क्या हुआ। फाथा चो चुगे नहीं बूझे, सतगुर मिले ता आखी सूझे। जो मछली

नानक दरगह पावै मान। साच वखर तन पल्लै होए, आप तरह तारे पी सोए। सहज रत्ता बूझै पत होए, तां की कीमत करै ना कोए। जै देखा तै रया समाए, नानक पार परै सच पाए। सो शब्द का कहां वास कथियले, जित तरियै भवजल संसारो। त्रै सत अंगल वाई कहियै, तिस कहो कवन आधारो। बोलै खेलै असर होवै, क्यों कर लख लखाए। सुन स्वामी सच नानक प्रणवै, अपने मन समझाए। गुरमुख शब्दे सच लिव लागै, कर नदरी मेल मिलाए। आपे दाना आपे बीना, पूरै भाग समाए। सो शब्द कहो निरंतर वासा लखं, जै देखा तै सोई। पवन का वासा सुन निवासा, अगल कला तर सोई। नदर करे शब्द घट मैं वसै, विचों परम गवाए। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, नाम मन वसाए। शब्द गुरु पव सागर तरियै, इत उत एको जाणै। चिन्ह वर्ण नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाणै। त्रै सत अंगल वाई अवधू, सुन सच आहारो। गुरमुख बोलै तत् बिरोलै, चीनै लख अपारो। त्रै गुण मेटै शब्द वसाए, ता मन चूकै अहंकारो। अंतर बाहर एको जाणै, ता हर नाम लगै प्यारो। सुख मना एड़ा पिंगला बूझै, जा आपे लख लखाए। नानक तहु ते उपर साचा, सतगुर शब्द समाए। मन का जियो पवन कथिया ले, पवन कहां रस खाई। ज्ञान की मुद्रा कमन अवधू, सिद्ध की कमन कमाई। बिन शब्द रस ना आवै अवधू, हो मैं प्यास ना जाई। शब्द रते अमृत रस पाया, साचे रहे अगाई। कवन बुद्ध जित आसर रही है, कित भोजन तृप्ता सै। नानक दुख सुख सम कर जापै, सतगुर ते काल न ग्रासै। रंग ना राता रस नहीं माता, बिन गुर शब्द जल बलताता। बिंद ना राखिया शब्द ना पाखिया, पवन ना साध्या सच ना आराध्या। अकथ कथा ले सम कर रह, तौ नानक आत्म राम कौल है। गुर प्रसादी रंगे राता, अमृत पिया साचे माता। गुर विचारी अगन निवारी, अपियो पियो आत्म सुखतारी। सच आराध्या गुरमुख तर तारी, नानक बूझै को विचारी। एहो मन मैंगल कहां बसिया ले, कहां बसै एहो पवना। कहां बसै सो शब्द अवधू, ता को चूकै मन का पवना। नदर करे ता सतगुर मेले, तानी कर वासा एहो मन पाए। आपै आप खाए ता निर्मल होवै, तावत वर्ज रहाए। क्यों मूल पछाणै आत्म जाणै, क्यों संस्कार सूर समावै। गुरमुख हो मैं विचों खोवै, तव नानक सहि समावै। एहो मन निहचल हिरदै वसियले, गुरमुख मूल पछाण रहै। नाभ पवन कर आसन बैसै, गुरमुख खोज तत् लहै। सो शब्द निरंतर निज कर आछै, त्रिपवन ज्योत सो शब्द लहै। खावै दुख भूख साचे की, साचे ही तृप्तास रहै। अनहद बाणी गुरमुख जानी, विरलो को अर्थावै। नानक आखै सच सुपाखै, सच रपै रंग कबहू ना जावै। जा एहो हिरदा देह ना होती, तौ मन कै ठहरैता। नाभ कमल अस्थंभ ना हो तो, ता पवन कवन कर सहिता। रूप ना हो तो रेख ना काई, ता शब्द कहां लिवलाई। रकत बिंद की मड़ी ना होती, मित कीमत नहीं पाई। वर्ण भेख असरूप ना जापी, क्यों कर जाप साचा। नानक नाम रते बैरागी, इब तब साचो साचा। हिरदा देह ना होती अवधू, तव मन सुन रह बैरागी। नाभ कमल अस्थंभ ना हो तो,
ਤਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਬਸਤਾਉ ਪਵਨ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਜਾਤ ਨਾ ਹੋਤੀ ਤਉ ਅਕਲੀਨ ਰਹਿਤਉ ਸ਼ਬਦ ਸੋਸਾਰ ਗੌਨ ਗਗਨ ਜਬ ਤਬੈ ਨਾ ਹੋਤਉ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜੋਤ ਆਪੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਰਨ ਭੇਖ ਅਸਰੂਪ ਸੋ ਏਕੋ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਡਾਣੀ ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਸੂਚਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਕਿਤ ਕਿਤ ਬਿਦ ਜਗ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ ਕਿਤ ਕਿਤ ਦੁਖ ਬਿਨ ਸਜਾਈ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜਗ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਦੁਖ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਗਿਆਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਰਹੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰਤਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੋਗ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੈ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਪੀਜੈ ਵਿਰਲਾ ਬੂਜੈ ਕੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾਂ ਗਰਭ ਗੁਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਗੁਰਮੁਆ ਜਨਮ ਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਜੀਤਾ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰਤਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਜਮਕਾਲ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰ ਗੈ ਨਾ ਆਵੈ ਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ ਸ਼ਬਦੈ ਕਾ

अभ्यागत है ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उदर कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रैन आयर मह सब किश है, करमी पल्ले पाए, नानक नौ निद पाई है, जे चले तसैर जाए। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवियो, विच होमै जन्म बिनास, रसना हरस ना चखियो, कमला होयो परगास। बिख खादी मन मुख मुआ, माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम विण, त्रिग जीवन त्रिगवास। जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा, ता होवै दासन दास। ता अंदन सेवा करे सतगुरु की, कबै न छोड़ै पास। ज्यों जल मैं कमल अलिप तो वरतै, त्यों विचे ग्रह उदास। जन नानक करे कराया सबको, ज्यों पावै ते हर गुणतास। पौड़ी छत्ती जोग बारसा, आपे गणत कीनी, आपे सिरट सब साजिया नो, आप मत दीनी। सिमरत सास्त साजिया नो, पाप उन गणत गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी, सच्चे शब्द पतीनी। सब आपे आप वरतदा, आपे बख्स मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला।

थम अहन से अंतर रहते आन ते बैरागी सत समान बोले परथर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप महला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ धूप छाप जे सम

निरंकार जो रह समाए, काहे पीखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया, जिथों हर जाता मानस देह गुरबचनी पाया। सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता। मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी, तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना। मूर्ख के क्या लखन है क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओहो जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एतक माने सदा दुख दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवे खूहे क्यों संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदर ओस पिछे डुबदे पी तरना। नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक या खैरे मना, सुनिए सिख सही। लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। तलबा पौसने किया बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई, आवन जान न सुजई। पीड़ी गली फही कूड़ ने खुटे नानका, ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रवर या सब आप। हर की कीमत ना पवे किश कह ना जापे। गुर प्रसादी साला ही है हर भक्ति रापे। सब मंतन हरिया होया अहंकार गवापे। सब किश हर का खेल है, गुरमुख किसे बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला, सहंसर दान दे इंद्र रोवाया। परस राम रोवै करे आया, अजय सो रोवै पीखिया खाए। ऐसी दरगह मिले सजाए, रोवै राम निकाला पया। सीता लखमण विछड़ गया, रोवै दैसर लंक गवाए। जिन सीता आंदी डौरू वाए, रोवै पांडव पए मजूर। जिनके स्वामी रहत हदूर, रोवै जन्मे जा खोए गया। एकी कारण पापी पया, रोवै शेख मसा एक पीर। अंतकाल मत लागे पीड़, रोवै राजे कन पड़ाए। कर कर मांगे पीखिया जाए, रोवै किरपन संचय तन जाए। पंडित रोवै ज्ञान गवाए, बाली रोवै नाहे पतार। नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाओ सोई जन जाए। औरी कर्म ना लेखै लाए, महला दूजा। जप तप सब किश मन्ने ऐ, अवरकारा सब बाद। नानक मन्या मन्नी बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल, करतै लिख पाया। सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावै गुण उच्चरै, गुण महे समाया। सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया। सब किश आपे आप है, आपे दे वडियाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला दूजा, नानक अंधा होए कै रतना परखण जाए। रतना सार ना जानी आवै आप लखाए। महला दूजा, रतना केरी गुथली रतनी खोली आए। वखर तैवन जा रहा दुहां रही समाए। जिन गुण पल्लै नानका, माणक वन जैसे। रतना सार न जानी अंधे वत्तै लोए। पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है, दसवै गुप्त रखी जय। बजरक पाट न खुलनी गुर शब्द खुली जय। अनहद वाजे धुन वज दे,
ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਜੈ, ਤਿਤ ਘਟ ਅੰਤਰ ਚਾਨਣਾ, ਕਰ ਭਗਤ ਮਲੀਜੈ, ਸਭ ਮੈਂ

रामकली की वार महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवा जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कट्टे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवा एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपुरै देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साध जन नानक है प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत परै प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हाँ तिस सेवी हाँ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन।

कोई ऐसा सज्जन लोड़ लाहो जो मिले प्रीतम मोहे, गुरपुरे में लाया जत देखा तत सोए, जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जे वड्यावर ना कोए पौड़ी। देवन हार दा तार कित मुख सालाही है, जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है, कोय न किस ही वस सबना एक तार, पाले बालक वांग देके आप कर, करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है, सर्वतार समरथ हौ तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगया, जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगया। सलोक महला पंजवा, भीड़ो मोकलाई कीतियान, सब रखे कुटुंबै नाल, कार्ज आप सवारियान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा, लहुड़े बालक पाल, दयाल होए सब जी जंतर, हर नानक नजर निहाल। महला पंजवा, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा कै दुख, देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। गुरवण तिण हरिया कीतिया, नानक क्या मनुख पौड़ी। सो ऐसा दातार मनो ना विसरै, कड़ी ना मोहत चसा तिस बिन ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै, जिस पत रखै आप सो पवजल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै, सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै, तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्रै। सलोक महला पंजवा, तन सो राग सुरंगड़े आलापत सब तिख जाए, तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाम। जिन्नी एक मन एक आराध्या, तिन सद बलिहारै जाओ, तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए। जो रत्ते रंग गोविंद कै, हौ सद बलि

जन नानक पाया अगम रूप अंत ना काहूं जाए महला पंजवा तन सो वेला घड़ी तन तन मूरत पल सार तन सो दिन सो संजोगड़ा जित डिठा गुरदरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगमा पार हमें टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेवार उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितिया न सौपे जिस भंडार फिर पुछना लीतिया न जिसनों लगा रंग सो रंग रत्या ओना एको नाम आधार एका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे पो गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलिया गुरे आए तिन प्रभ जानिया हम बलिहारी तेनू जे खसमै पाणिया सलोक महला पंजवा हर एक सह नाल मैं दोस्ती हर एक सह नाल मैं रंग हर एको मेरा सज्जनो हर एक सह नाल मैं संग हर एक सह नाल मैं गोष्टे मुह मैला करे ना भंग जाने बिरथा जी की कदे ना मुड़े रंग हर एको मेरा मसलती पन्नन कण समरथ हर एको मेरा दातार है सिर दातिया जग हथ हर एक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मिलाया मस्तक तर कै हथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया जनतारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सदी भोगे भोग महला पंजवां।

व्यापया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी विच दो कड़ै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगै आए खलोहा। सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा। नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की। जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है। सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई। जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई। जिसकै स्वामी वल निरपव सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थई। जिसनो तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुरते मत लई। श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा जप।

माधाना पर्वतकार नेत्र बासर माधाना पर्वतकार नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रतन निकालियोन कर आवा गौन चिलक्योन कुदरत है वे खालियान जिन एवड पिंड ठिणक्योन लहणे धर ओन छत्र सिर असमान के आड़ा शिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहे आप पैसे ती मिक्योन सिखा पुत्रा कोख कै सब उम्मत वेखो जेक्योन जांस दोस्ता लहणा टिक्योन फेर वसाया फेर आण सतगुर खाडूर जप तप संजम नाल तुद होर मुच गुरूर लब विना है मानसा ज्यो पानी बूर वरे अदर गै गुरु की कुदरती नूर जित सुहाथ ना लबई तू ओ ठरूर नौ निद नाम निधान है तुद विच भरपूर निंदा तेरी जो करे सो मन्ये चूर नेड़ै दिसै मात लोक तो सुजै दूर फेर वसाया फेर आन सतगुर खाडूर सो टिका सो बहना सोई दीवान पिउ दादे जिवेहा पोता प्रमाण जिन बासक नेत्रै कतिया कर नेही तान जिन समुंद विरोलिया कर मेर मदान

पलाण। धन खचड़ायो सत दा जस हंदा बाण, कल विच तू अंधार सा चढ़िया रह पाण। सतो खेत जमायो सतो शावान, नित्र सोई तेरी है क्यों मैदा खाण। चारे कुंडा सुजियो मन मैं शब्द प्रवाण, आवा गौण निवारियो कर नदर निशान। अवतरिया अवतार लै सो पुरख सुजान, चखड़ वाव न डोलई पर्वत मेराण। जाने बिरथा जी की जानी हूं जान, क्या साला ही सच्चे पातशाह जा तू सूड़ सुजान। दान जे सदगुर भाव सी सो सत्ते दान, नानक हंदा शत्र सिर उम्मत हैरान। सो टिका सो बहना सोई दीबाण, पिऊ दादे जेवेहा पोतरा प्रमाण। धन धन रामदास गुर जिन सिर आत ने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिर जनहार तारिया। सिखी अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया, अटालिया था हो अतोल तू तेरा अंत न पारा वारिया। जिन्नी तू सेव्या पाओ कर से तुद पार उतारिया, लब लोभ काम क्रोध मोह मार कड्डे तुद सा परवारिया। तन सो तेरा थान।

चांद ना होता, सूर्य ना होता, पानी पवन में लाया, शास्त्र ना होता, वेद ना होता, कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत है, सतगुरु होए लिखाया। राम कली कर दूजा, बनारसी तप करे, उल्ट तीर्थ मरे, अगन दह काया कल्प की जय। असमेद जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तउ न पूजय, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट न की जय, हर का नाम नित नित ली जय। रहाओ गंगा जाओ गोदावर जाइय, कुंभ जाओ केदार नाइय, गोमती सहस गऊ दान की जय। कोट जाओ तीर्थ करे, तन जाओ हिवाले गारे, राम नाम सर तउ न पूजय। अस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ।

निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै, जथ रथ राय नंद, राजा मेरा रामचंद, प्रणव नामा तत रस अमृत पीजै, राम कली बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्श, लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जौ पारस नाम परस, देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कबे ना नासी, कहो रविदास समय सबे नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगला और सुख मना, तीन बसाए कठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई, संतो तहा निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए, तहा निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थान क्या निशानी, तह बाजे सबदया नाहद बाणी, तह चांदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजै ज्ञान दुरमत शीजै, अमृत रस गगन अंतर पीजै, एस कला जो जाने पे ओ, पेटे तास परम गुरदेओ, दसम द्वारा अगमया पारा, परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर थाती, जागत रह सो कवो ना सोवे, तीन तलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र लै हृदय रह, मनुआ उल्ट सुन महंगा है, जागत रह न अलिया पख, पांचो इंद्री बस कर रख, गुर की साखी राख चीत, मन तन अर्प कृष्ण प्रीत, कर पल्लव साखा बिचारे, अपना जन्म न जुए हारे, असर नदी का बंदे मूल, पच्छम फेर चढ़ावे सूर, अजर जरै सो निजर चरै, जगन्नाथ्यो गोष्ठ करै, चौ मुख दीवा जो द्वार, पलुवंत मूल बिचकार, सर्व कलाले आपे रहै, मन मान करत नामे गुहै, मस्तक पद्म द्वाले मणि, माहे निरंजन त्रिपवन धनी, पंचे शब्द निर्मायल बाजे, टुलके चवर संख कान गाजे, दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाचे तेरा नाम, राग नट नारायण।

तेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ। जन्म जन्म के भूल चूक हम अब आए प्रभ शरण अगे, तुम शरणागत प्रतिपालक स्वामी हम राखो वड पाप अगे। तुमरी संगत हर को ना उधरियो, प्रभ किए पतत पवगे, गुण गावत शिपा दुष्टारियो, प्रभ राखी पैज जनगे, जो तुमरे गुण गावे स्वामी हाँ बल बल बल तिनगे। पवन पवन पवित्र सब किए, जह तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रभ कह ना सके हम, तुम वड वड पुरख वडगे। जन नानक कहो दया प्रभ धारो, हम सेवै तुम जन पगे। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम मने, जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ। हर जन हर जस हर हर गायो, उपदेश गुरु गुर सुने, किलबिख नाम किलबिख पाप नाम हर काटे, जब खेत किरसान लुने। तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो, हम कह ना सके हर गुने, जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने। माया फास बंद बहु बंदे, हर जप्यो खुल खुलने, ज्यो जल कुंचर तंदुए बंदो, हर चेत्यो मोख मुखने, स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुगने। तुमरी था पाई नहीं पावे, जन नानके प्रभ वडने। नट महला चौथा, मेरे मानो कल कीर्त हर प्रवणे, हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाओ। हर तुम वड अगम गोचर स्वामी, सब त्यावै हर रुणने, जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने। एहो पर पंच किया प्रभ स्वामी, सब जग जीवन जुगने, ज्यो सलल सरल उठे बो लहरी, मिल सरल सरल समणे, जो प्रभ किया सो तुम ही जाना, हम न जाही हर गहने, हम बारक कौर दुस्त धारो, हम करे प्रभु सिमरणे। तुम जल निधार मान सरोवर, जो सेवै सब फलने, जन नानक हर हर हर हर बांछ है, हर देवो कर कृपणे। नट नारायण महला चौथा, पड़ताल एको अंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन सेव सफल हर काल, ले गुर पगरे नरवाल, सब दाल दपाई दुख दाल, हर हो नदर निहाल रहाओ। हर का गृहो रप सवार्यो, हर रंग रंग महल बेअंत, लाल लाल हर लाल, हरे अपनी कृपा करी आप गृह आयो, हम हर की गुर की है बसीठी, हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल, हरे आवते की खबर गुर पाई, मन तन आनंदो आनंद पहे, हरे आवते सुने मेरे लाल हर लाल, जन नानक हर हर मिले पहे गलतान हाल निहाल निहाल। नट महला चौथा, मन मिल संत संगत सुभवंती, सुनया कथ कथा सुखवंती, सब किलबिख पाप लहंती, हर हो लिखत लिखंती रहाओ। हर कीर्त कलयुग विच यूतम, मत गुरमत कथा भजंती, जिन जन सुनी मनी है जिन जन, तिस जन कै हाँ कुरबानंती, हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया, तिस जन सा पूख लहंती, नानक जन हर कथा सुन त्रिपते, जप हर हर हर होवंती। नट महला चौथा, कोई यान सुनावै हर की हर गाल, तिसको हाँ बल बल बाल, सो हर जन है पल पाल, हर हो मेल निहाल रहाओ। हर का मार्ग गुरसंत बतायो, गुर चाल दिखाई हर चाल, अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो, निह कपट कमावो हर की हर काल, निहाल निहाल निहाल,
ਤੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣਿਓ ਮੇਰਾ ਨਾਲ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਮਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਨੀ, ਹਰ ਦੇਖ ਨਿਕਟ ਹੈ ਦੂਰ, ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਗ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਮ ਹਉ ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਆ ਭਾਵੈ, ਮਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਦਰਸਾਵੈ, ਰਹਾਉ ਸੋਈ ਗਿਆਨੀ ਸੋਈ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਰੁਚ ਆਵੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਧਿਆਵੈ, ਕਵਨ ਯੋਗ ਕਵਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨਾ, ਕਵਨ ਗੁਨੀ ਰੀਜਾਵੈ, ਸੋਈ ਜਨ ਸੋਈ ਨਿਜ ਭਗਤਾ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਰੰਗ ਲਾਵੈ, ਸਾਈ ਮਤ ਸਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿਆਣਪ, ਜਿਤ ਨਿਮਖ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਾਵੈ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਲਗੇ ਹੋ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਗਾਵੈ, ਦੇਖਿਓ ਅਚਰਜ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸ਼ਟਾਵੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰ ਲਾਹਿਓ, ਤੈ ਗਰਭ ਜੋਨ ਕਹਿ ਆਵੈ, ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ।

नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जनो हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरया हृदय अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस वर्ण नहीं सको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा कर।

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद, अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाद बोध आदेश हर प्रबराया रहाओ, काम क्रोध लो मोह निर्चगर ते चगराया, हम राख राख दीन तेरे हर सन हर प्रभ आया, शरणागति प्रद प्रभ पालते हर भगत वच्छल नाया, प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर लाख लियो तराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया, पौ जन मर निवार ठाकर हर गुरमति प्रभ पाया, हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया, हर हार हर उतारियो जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता, सतसंगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पिछाता रहाओ, वडभागी गुर दर्शन पाया गुर मिले हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिनी हर प्रभ पाया तिन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया हर मेलो कर्म विधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मंत्र राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन।

थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहवा पार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा इही हमारे सफल काज अपने दास को लेहो निवाज रहाओ चरण संतै माथ मोर नैन दर्श पेखो निस्पोर हस्त हमरे संत टहल प्राण मन तन संत बहल संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसै मेरे चीत संत आग्या मन है मीठ मेरा कमल बिकसै संत डीठ संत संग मेरा होए निवास संतन की मोहे बहुत प्यास संत बचन मेरे मन है मंत संत प्रसाद मेरे बिखै हंत मुकत जुगत एहा निधान प्रभ दयाल मोहे देवो दान नानक कहो प्रभ दया तार चरण संतन के मेरे हृदय मजार माली गौड़ा महला पंजवा सबके संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाओ सुनत जियो जास नाम दुख बिन से सोकियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जा कै घर सगले समाहे जिसते बिरथा कोई नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा से ओ कृपाल सदा धर्म जा कै दीबाण बेमोहताज नहीं किशकाण सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू ता को जाप साध संगत को हौ बलिहार जास मिल होवे उधार नाम संग मन तन है रात नानक कहो प्रभ करी दात माली गौड़ा महला पंजवां दो पदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद हर समर्थ की सरना जियो पिंड तन रास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाईए जीवने का मूल रव रहया सरबत ठाई सुख मोह स्थूल आल जाल बेकार तज सब हर गुणा नित गाओ कर जोड़ नानक दान मांगे देहो अपना नाओ माली गौड़ा महला पंजवा प्रभ समरथ देव या पार कौन जाने चलत तेरे किशंत नाही पार रहाओ एक खिन है था प्यो थापदा कड़ पन करने हार जेत की न्यो पार जना प्रभ दान दे दातार हर सरन आयो दास तेरा प्रभ ऊंच अग मुरार कड़ ले हो पौजल बिखमते जन

पक्ष से बाल बस निर्मल जल अमृत नालक सरे रहाओ। बस जल नित ना वस्त जल यल मेर चाचा गुन रे चंद कमुंदनी दूरो निवसस अनपव कारण रे। अमृत खंड दूध मद संचस तूब ना चात्र रे अपना आप तू कबो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यो रे। पंडित संग वसै जन मूर्ख आगम साह सुने अपना आप तू कबो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यो रे। एक पाखंडी नाम ना राचै एक हर हर चरनी रे पूर्व लिखिया पावस नानक रसना नाम जप रे। मारू महला पहला सलोक पतत पुनीता संख हो हे हर चरणी मलला अड़सठ तीर्थ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक पाग शबद। सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सुहेली जो मैं बेदनों सा

गया सो जो बनो धन पछताणी, तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, भणत नानक आंदे।

तौ दीवाना जानिया जा एकाकार कमाए हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तौ दीवाना जानिया जा साहिब तरे प्यार मंदा जाने आप कहो अवर भला संसार। मारू महला पहला एहो तन सरबरया भरपूर मनुख फिर से जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारा जिस तू दे।

आए। इस तन की देखो वड्याई, सहजे माते अन दिन जाई। एक बात अनूप सुनो नर पाई, इस तन बिन कहो किने परम गत पाई। भणत नानक वा कथ की कथा सुनाए, सतगुर मिले ताए हो तन पाए। मारू महला पहला, सूर सर सोस लै, सोम सर पोख लै। जुगत कर मरत सो संबंध की जय, मीन की चपल स्यो जुगत मन राखी है। उड़ै न हंस न कंध छीजै, मूड़े काए चे परम पुला। नहीं चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ। अजर गहो जार लै, अमर गहो मार लै। परात तद छोड़ तौ प्यो पीजै, मीन की चपल स्यो जुगत मन राखी है। उड़ै न हंस न कंध छीजै, भणत नानक जनो रवै जे हर मनो। मन पवन स्यो अमृत पीजै, मीन की चपल स्यो जुगत मन राखी है। उड़ै न हंस न कंध छीजै, मारू महला पहला। माया मुई ना मन मुआ, सर लहरी मैं मत। बोइथ जल सिर तर टिकै, साचा वखर जित। माणक मन मैं मन मारसी, सच न लागै कत। राजा तख्त टिकै गुणी, पै पंचायन रत। बाबा साचा साहिब दूर ना देख, सर्ब जोत जग जीवना सिर सिर साचा लेख। रहाओ ब्रह्मा विष्णु ऋषि मुनि शंकर, इंद तपै पेखारी। मन हुक्म सोहै दर साचै, आकी मरया फारी। जंगम जोत जति सन्यासी, गुरपुरै विचारी। बिन सेवा फल कवो ना पावस, सेवा करनी सारी। ने तनिया तन, ने गुरिया गुर, ने माणिया तू माण। अंदलै माणक गुर पकड़िया, निताणिया तू ताण। होम जपा नहीं जानिया, गुरमती साच पछाण। ना बिना नाही दर टोई, झूठा आवण जाण। साचा नाम सलाही है, साचे ते तृप्त होए। ज्ञान रतन मन मांझी है, बौण मैला होए। जब लग साहिब मन वसै, तब लग बिगना होए। नानक सिर दे छुट्टी है, मन तन साचा सोए। मारू महला पहला। जोगी जुगत नाम निर्मायल, ताके मैल ना राती। प्रीतम नाथ सदा सच संगे, जन्म मरण गत बीती। गुसाई तेरा कहा नाम कैसे जाती, जातो पीतर महल बुलावै। पूछो बात निरंती रहाओ। ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान इशनानी, हर गुण पूजे पाती। एको नाम एक नारायण, त्रिपवन एका ज्योति। जिहवा डंडी एहो कट शाबा, तोलो नाम या जाची। एको हाट साहो सबना सिर, वन जारे एक पाती। दोवै सिरे सदगुरु निबेड़े, सो बूजै जिस एक लिव लागी। जियो रह निपराती, शब्द वसाए परम चुकाए। सदा सेवक दिन राती। ऊपर गगन गगन पर गोरख, तां का अगम गुरु पुनवासी। गुरबचनी बाहर करे को, नानक पया उदासी। राग मारू महला पहला। कर पंजवा एको अंकार, सतगुर प्रसाद। अहन सजागै नींद ना सोवै, सो जाणै जिस वेदन होवै। प्रेम के कान लगे तन पीतर, वैद के जाने कारी जियो। जिसनो साचा सिफती लाए, गुरमुख विरले किसे बुझाए। अमृत की सार सोई जाने, जे अमृत का वापारी जियो। रहाओ पिर सेती तन प्रेम रचाए, गुर कै शब्द तथा चित लाए। सहज सेती तन खरी सुखेली, तृष्णा तिखा निवारी जियो। सहसा तोड़े परम चुकाए, सहजे सिफती तनख चढ़ाए।
ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰੈ ਮਨ ਮਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਜੋਗਾ ਤਾਰੀ ਜੀਓ। ਹਉ ਮੈਂ ਜਲਿਆ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਜੰਪੁਰ ਵਜੈ ਖੜਗ ਕਰਾਰੇ ਅਬ

अड़े जप हर हर नाम छड़ावै जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचै हर देहो पसाओ हर सत सत सदा हर सत मेरे मन भावै जियो नवे छिद्र स्रवै अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवै मेरा स्वामी हर सिमरत मन लै जावै जियो माया मोह बिखम है भारी क्यों तरियै दुत्तर संसारी सतगुर बोहित दे प्रभ साचा जप हर हर पार लंघावै जियो तू सरबत्र तेरा सब कोई जो तू करै सोई प्रभ होई जन नानक गुण गावै बेचारा हर पावै हर थाए पावै जियो मारू महला चौथा हर हर नाम जपो मन मेरे सब किल विख काटै हर तेरे हर तन राखो हर तन संचो हर चलद्या नाल सिखाई जियो जिसनों कृपा करे सो त्यावै नित हर जप जापै जप हर सुख पावै गुर प्रसादी हर रस आवै जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ निरपौ निरंकार सतनाम जग में सृष्टि उत्तम काम दुश्मन दूत जमकाल ठेहे मारो हर सेवक नेड़ न जाई जियो जिस उपर हर का मन मानिया सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया

अपने चलता जिस हर राखै तिस कौन मारै जिस करता आप छिड़ाई जियो हवन दे नाम लई करतारे जिन सेवक भगत सबे निस्तारे दस अठ चार वेद सब पूछो जन नानक नाम छिड़ाई जियो मारू महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद डर पै तरत आकाश नखियत्रा सिर उपर अमर करारा पौन पानी बैसंतर डर पै इंद्र बिचारा एका निरपौ बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गिरमिल गाए गुनी रहाओ देह तारे अर देवा डर पै से साधक डर मोया लख चौरासी मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डर पै के ते रूपयो पाया शल बप्रिय कौला डर पै अत डर पै धर्म राया सगर समग्री डर ब्यापी बिन डर करण हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोहै दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रु बारक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बेदारे मेरे ठाकर केते अगंत उधारे मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरन द्वारे रहाओ बालमीक सुपचारो तरयो बद्धक तरे बिचारे एक निमख मन माहे अराध्यो गतपत पार उतारे कीनी रखिया भगत प्रहलाद हर नाक्ष नखै बिदारे बिदर दासी सुत भयो पुनीता सगले को लियो जारे कवन पराध बतावो अपने मिथ्या मोह मगनारे आयो साम नानक ओट हर की लीजै पुजा पसारे मारू महला पंजवा वेतन वेत प्रमयो बहु भांति अनक जतन कर ताए जो जो कर्म किए हो मैं ते पै आ जाए अवर दिन काहू काज न लाए सो दिन मोको दीजै प्रभ जियो जा दिन हर जस गाए रहाओ पुत्र कलत्र गृह देख पसारा इसी मैं उर जाए माया मद चाख पय उदमाते हर हर कबो न गाए एह बिद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए तुम दा तार वड्डे प्रभ समरथ मांगन कौ दान आए त्याग्यो सगला मान महत्ता दास रेण शरण आए कहो नानक।

पूर्ण त्रिप्त्याग आए सहज समाध सुभाए हर भंडार हाथ आया नानक गुरते पाया। मारू महला पंजवां कर छेवां दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाण पा मिलसा त्यागुमान अवर सब किश मिथिया रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिट है अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापै मिले सुख विश्राम गुरप्रसाद नानक बखाना हर भजन तत् ज्ञान। मारू महला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खेह पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते ए नेह मेरे मन नाम नित नित लेह जलत नाही अग्न सागर सूख मंतन देह रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत में है हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरा काम आवत एह। मारू महला पंजवा पुरख पूर्ण सुखै दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिनसै व्यापत उसन ना सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना एह निर्मल दीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै ते सीद नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक ते संग बीद। मारू महला पंजवा चलत बैस्त सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन पज संग साधु भव सागर उतरै पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबो ना हार। मारू महला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेण साधु थियो तिसै प्राप्त नाम तेरा कर कृपा जिस दियो मेरे मन नाम अमृत पियो आन साध विसार होछे अमर जुग जुग जियो रहाओ नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंधप हर एक नानक कियो। मारू महला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखै लगन देत ना सेक सोई स्वामी इहां राखै बूद बूझ बुद्ध बबेक मेरे मन नाम की कर टेक तिसै बूझ जिंतू किया प्रभ करण कर नेक रहाओ चेत मन में तज सियाणप छोड़ सगले भेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक। मारू महला पंजवा पतत पावन

साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवा कर सतवा एको अंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरो ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया जिथै अगन पखे पड़हारे ऊर्द मुख मह गोबारे सास सास माले सोई उथै खसम छडाए लया विचों गरबै निकल आया खसम सार दुनी चितलाया आवै जाए पवाई है जोनी रहना किथी थाए पया मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे जन्म पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया मारू महला पंजवा वैदो ना वाई भैनो ना पाई एको सहाई राम हे कीता जिसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान हे घट घटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जाका थान हे आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जाका काम हे भगत जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस कुर्बान हे एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा हर को नाम सदा सुखदाई जा कौ सिमर अजा मल उदरियो गन काहू गत पाई रहाओ पंचाली कौ राज सभा में राम नाम सुदयाई ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई जेह नर जस कृपा निध गायो।

सगल जन्म बिख्यान स्यों खोया, सिमरियो नाहे कनाई रहाओ। काल फास जब घर मैं मेली, तेह सुध सब बिसराई। राम नाम बिन या संकट मैं, को अब होत सहाई। जो संपत्ति अपनी करमानी, छन मैं पई पराई। कहो नानक यह सोच रही मन, हर जस कबहू ना गाई। मारू महला नावा माई, मैं मन को मान ना त्याग्यो। माया के मद जन्म सिरायो, राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ। जम को डंड पर्यो सिर ऊपर, तब शुभ तै जाग्यो। कहां हो तो अब कै पछताए, छूटत नाहन भाग्यो। एह चिंता उपजी घट मैं, जब गुर चरणन अनुराग्यो। सफल जन्म नानक तब हुआ, जाओ प्रभ जस।

ना जाना सियाना सदा साहेब कह रंगे राता अंधन नाम वखाना। बाबा मूर्ख हां नावें बल जाओ तू करता तू दाना बीना तेरा नाम तराओ रहाओ।

मारू महला पंजवां कर चौथा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद चांदना चांदन अंगन प्रभ जियो अंतर चांदना आराधना आराधन निका हर हर नाम आराधना त्यागना त्यागन निका काम क्रोध लोभ त्यागना मांगना मांग निका हर जस गुर ते मांगना जागना जागन निका हर कीर्तन मैं जागना लागना लागन निका गुरचरणी मन लागना एह बिद तिस प्राप्ते जाके मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किश निका जो प्रभ की सरनागना। मारू महला पंजवा आओ जी तू आओ हमारा हर जस सरवन सुनावना रहाओ तुदे आवत मेरा मंतन हरियाओ हर जस तुम संगावना संत कृपा ते हृदय वास दूजा पाओ मिटावना भगत दया।

सोई सोहेला पालिया ग्रह राज में नरको दास करो दा बहुविध वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता तिस जन की पूर्ण कहलिया जागत सूता परम विगुता बिन गुर मुक्त ना होई है मीता साध संग तुटे हो बंधन एको एक निहाली है कर्म करे ता बंदा नह करे ता निंदा मोह मगन मन व्यापिया चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख समझाने घट घट राम हाली है संसार में सहसा व्यापै अकथ कथा गोचर नहीं जापै जिसे बुझाए सोई बूझै ओह बालक वांगी पाली है छोड़ बह तो छूटै नाही जो सिंचै तो पौ मन माही इस ही मह जिसकी पत राखै तिस साधु चौर ढाली है जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागै तिस जोनी फिरना जो वरताए सोई पल मानै बुझ हुक्मै दुरमत जाली है जित जित लावै तित तित लगना कर कर वेखै अपने जचना नानके पूर्ण सुखदा ते तू देहता नाम समाली है मारू महला पंजवा बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे अस्त्या दोत भया उठ चले ज्यों ज्यों औद विहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजरा ईल फड़े फड़ कुठे दोजग पाए सृजनहार है लेखा मंगै बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन धन छोड़ वंजेसा करण करीम ना जातो करता तिल पीड़े जो कहानियां खुस खुस लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खात अंदर अगली गल ना जानिया जम जम मरे मरे फिर जमे बहुत सजाए पया देस लम्मे जिन कीता तिसै न जानी अंदा ता दुख सहै प्राणिया खालक थावो पुला मुठा दुनिया खेल बुरा रुठ तुठा सिदक सबूरी संतन मिलियो वत्तै अपन पाणिया मौला खेल करे सब आपे एक अड्डे एक लहर वे आपे ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन सिर सिर किरत विहानिया मेहर करे ता खसम ते आई संता संगत नरक ना पाई अमृत नाम दान नानक कहो गुण गीता नित वखाणिया मारू सोल हे महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद साचा सच सोई अवर ना कोई जिन सिर जीत नहीं फुन गोई ज्यो पावै त्यो राखो रहना तुम स्यों क्या मुकराई हे आप यो पाए आप खपाए आपे सिर सिर तंदै लाए आपे विचारी गुणकारी आपे मार्ग लाई है आपे दाना आपे बीना आपे आपो पाए पतीना आपे पौन पानी बेसंतर आपे मेल मिलाई है आपे सस सूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा काल जाल जम जो है ना साकै साचे सुन लिवलाई है आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी आपे पिड़ बांधी जा खेल आपे कीमत पाई है आपे पवर फुल फल तरवर आपे जल थल सागर सरवर आपे मशकश करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है आपे दिन सो आपे ही रहनी आप तीजे गुर की बैनी आद जुगाद अनाहद अंदनो कट कट शब्द रजाई है आपे रतना नूपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो आपे किस ही कस बख्से आपे दे लै पाई है आपे तन खो आपे सरबाणा आपे सुगड़ स्वरूप सियाणा कहता बगता सुनता सोई आपे बंत बनाई है पौन गुरु पाणी पित जाता उधर संजोगी तरती माता रैन दिन सदोए दाई दाया जाखे लैखे लाई है आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला सर्ब जिया जग जोत तुम्हारी जैसी प्रभ फरमाई है
ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਆਪੇ ਭੋਗੀ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਪਰਮ ਸੰਜੋਗੀ ਆਪੇ ਵੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤੁਜੈ ਸਮਾਣੀ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ਸਹੀ ਸਾਹ ਸੱਚੇ ਵਾਪਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਾਚੇ ਭਰਪੂਰਾ ਅਫਰਿਓ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਸਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਤਿਸ ਦਿਲ ਨਾ ਤੁਮਾਈ ਹੈ ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਭਏ ਦੇਵਾਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਜ ਰਸ ਅੰਤਰ ਮਾਨੇ ਆਪੇ ਮੁਕਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਵਰਦਾਤਾ ਭਗਤ ਪਾਏ ਮਨ ਭਾਈ ਹੈ ਆਪ ਨਿਰਾਲਮ ਗੁਰਗਮ ਗਿਆਨਾ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤੁਝ ਮਹੇ ਸਮਾਨਾ ਨਾਨਕ ਨੀ

द्वारा गंगा सागर बेणी संगम 68 अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अदली प्रव आपे, परम भेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला, आप अभुल ना कबहू भुला, आपे मेहर दया पदाता, ना किसै को बैराई है। जिस बख्शे तिस दे वडियाई, सब सह दाता तिल ना तुमाई, भरपुर धार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या साला ही अगमया पार, साचे सृजन हार मुरार, जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिले मेलाई है। ब्रह्मा विश्रमहेश द्वार है, उबे सेवै लख्या पार है, होर केती दर दिसै बिल लांदी, मैं गणत ना आवै काई है। साची कीर्त साची बाणी, होर ना दिसै बेद पुराणी, पूंजी साच सच्चे गुण गावां, मैं तर होर ना काई है। जुग जुग साचा है पी होसी, कौन न मुआ कौन न मरसी, नानक नीच कह बेनंती, दर देखो लिवलाई है। मारू महला पहला, दूजी दुरमत अन्नी बोली, काम क्रोध की कच्ची चोली, कारवार सहज न जाने शोहर, बिन पर नींद न पाई है। अंतर अग्न जलै पड़क हारे, मनमुख तके कुंडा चारे, बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है, साचे हाथ वडाई है। काम क्रोध अहंकार निवारे, तस्कर पंचो शब्द संघारे, ज्ञान खड़गलै मन स्यों लूजै, मनसा मने समाई है। मां की रकत पिता बिंद तारा, मूर्त सूरत कर अपारा, जोत दात जेती सब तेरी, तू करता सब ठाई है। तुझ ही किया जमन मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना, तू दयाल दया कर देख, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पौ खाया, तावत राखे ठाक रहाया, कमल विगास हरे सर सुबर, आत्म राम सखाई है। मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना परथाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है। आपो पाया जगत सबाया, जिन सिर आ तिन तंदे लाया, सच्चे ऊपर अवरना दिसै, साचे कीमत पाई है। एथे गोयलड़ा दिन चारे, खेल तमाशा तंदूकारे, बाजी खेल गए बाजी गार, जो निस सुपने पखलाई है। तिन कौ तख्त मिली वड्याई, निरपो मन वसिया लिवलाई, खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी, त्रिपवन ताड़ी लाई है। साची नगरी तख्त सचावा, गुरमुख साच मिले सुख पावा, साचे साचे तख्त वडाई, हों मैं गणत गवाई है। गणत गणीय सहसा जीय, क्यों सुख पावे दूवै तीय, निर्मल एक निरंजन दाता, गुरपुरे ते पत पाई है। जुग जुग विरली गुरमुख जाता, साचा रव रहा मन राता, तिसकी ओट कही सुख पाया, मन तर मैल ना काई है। जीव रसायन साचै राती, हर प्रभ संगी पौ ना प्राती, श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मिलाई है। रख रख पैर तरे पौ तरना, जत कत देखो तेरी सरना, दुख सुख देहे तू है मन पावै, तुझ ही स्यो बनियाई है। अंत काल को बेली नाही, गुरमुख जाता तो सालाही, नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लाई है। मारू महला पहला, आज उगादी अपर अपार है, आद निरंजन खसम हमार है, साचे जो जुगत विचारी, साचे ताड़ी लाई है। केतड़िया जुगत तंदूकार है, ताड़ी लाई सृजनहार है, सच नाम सची वड्याई, साचे तख्त वडाई है। सत जुग सत संतोख सरीरा, सत सत वरत गहर गंभीरा, सच्चा साहिब सच परख है, साचा हुक्म चलाई है। सत संतोखी सतगुर पूरा, गुर का शब्द मने सो सूरा, साची दरगह साच निवासा, मन हुक्म रजाई है।
ਸਤਿਯੁਗ ਸੱਚ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ। ਮਨਮੁਖ ਸਾਚ ਪਰਮ ਪਉ ਭੰਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤੈ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇੱਕ ਚੁੱਕੀ, ਤੀਨ ਚਰਨ ਇੱਕ ਦੁਬਦਾ ਸੁੱਕੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੈ, ਮਨਮੁਖ ਬਚੈ ਅਵਾਈ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਦਰਗੈ ਸੀਜੈ, ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਕਿਉ ਅੰਤਰ ਰੀਜੈ। ਬਾਂਧੇ ਆਵੈ ਬਾਂਧੇ ਜਾਵੈ, ਸੋਜੀ ਬੂਝਣਾ ਕਾਈ ਹੈ। ਦਇਆ ਦੁਆਪਰ ਅੱਧੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਚੀਨੈ ਕੋਈ। ਦੋਏ ਪੱਗ ਧਰਮ ਧਰੇ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਤਿਥਾਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਕਰੈ ਪਰਥਾਏ, ਆਸਾ ਬੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰਾਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰ ਮੁਕਤ ਮੰਗਾਹੀ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਮਾਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਛੋਡੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੇ ਛੂਟੇ ਸਚਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਅਹਿਨਿਸ ਭਗਤ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਬਣਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਕਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ, ਜਿਉ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਵੈ ਚਲਾਵੈ। ਹੱਠ ਨਿਗਰੈ ਅਪਤੀਜ ਨਾ ਭੀਜੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਗੁਰ ਕਿਨ ਪਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲ ਰਾਖੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਨੈ ਨਾ ਭਾਖੀ। ਮਨਮੁਖ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਸਿਰੰਦਾ, ਨਾ ਜਮ ਕਾਣ ਨਾ ਛੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਸੇਵੇ ਸੋ ਅਬਨਾਸੀ, ਨਾ ਤਿਸ ਕਾਲ ਸੰਤਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੈ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਤਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟਾ ਸੰਖ ਉਧਾਰੇ। ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਨਿਰਭਉ ਮੈਲ ਨਾ ਕਾਈ ਹੈ। ਸਗਲੇ ਜਾਚੈ ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਅਲਾਖਿਆ ਪਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਚੈ, ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਸਾਚ ਰਜਾਈ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਚੇ ਮੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਸਹਿ ਸਮਾਏ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜੋ ਧਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਵਰਨਾ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਜਿਸਕੇ ਚਾਕਰ ਤਿਸਕੀ ਸੇਵਾ, ਸਬਦ ਪਤੀਜੈ ਅਲਾਖਿਆ ਭੇਵਾ। ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਬਖਸ਼ ਲਏ ਵਡਿਆਈ ਹੈ।

तिल ज्यों पीड़ी, मात पिता कलत्र सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त ना की ना है। मीत सखे के ते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त परायण अंधन कीर्तन की ना है। कूड़ छोड़ साचे कौ तावो, जो इच्छो सोई फल पावो, साच वखर के वापारी विरले, लै लाहा सौदा की ना है। हर हर नाम वखर लै चलो, दर्शन पावो सहज महलो, गुरमुख खोज लह जन पूरे, इउं समदर्सी चीना है। प्रभ बेअंत गुरमत को पावै, गुर कै शब्द मन को समझावै, सतगुर की बाणी सत सत कर मानो, इउं आत्म रामै लीना है। नारद सारद सेवक तेरे, त्रिपवन सेवक वडो वडेरे, सब तेरी कुदरत तू सिर सरदाता, सब तेरो कारण कीना है। एक दर सेवै दर्द वंजाए, ओए दर गै पहंदे सतगुरु छड़ाए, हाँ मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलना दीना है। सतगुर मिलो चीनो बिदसाई, जित प्रभ पावो गणत ना काई, हाँ मैं मा

कमावे। अंदले सोजी बूझना काई लोभ बुरा अहंकारा है। पेर बिन क्या तिस धन सिंगारा पर पर राती खसम सारा। जो बेसवा पूत बाप को कही है त्यों फोकट कार विकारा है। प्रेत पिंजर में दुख कनेरे नरक पचे अज्ञान अंधेरे। धर्म राय की बाकी लीजे जिन हर का नाम विसारा है। सूरज तपै अग्न बिखचाला आपत पशु मन मुख बेताला। आशा मनसा कूड़ कमावे रोग बुरा बुरियारा है। मस्तक भार कलर सिर पारा क्यों कर पव जल लंगस पारा। सतगुर बोथे आज जुगादी राम नाम निस्तारा है। पुत्र कलत्र जग हेत प्यारा माया मोह पसरिया पासारा। जम के फाहे सतगुर तोड़े गुरमुख तत् बिचारा है। कूड़ मुठी चल बौराही मनमुख दाज पड़ पड़ पाही। अमृत नाम गुरु वरदाना नाम जपो सुख सारा है। सतगुर तुठा सच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए। कंडा पाए न गड्डी मूले जे सतगुर रखन हारा है। खेहू खेहे रलै तन छीजै मनमुख पाथर सैल न पीजै। करण पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवतारा है। माया बिख पोए अंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले। सतगुर बाजो प्रीत न उपजै भगत रते पतियारा है। साकत माया कौ बहुतावै नाम विसार कहां सुख पावै। त्रिह गुण अंतर खपै खपावै ना ही पार उतारा है। कूकर सूकर कहिए कूड़े आरा पौ कुमरै पौ पौ पौहारा। मंतन झूठे कूड़ कमावै दुरमत दर गह हारा है। सतगुर मिलै ता मनुआ टेकै राम नाम दे सरन परेकै। हर तन नाम अमोलक देवै हर जस दर गह प्यारा है। राम नाम साधु सरनाई सतगुर बचनी गत मित पाई। नानक हर जप हर मन मेरे हर मेले मेल नहारा है। मारू महला पहला कर रहो रे मन मुगदे आने। राम जपो अंतर गत ध्याने लालच छोड़ चो अपरंपर इउं पावो मुग द्वारा है। जिस बिसरिया जम जोहन लागै सब सब सुख जाहे दुखा फुनिया गै। राम नाम जप गुरमुख जी अड़े एहो परम तत् विचारा है। हर हर नाम जपो रस मीठा गुरमुख हर रस अंतर डीठा। अहनिस राम रहो रंग राते एहो जप तप संयम सारा है। राम नाम गुरबचनी बोलो संत सभा में एहो रस टोलो। गुरमत खोज लहो कार्य अपना बहुना गर्व मजारा है। सच तीर्थ नाम

जो जन्मे ते सर पर मरना किरत पया सिर साहा हे। संजोग वियोग मेरे प्रभ की है, सृष्टि उपाए दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पय निराले, गुरमुख शीरस नाहा हे। नीके साचे के वापारी, ससव दाले गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पल्ले, सब सच्चे ओ महा हे। काची समी टोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रास सलामत, चूका जमका फाहा हे। सबको बोले अपन भाणे, मनमुख दूजे बोल न जाने। अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुखता है। दुख में जन्मे

बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरे सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित शरीरा, बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावे मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साच सलाहे साच समावे, जिन गुरमुख एको जाता है, जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है, मारू सोल है तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना, आपे गुप्त वरतै सब यंत्र, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा, जो तुद पावै सोई करसै, सच्चे सिओ मन राता है, आपे हीरा रतन आपे हीरा रतन अमोलो, आपे नगरी तोले तोलो, जी जंत सब शरण तुम्हारी, कर कृपा आप पछाता है, जिसनो नदर होवे तुर तेरी, मरे न जमे चूके फेरी, साचे गुण गावे दिन राती, जुजगु एको जाता है, माया मोहे सब जगतो पाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है, पाप पुन्न वर्त संसारा, हरख सोग सब

कलयुग में कीर्तन परदाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, आप तरह सगले कुल तारे, हर दरगह पत स्यों जाएंदा। खंड पताल दीप सब लोबा, सब काल वैसे आप प्रभ किया, निचल एक आप अबनासी, सो निचल जो सह बुझाएंदा। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा, ज्यों जल तरंग उठे बो भाती, फिर सरलै सल समाएंदा। एक जाचक मंगे दान द्वारे, जा प्रभावे ता कृपा धारे, देहो दरस जित मंत्र पतासै, हर कीर्तन मन ठहराएंदा। रूड़ो ठाकर कित वस न आवे, हर सो किश करे जे हर क्या संता पावे, कीता लोड़न सोई करायन, दर फेर न कोई पाएंदा। जिथे औकट आए बंत है प्राणी, तिथे हर त्याई है सारिंग पानी, जिथे पुत्र कलतर ना बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाएंदा। वड्डा साहेब अगमा था, क्यों मिलिया प्रवे प्रवाह, काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा पाएंदा। हुक्म बूझे सो सेवक कही है, बुरा भला दो संसार सही है, हाँ मैं जाए ता एको बूझे, सो गुरमुख सही समाएंदा। हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अति तो दासी, अनक रंग करे बो भाती, जो पिता पूत लाडाएंदा। अगमा गोचर कीमत नहीं पाई, ता मिलिए जा ले मिलाई, गुरमुख प्रगट पाया तिन जन कहो, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा। तू आपे करता कारण करना, सृष्टि उपाय धरी सब तरना, जन नानक शरण पया हर द्वारे, हर भावे लाज रखाएंदा। मारू सोल हे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो दिसै सो एको तू है, बाणी तेरी सरवणी सुनिए, दूजी अवर ना जाप सकाई, सगल तुम्हारी धारणा। आप चितारे अपना किया, आपे आपे आप प्रभ थिया, आप उपाय रचियोन पासारा, आपे कटकट सारना। एक उपाय वड़ दरबारी, एक उदासी एक करबारी, एक भूखे एक तृप्त अगाए, सबसे तेरा पारना। आपे सत सत सत साचा, पोत पोत भगतन संगराचा, आपे गुप्त आपे है प्रगट, अपना आप सारना। सदा सदा सद हो बनहारा, ऊंचा अगमा था अपारा, ऊने परे परे पर ऊने, एह चलत स्वामी के कारणा। मुखसा लाही सच्चे साहा, नैनी पेखा अगमा था, करनी सुन सुन मंतन हरिया, मेरे साहेब सगले उदाहरणा। कर कर वेख कीता अपना, जी जंत सोई है जपना, अपनी कुदरत आपे जाने, नदरी नदर निहालना। संत सभा जै बैसे प्रभ पासे, आनंद मंगल हर चलत तमासे, गुण गावे अनहद तुन बाणी, तै नानक दास चितारना। आवन जाना सब चलत तुम्हारा, कर कर देखे खेलिया पारा, आप यो पायो पावन हारा, अपना किया पालना। सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, सदा सदा जाई बलिहारी, दोए कर जोड़ सिमरो दिन राती, मेरे स्वामी अगमे अपारना। तुद बिन दूजे के साला ही, एको एक जपी मन माही, हुक्म बूझ जन पय निहाला, ए भगता की कहलना। गुर उपदेश जपिए मन साचा, गुर उपदेश राम रंग राचा, गुर उपदेश तुटै सब बंधन, एहो परम हो पर जालना। जय राखै सोई सुख थाना, सहजे होए सोई पहलमाना, बिन से बैर नाही को बैरी, सब एको है पहलना। डर चूके बिन से अंधियारे, प्रगट पए प्रभ पुरख निरारे, आप छोड़ पए सरनाई, जिसका साथ इस कहलना।
ऐसा को वडभागी आया आठ पहर जन खसम ते आया ते जन कै संग तरै सब कोई सो परवार सदारना ए बख्शीस खसम ते पावा आठ पहर कर जोड़ ते आवा नाम जपी नाम सही समावा नाम नानक मिले उचारना मारू महला पंजवा सूरत देखना पूल गवारा मिथन मुहारा झूठ पसारा जग में कोई रहन ना पाए निचल एक नारायणा गुरपुरे की पौ सरनाई मोह सोग सब पर मिटाई एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना जिस नामे कौ तरसै बहु देवा सगल भगत जा की कर दे सेवा अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुरपुरे ते पायना होर द्वारा कोई ना सूजै त्रिपमन तावै ता किशु ना बूजै सतगुर साहो भंडार नाम जिस एहो रतन तसै ते पायना जा की तूर करे पोनीता सुर नर देव ना पावै मीता सत पुरख सतगुर परमेसर जिस भेड़त पार परायना पार जात लोड़ै मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे तृप्त संतोख सेवा गुरपुरे नाम कमाए रसायना गुर कै शब्द मरै पंच धातु पै पार ब्रह्म होवै निर्मला तू पारस जापेटै गुरपुरा ता पारस परस दिखायना कई बैकुंठ नाही लवै लागे मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे एक अंकार सतगुर ते पाईऐ हौ बल बल गुर दरसायणा गुर की सेवना जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई जिसनो लाए लए सो सेवक जिस वट पाग मथायणा गुर की महिमा बेद ना जाने तुष मात सुन सुन बखाने पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लायणा जा की सोए सुनी मन जीवै हृदय वसै ता ठंडा थीवै गुरमुखो अलाए ता सोबा पाए तिस जमकै पंथ ना पायना संतन की सरनाई पड़िया जियो प्राण तन आगै धरिया सेवा सुरत ना जाना काई तुम करो दया किरमायणा निर्गुण कौ संग लिहो रलाए कर कृपा मोह टै लै लाए पखा फेरो पीसो संत आगै चरण तोए सुख पायना बहुत द्वारे परम परम आया तुमरी कृपा ते तुम सरनाया सदा सदा संतै संग रखो एहो नाम दान देवायना पय कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे सुख सहजो सदा आनंदा नारक दा दसायना मारू सोल हे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरै धरती अर आकाशा सिमरै चंद सूरज गुणतासा पौन पानी बै संतर सिमरै सिमरै सगले उपार जना सिमरै खंड दीप सब लोवा सिमरै सिमरै पाताल पुरिया सच सोवा सिमरै खाणी सिमरै बाणी सिमरै सगले हर जना सिमरै ब्रह्मे बिशन महेसा सिमरै देव ते कोट ते तीसा सिमरै जख दैत सब सिमरै अगंत न जाई जसगना सिमरै पशपंखी सब भूता सिमरै बन पर्वत अवधूता लता बली साग सब सिमरै रव रया स्वामी सब मना सिमरै थूल सूखम सब जनता सिमरै सिद्ध साधक हर मंता गुप्त प्रगट सिमरै प्र मेरे सगल पवन का प्रभ धना सिमरै नर नारी शर्मा सिमरै जात जोत सवरना सिमरै गुणी चतर सबेते सिमरै रैणी अर देना सिमरै कड़ी मूर्त पल निमखा सिमरै काल अकाल सो सोचा सिमरै सौन शास्त्र संजोगा अलख न लखिय एक खिना कर्ण करावन हार स्वामी
सगल कटा के अंतर जामी, कर कृपा जिस भक्ति लावाओ, जन्म पदार्थ सोजना। जा कै मनमूठा प्रभ अपना, पूरे कर्म गुर का जप जपना, सर्व निरंतर सो प्रभ जाता, बहुना जोनी परम रोना। गुर का शब्द वसै मन जा कै, दुख दर्द प्रमता का भगै, सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहितुना। सो तनवंता जिन प्रभ त्याया, सो पतवंता जिन सा संग पाया, पार ब्रह्म जाके मन उठा, सो पूर कर्मा नाशना। जल थल महियल स्वामी सोई, अवर न कहिए दूजा कोई, गुर ज्ञान अंजन काट्यो ब्रह्म सगला, अवर न दिस एक बिना। ऊचे ते ऊंचा दरबारा, कह न जाई अंत न पारा, गहर गंभीर अथा स्वामी, अतुल न जाई क्या मिना। तू करता तेरा सब किया, तुझ बिन अवर न कोई बिया, आद मद अंत प्रभ तू है, सगल पसारा तुम तना। जम दूत तिस निकट न आवे, सत्संग हर कीर्तन गावे, सगल मनोरथ ताके पूर्ण, जो श्रवणी प्रभ का जस सुना। तू सबना का सब को तेरा, साचे साहेब गहर गंभीरा, कहो नानक से जन उत्तम, जो पावे स्वामी तुम मना। मारू महला पंजवा, प्रभ समरथ सर्व सुखदाना, सिमरो नाम हो मेरवाना। हर दाता जी जंत बेखारी, जन बाचे जा चंगना, मांगो जन तूर परमगत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो, दीर्घ रोग मिटे हर औखद, हर निर्मल रापे मंगना। श्रवणी सुनाओ बिमल जा स्वामी, एकायोट तजो बिख कामी, निम निम पाए लगो दास तेरे, कर सुकृत नाही संगना। रसना गुण गावे हर तेरे, मिटे कमाते अवगुण मेरे, सिमर सिमर स्वामी मन जीवै, पंच दूत तज तंगना। चरण कमल जप बोहित चरिया, संत संग मिल सागर तरिया, अर्चा बंदन हर संत निवासी, बाहुड़ जो न नंगना। दास दासन को कर लेहो गोपाला, कृपा निधान दीन दयाला, सखा सहाई पूर्ण परमेश्वर, मिल कदे न होवी भंगना। मन तन अर्प धरी हर आगे, जन्म जन्म का सोया जागे, जिसका सा सोई प्रतपालक, हाथ त्यागी हूं मैं हंतना। जल थल पूर्ण अंतर जामी, काटकट रव्या छल स्वामी, परम पीत खोई गुरपूरै, एक रव्या सरबंगना। जत कत पेखाओ प्रभ सुख सागर, हर तोट भंडार नाही रतनागर, अगे अगा किश्मित नहीं पाई है, सो बूझै जिस कर पंगना। छाती शीतल मन तन ठंडा, जन्म मरण की मिटवी डंजा, कर गए काढ़ लिए प्रभ अपने, अम्यो तार दृष्टंगना। एको एक रव्या सब ठाई, तिस बिन दूजा कोई नाही, आद मद अंत प्रभ रव्या, तृष्ण बुझी परमंगना। गुर परमेसर गुर गोबिंद, गुर करता गुर सदबख्शंद, गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना। जो पेखा सो सब के स्वामी, जो सुनना सो प्रभ की बानी, जो कीनो सो तुम्हें करायो, शरण सहाई संत तना। जाचक जाचे तुम्हें अरा दे, पतित पावन पूर्ण प्रभ सा दे, एको दान सर्व सो गुण निद, आन मंगन ने किंचना। काया पात्र प्रभ करने हारा, लगी लाग संत संगारा, निर्मल सोए बनी हर बाणी, मन नाम जीठे रंगना। सोलह कला संपूर्ण फलिया,
ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੇਠਾ ਕਰ ਚੜਿਆ, ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਖ ਨਾਨਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਪੁੰਚਨਾ। ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ, ਹੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਸਾੜਾ, ਤੁਮੈ ਪਠਾਏ ਤਾਂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ, ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਣਾ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵਾ, ਤਾਂ ਪੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕਾੜਾ, ਊਹਾਂ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣੀਐ, ਈਹਾਂ ਹਰ ਜਸ ਤੇਰਾ ਭਣੀਐ, ਆਪੇ ਲੇਖਾ ਲੇਖੈ ਆਪੇ, ਤੁਮ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਝਾੜਾ, ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਸਭ ਬਾਰਕ ਥਾਰੇ, ਜਿਉਂ ਖਿਲਾਵੈ ਤਿਉਂ ਖੇਲਣ ਹਾਰੇ, ਉੱਜੜ ਮਾਰਗ ਸਭ ਤੁਮਹੀ ਕੀਨਾ, ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਵੇ ਪਾੜਾ, ਇੱਕ ਬੈਸਾਏ ਰੱਖੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਤਰ, ਇੱਕ ਪਠਾਏ ਦੇਹ ਦਸੰਤਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਉ ਘਾਸ ਇੱਕ ਹੀ ਕਉ ਰਾਜਾ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਹੀਐ ਕਿਆ ਕੂੜਾ, ਕਵਨ ਸੋ ਮੁਕਤੀ ਕਵਨ ਸੋ ਨਰਕਾ, ਕਵਨ ਸਹਿ ਸਾਰੀ ਕਵਨ ਸੋ ਭਗਤਾ, ਕਵਨ ਸੋ ਦਾਨਾ ਕਵਨ ਸੋ ਹੋਛਾ, ਕਵਨ ਸੋ ਸੁਰਤਾ ਕਵਨ ਜੜਾ, ਹੁਕਮੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁਕਮੇ ਨਰਕਾ, ਹੁਕਮ ਸੰਸਾਰੀ ਹੁਕਮੇ ਭਗਤਾ, ਹੁਕਮੇ ਹੋਛਾ ਹੁਕਮੇ ਦਾਨਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ਧੜਾ, ਸਾਗਰ ਕੀਨਾ ਆਤਮ ਪਾਰਾ, ਇੱਕ ਖੜੇ ਰਸਾ ਤਲ ਕਰ।

गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प धरी सब आगै, जग मै नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे, सास ग्रह संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग भज अचुत स्वामी, दरगह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाहै, मिल साधु स्वामी रावणा, शास्त्र सिमरत वेद वखाणी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिऐ, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडभागी, बहुना जो नी पावना, जिसनो बिसरै पुरख विधाता, जलता फिरै रह नित ताता, अकिरत घणे कौ रखै ना कोई, नरक कोर मैं पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ मैं राख निवाजिया, तिस स्यो प्रीत शाड अनराता, काहू सिरै ना लावना, तार अनुग्रह स्वामी मेरे, घट घट वसै सबन कै नेरे, हाथ मारे कछुऐ नाही, जिस जणाए तिसै जणावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, तिसी पुरख ना व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरलैही कीने, ताकि कीमत कहन न जाई, जत का तो ही समावना, सोई भगत सोई वरदाता, सोई पूर्ण पुरख विधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बदै कटै ना कटाए, सोई होए जे करते पावै, कह कह आप मजावना, अंध कूपते से ही काढे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहन न जाई, अचरज रूप वड्डी वड्याई, भगत दान मंगै जन तेरा, नानक बल बल जावना, मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महा

पौड़ी पाणे हुक्म नायोन पाणे सुख पाया पाणे सतगुर मेलेओन पाणे सच ते आया पाणे जेवड होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागति जिन जगत उपाया। श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पै की नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद। महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूं सुखसार सो ब्राह्मण पलाया खीए जे बुझे ब्रह्म विचार। हर साल आहे हर पड़े गुर के शब्द विचार आया ओ प्रवान है जे कुल का करे उधार। अगे जात न पुछिए करनी शब्द है सार होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना बिखिया नाल प्यार। अंदर सुख ना हो गई मनमुख जन्म खुवार नानक नाम रते से उबरे गुर कै हित अपार। पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा जो हुक्म न बूझे खसम का सोई नर कच्चा। जित भावै तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रचा गुरमुख सदा सलाही है।

प्यास ना जाए। अपनी कृपा करो हर प्यारे, हर हर नाम सद सारिया। गुर कै शब्द मिलिया, मैं प्रीतम हूं सतगुर विट्टों वारिया। जब देखा फिर प्यारा, हर गुण रस रवा राम। मेरे अंतर होए विगास, प्रियो प्रियो सच नित चवा राम। प्रियो चवा प्यारे, शब्द निस्तारे, बिन देखे तृप्त न आवे। शब्द सिंगार होवे नित कामण, हर हर नाम ते आवे। दया दान मंगत जन जीजै, मैं प्रीतम देहो मिलाए। अंदर गुर गोपाल ते आई, हम सतगुर विटों घुमाए। हम पाथर गुर नाम, बिख पफजल तारिय राम। गुरदेवो शब्द सुभाए, मैं मूड निस्तारिय राम। हम मूड मुगद किशमित नहीं पाई, तू अगम वड जानिया। तू आप दयाल दया कर मिले, हम निर्गुणी निमाणिया। अनेक जन्म पाप कर परमे, हुण तो शरणागत आए। दया करो रख लेवो हर जियो, हम लाग

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदय नाम वसाए, पैरव महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब कुल उदाहरण हार। बिन नावें मनमुख

जल थल महियल सब तै भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजूर। पहरो महला चौथा कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद हर का संत हर की हर मूर्त, जिस हृदय हर नाम मुरार। मस्तक भाग होवै जिस लिखिया, सो गुरमत हृदय हर नाम समार। मधुसूदन जपिए और तार, देही नगर तस्कर पंच धातु, गुरसबदी हर का डे मार। रहाओ जिनका हर सेती मन मान्या, तिन कार जर आप सवार। तिन चुकी मोहताजी लोकन की, हर अंगीकार किया करतार। मता मसूर तो ता किश कीजै, जे किश होवै हर बाहर। जो किश करै सोई पल होसी, हर त्यावो अंदर नाम मुरार। हर जो किश करे सो आपे आपे, ओ पूछना किसै करे विचार। नानक सो प्रभसदा त्याई है, जिन मेलिया सतगुर कृपा तार। पैरो महला चौथा ते साधु हर मेलो स्वामी, जिन जप्यागत होए हमारी। तिनका दर्श देख मन बिकसै, खिन खिन तिन को हों बलिहारी। हर हृदय जप नाम मुरारी, कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी। हम दासन दास की जय पनिहारी। रहाओ तिन मत उत्तम तिन पत उत्तम, जिन हृदय वस्या बनवारी। तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी। जिन ऐसा सतगुर साध ना पाया, ते हर दर गए कर डे मारी। ते नर निंदक सोभ ना पावै, तिन ना काटे सृजनहारी। हरे आप बोलावै आपे बोलै, हरे आप निरंजन निरंकार निराहारी। हर जिस तू मिलै सो तुद मिलसी, जन नानक क्या है जंत विचारी। पैरो महला चौथा, सतसंगत साई हर तेरी, जत हर जित हर कीर्त हर सुनने। जिन हर नाम सुनिया मन पीना, तिन हम श्रेवै नित चरणे। जग जीवन हर त्याय तरने, अनेक संख नाम हर तेरे। ना जाही जेवा इत गणने। रहाओ गुरसिख हर बोलो हर गावो, ले गुरमत हर जपने। जो उपदेश सुने गुर केरा, सो जन पावे हर सो कहने। तन सो वंश तन सो पिता, तन सो माता जिन जन जने। जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर, से साची दर गए हर जन बने। हर हर अगम नाम हर तेरे, विच भगता हर तरने। नानक जन पाया मत गुरमत।

नाम बिना सब दुनिया शार, अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपन खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरै दिल जी प्राण, पहरो महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाणा सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन तुठ पीवो, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग मैं कनाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा, सतगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, भैरो महला पंजवा, अपने दास कौ कंठ लगावै, निंदक कौ अगन में पावै, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथू नाही, पापी पचिया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री तर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता, अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे, जो चितवी है तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध ज्ञाना, हर की भगत करै तिन निंदै, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, स्वागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पै सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया, पैरों महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, गृह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊब पयाल सर मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यासै पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपी तपी सरमन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए,

गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मै लए दीन दयाल सदा कृपाल बिरस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत खिर मैं बिरस्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रख नहार गोविंद गुरे आप अपने सेवक कौसदा प्रतपार है पगजना के सास निहार है मानस की कहो केतक बात जमते राखे देकर हाथ निर्मल शोभा निर्मल रीत पार ब्रह्म आया मन चीत कर कृपा गुरदीनो दान नानक पाया नाम निदान पैरव महला पंजवा करण कारण समर्थ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै पंजन अबनासी राय दर्शन देखे सब दुख जाए जत कत पेखो तेरी सरना बल बल जाई सतगुर चरना रहाओ पूर्ण काम मिले गुरदेव सफल दाता निर्मल सेव कर गहलीने अपने दास राम नाम रिद्धियो निवास सदा आनंद नाही के सोग दुख दर्द न व्यापै रोग सब किश तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुर अगम अपार निर्मल सोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रविया सोए नानक सब किश प्रभ ते होए पैरव महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूर्ण करने आठ पहर गावत भगवंत सतगुर दीनो पूरा मंत सो वड भागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरह संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरै एक सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी सो पतवंता जे आप पिछानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल दिन रहन ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण रिदमाहे निवासा कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा सो जनाया प्रभ की सरना आप पवित पावन सब कीने राम रसायन रसना चीने पैरो महला पंजवा नाम लै तो किश बिघ ना लागे नाम सुन तो जम दूरों भागे नाम लै तो सब दुख है नास नाम जप तो हर चरण निवास निर्विघ्न भगत भज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ हर सिमर तो किस चाख ना जो है हर सिमर तो दैत देव ना पुहै हर सिमर तो मोह मान ना बदै हर सिमरत गर्भ जोन ना रुदय हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बहु माया केला जात अजात जपै जन कोए जो जपै तिसकी गत होए हर का नाम जपिए साध संग हर के नाम का पूर्ण रंग नानक कहो प्रभ कृपा तार सा सा सर देहो चितार पैरो महला पंजवा आपे सास्ते आपे भेद आपे कटकट जाने भेद ज्योत स्वरूप जाकी सब वत करण कारण पूर्ण समरथ प्रभ की ओट गहो मन मेरे चरण कमल गुरमुखिया राधाओ दुश्मन दुख न आवे नेरे रहाओ आपे वन त्रिण त्रि पवन सार जाकै सूत परोया संसार आपे शिव शक्ति संजोगी आप निर्बाणी आपे भोगी जत कत पेखो तत तत सोए
ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਵਸ ਜਾ ਕੈ, ਊਣਾ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਜਨਤਾ ਕੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਹੀ ਜਨ ਧਨ, ਪਹਿਰਾਓ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਗੋਬਿੰਦ, ਅਸਥਿਤ ਭਏ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਚਿੰਦ, ਭੈ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨਸ ਗਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਤ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ, ਰਹਾਓ ਧਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਜੁਗਤ ਗੋਪਾਲ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇ ਰਾਖੈ ਹਾਥ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਛੋਡੈ ਸਦਹੀ ਸਾਥ, ਹਰ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਸਰ ਸਮਾਲੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਬੰਧ ਨਰਾਇਣ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਇਣ, ਤਿਸ ਕੀ ਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮਨ ਜੋਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਪ੍ਰਖਾਰਥ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥ, ਪਹਿਰਉ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪੜਿਆ, ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਗਲ ਬਿਆਦ, ਮਿੱਟੀ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਕੀ ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ, ਰਹਾਓ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਤਿਨਕੋ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਨ ਧਾਮ, ਜਨ ਕਾ ਦਰਸ ਬਾਂਛੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਾਮ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਨਿੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ,

कहे नानक सबको करे कराया, से प्रमाण जिनी हरस्यो चित लाया, भगतां का अंगीकार करदा आया, करता है अपना रूप दिखाया। पैरव महला तीजा, गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हम मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन वसया, मनसा मन समाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, आन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे, रहाओ संत जना को जम जो न साके, रति अंच दुख ना लाई, आप तेरा सगले कुल तारे, जो तेरी शरणाई, भगतां की पैज रखे तू आपे, ए तेरी वड्याई, जन्म जन्म के किलविख दो काट, दुबदा रति नाराई, हम मूड़ मुगद किश बुझे नाही, तू आपे देह बुझाई, जो तुद पावे सोई करसी, अवर ना करना जाई, जगतो पाए तू तंदे लाया, पूंडी कार कमाई, जन्म पदार्थ जुए हारिया, शब्द सुरत ना पाई, मनमुख मरे तिन किशु ना सूझे, दुर्मत अज्ञान अंधारा, पव जल पार ना पावे कभी, डूब मोए बिन गुरसिर पारा, साच शब्द रते जन साचे, हर प्रभ आप मिलाए, गुर की बाणी शब्द पछाती, सच रहे लिवलाए, तू आप निर्मल, तेरे जन है निर्मल, गुर कै शब्द विचारे, नानक तिन कै सद बलिहारे, राम नाम उतारे, पैरव महला पंजवां, अष्टपदियां कर दूजा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, जिस नाम हृदय सोई वड़ राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा, जिस नाम हृदय तिन कोट तन पाए, नाम बिना जन्म बिरथा जाए, तेसा लाही जिस हर तन रास, सोबड़ भागी जिस गुर मस्तक हाथ, रहाओ जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना, जिस नाम हृदय ते सह सुखैना, जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ, नाम बिना त्रिक जीवन मुआ, जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता, जिस नाम हृदय तिस सब ही जुगता, जिस नाम हृदय ते नौनद पाई, नाम बिना भ्रम आवै जाई, जिस नाम हृदय सो विप्रवाह, जिस नाम हृदय ते सदही लाहा, जिस नाम हृदय तिस वड परवारा, नाम बिना मनमुख गावारा, जिस नाम हृदय तिस निश्चल आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन, जिस नाम हृदय सो साचा साहो, नाम हीन नाही पतवे साहो, जिस नाम हृदय सो समय जाता, जिस नाम हृदय सो पुरख विधाता, जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा, नाम बिना परम जोनी मूचा, जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा, जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधियारा, जिस नाम हृदय सो पुरख प्रवान, नाम बिना फिर आवन जान, तिन नाम पाया जिस पयो कृपाल, सा संत मैं लखे गोपाल, आवन जान रहे सुख पाया, कहो नानक तत्तै तत् मिलाया। पैरव महला पंजवा, कोट बिसन कीने अवतार, कोट ब्रह्मांड जाके धर्मसाल, कोट महेशो पाए समाए, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, ऐसो तनी गोविंद हमारा, बरनासा को गुण विस्थारा, रहाओ कोट माया जाके सेवकाए, कोट जी जाकी सह जाए, कोटो पार जना तेरा अंग, कोट भगत बसत हर संग, कोट छत्रपत करत नमस्कार, कोट इंद्र ठंडे है द्वार, कोट बैकुंठ जाकी दृष्टि माहे, कोट नाम जाकी कीमत नाहे, कोट पूरियत है जाके नाद, कोटा खारे चलत बिस्माद, कोट सगत से आज्ञाकार, कोट जी देवे आधार, कोट तीर्थ जाके चरण मजार, कोट पवित्र जपत नाम चार, कोट पुजारी करते पूजा, कोट विस्थार ने अवर ना दूजा, कोट महिमा जाकी निर्मल हंस, कोट उस्त जाकी करत ब्रह्मांस, कोट परलो ओपत निमख माहे, कोट गुणा तेरे गणे न जाहे, कोट ज्ञानी कथा ज्ञान, कोट त्यानी तरत त्यान, कोट तपीसर तभी करते, कोट मुनीसर मोन मह रहे।

ते अवगत नाथ या गोचर स्वामी पूर्या प्रभ्यंतरयामी जात कत देखो तेरा वासा नानक कहो गुर कियो प्रगासा पैरो महला पंजवा सतगुर मोको कीनो दान अमोल रतन हरदीनो नाम सहज बिनोद चो जानंता नानक कहो प्रभ मिलो अचिंता कहो नानक कीर्त हर साची बहुर बहुर ते संगमन राची रहाओ अचिंत हमारा पूजन पाओ अचिंत हमारा लीचे नाओ अचिंत हमारा शब्द उधार अचिंत हमारा परे भंडार अचिंत हमारा कार्य पूरे अचिंत हमारा लथे विसूरे अचिंत हमारा बैरी मिता अचिंतो ही मन वसकीता अचिंत प्रभु हम किया दिलासा अचिंत हमारी पूर्ण आसा अचिंत हमा कहो सगल सिद्धांत अचिंत हम कहो गुर कीनो दीनो मंत अचिंत हमारे बिन से बैर अचिंत हमारा मिट अंधेर अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा अचिंतो ही प्रभु कड़ कड़ डीठा अचिंत मिट्यो है सगलो परमा अचिंत वस्यो मन सुख विश्रामा अचिंत हमारा अनहद वाजै अचिंत हमारा गोविंद गाजै अचिंत हमारा मन पतिया ना निचल तनी अचिंत पछाना अचिंतो उपजियो सगल बबेका अचिंत चरी हथ हर हर टेका अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख अचिंत मिलियो प्रभ ठाकरे को चिंता चिंता सगली गई प्रभ नानक नानक नानक मई पैरव बाणी भगता की कबीर जियो कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एहो तन मेरे हर

नाव मेरे बंधप नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सखाई। माया मैं जिस रखे उदास, कह कबीर हां ता को दास। नंगे आवन नंगे जाना, कोई न रह राजा राना। राम राजा नौनद मेरे, संपै हेत कला तो तन तेरा रहाओ। आवत संग न जा संगाती, कहां पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहे कबीर किश गुण बिचार, चले दुवारी चले जुआरी दो हथ चार। मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद। मैला मलता है संसार, एक हर निर्मल जा कांत ना पार। रहाओ मैले ब्रह्मंडा एक ईस, मैले निस्बा सिर जंतीस। मैला मोती मैला हीर, मैला पौन पाव क्यार नीर। मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साध क्यार पेख। मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत। कह कबीर ते जन परवान, निर्मल ते जोरा मैं जान। मन कर मक्का किबला कर देही, बोलनहार परम गुर यही। कहरे मुल्ला बाग निवाज, एक मसीत दसै दरवाज। रहाओ मिसमिल तामस परम कदूरी, पाखले पंचै हुए सबूरी। हिंदू तुर्क का साहिब एक, कह करे मुल्ला कह करे शेख। कह कबीर हाँ पया दीवाना, मुस मुस मनुमा सही समाना। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुई निबरी। बिगरियो कबीरा राम दुहाई, साच पायो अन कत न जाई। रहाओ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो। पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामे हुए निबरियो। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जौ हौ बौरा तौ राम तोरा, लोग मरम कह जाने मोरा। रहाओ तोरव ना पाती पूजव ना देवा, राम भगत बिन्ने फल सेवा। सदगुर पूजव सदा सदा मनावो, ऐसी सेव दरगह सुख पावो। लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। उल्ट जात कुल दो बिसारी, सुन सहज में बुंत हमारी। हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो। रहाओ बुन बुन आप वा पैरावो, जै नहीं आप तहां होए गावो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किशु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओ चेतना धरे। रहाओ जाओ निरतन सरतन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो सरदन निर्दन कह जाए, दिया यादर लिया बुलाए। निर्दन सरदन दोनों पाई, प्रभ की कला न मिटी जाई। कह कबीर निर्दन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। पजो गोबिंद पूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल पई नहीं बानी, भजले रेह मन सारंग पानी। आब ना भजस भजस का उपाई, आवै अंत ना भजया जाई। जो किश करे सोई अवसार, फिर पछताओ ना पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव। गुरमिल ताके खुले कपाट, बहुर ना आवे जोनी बाट। इही तेरा अवसर एह तेरी बार, कट पीतर तू देख बिचार। कहत कबीर जीत कह हार, बहुबिद कहो पुकार पुकार। शिव की पुरी बसै बुध सार, तह तुम मिलके करो विचार। ईतूत की सोजी पर, कौन कर्म मेरा कर कर मरै। निज पदू

रहाओ मिथ्या जिह बाय अवरे काम, निर्वाण पादो एक हर को नाम। असंख कोट अन पूजा करी, एक ना पूजस न मैं हरी। प्रणवै नाम देओ एहो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर दारा पर हरी, ताके निकट बसै नर हरी। जो ना पजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनके पितर है अंतरा, जैसे पस तैसे हुए नरा। प्रणवत नाम देओ ना कह बिना, ना सोहै बत्तीस लखना। दूध कटोरे गड़वै पानी, कपल गाए नामै दुहयानी। दूध पियो गोबिंदे राए, दूध पियो मेरो मन पति आए। नाही ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हर आग्या तरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रच ता कहो करो सिंगार। भले निंदाओ भले निंदाओ भले निंदाओ लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ बाद विवाद कहूं स्यो ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू पूर्ण चने बनावै, ज्यो राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किश कथन ना जाई, रहाओ। कबहू तुरे तरंग नचावै, कबहू पाए पनियो ना पावै। कबहू खाट सुपेदी सुवावै, कबहू पूम पै आर ना पावै। पंत नाम देव एक नाम निस्तार है, जे गुर मिलै ते पार उतार है। हस्त खेल तो तेरे देहुरे आया, भगत कर तो नामा पकड़ उठाया। हिन्नड़ी जात मेरी जात मराया, शिपे के जन्म काहे कवाया। रहाओ ले कमली चलियो पलटाए, देहुरे पाछे बैठा जाए। ज्यो ज्यो नामा हर गुण उचरे, भगत जना का देहुरा फिरे। पैरो नाम देओ जियो, कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखावंत जल सेती काज। जैसी मूड़ कुटम परायण, ऐसी नामे प्रीत नारायण। नामे प्रीत नारायण लागी, सही सुभाए पयो बैरागी। रहाओ जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नारो तन का हितकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए। कबहु ना टूट सो रया समाए, नामे चितलाया सच नाए। जैसी प्रीत बार क्यार माता, ऐसा हरसेती मन राता। प्रणवै नाम देव लागी प्रीत, गोविंद बसै हमारे चीत। कर की नारतिया गए अंदा, पर नारी सो काल है तंदा। जैसे सिंबल देख सुआ बिकसाना, अंत की बार मुआ लपटाना। पापी का कार्य अग्नि माहे, जलत रह मिटवै कब नाहे। रहाओ हर की भगतना देखै जाए, मार्ग छोड़िया मार्ग पाए। मूलों पूला आवै जाए, अमृत डार लाद बिख खाए। ज्यों बेसवा के परया खारा, कापर पहर करै सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वाके गले जमका है फास। जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना। कहत नाम देव एहो बिचार, इनबित संतो उतरो पार। संडा मरका जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे। राम कहे कर ताल बजावे, चटिया सबे बिगारे। राम नामा जप बो करे, हृदय हर जी को सिमरन तरै। रहाओ बसदा बस कीनी, सब राजे बिनती करे पटरानी।
पूत प्रहलाद कया नहीं माने तिनता और ठानी दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर सह औद कनेरी गिरताल जल ज्वाला पह राखे ओ राजा राम माया फेरी काढ़ खड़ग काल पह कोप्यो मोहे बताओ जो तुहे राख पीत पितांबर त्र पवन तनी थंब माहे हर पाख हर नाकसो जिन नखै बिदारियो सुर नर किए सनाथा कह नाम देव हम नर हर त्यावै राम अप है पद दाता सुल्तान पूछे सुन बेनामा देखो राम तुम्हारे कमा नामा सुल्तान ने बांधला देखो तेरा हर बीठला रहाओ बिस्मिल गऊ देहो जी आए नातर गर्दन मारो उठाए बादशाह ऐसी क्यों होए बिस्मिल किया ना जीवे कोए मेरा किया कछु ना होए कर है राम होए है सोए बादशाह हो चढ़े अहंकार गज हस्ती दीनो चमकार रुदन करे ना मैं की माए छोड़ राम की ना पजा खुदाए ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण गाए करे गजेंद सुंड की चोट ना माय उबरे हर की ओट काजी मुल्ला करे सलाम इन हिंदू मेरा मलिया मान बादशाह बेनती सुने हो नामे सर पर सोना ले हो माल ले हो तो दोजक पराओ तीन छोड़ दुनिया को पराओ पावो बेड़ी हाथों तालो नामा गावे गुण गोपाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा हर करता रह सात कड़ी जा बीती सुनी अजो ना आयो त्रिपवन तनी पाखंतन बाज बजाएला गर चढ़े गोविंद आएला अपने भगत पर की प्रतपाल गरड़ चढ़े आए गोपाल कहे ता तरन एक ओडी करो कहे ता लेकर ऊपर तरो कहे ता मुई गऊ देव जी आए सब कोई देखे पति आए नामा प्रणवै सेल मसेल गऊ दुहाई बछरा मेल दूध दोहे जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे तरी बादशाह महल में जाए औकट की कट लगी आए काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाए नामा कहे सुनो बादशाह एहो किश पतिया मुझे दिखाए इस पतिया कह परवान साच सील चलो सुल्तान नाम देओ सब रया समाए मिल हिंदू सब नामे पै जाए जाओ अब की बार ना जीवे गाए ता नाम देव का पतिया जाए नामे की कीर्त रही संसार भगत जनाले उधरिया पार सगल कलेस निंदक पया खेद नामे नारायण नाही भेद कर दूजा जाओ गुरदेव ता मिले मुरार जाओ गुरदेव ता उतरै पार जाओ गुरदेव ता बैकुंठ तरै जाओ गुरदेव ता जीवत मरै सत सत सत सत सत गुरदेव झूठ झूठ झूठ झूठ आन सब सेव रहाओ जौ गुरदेव ता नाम दृढ़ावै जौ गुरदेव ना दे दस्तावै जौ गुर

हर अमृत हर जल नी दे, हमरे कर्मना विचरो ठाकर तुम पैज रखो अपनी दे, हर भावे सुन बिनो बेनती जन नानक शरण पवी दे। बसंत हिंडोल महला चौथा, मन खिन खिन भरम भरम बहुत आवै, तिल कर नहीं वासा पाई है, गुर अंकस शब्द दारू सिर धारियो, कर मंदिर आन वसाई है, गोविंद जियो सतसंगत मेल हर त्याई है। हाउ मैं रोग गया सुख पाया, हर सह समाध लगाई है, रहाओ कर रतन लाल बहु माणक लादे, मन भ्रमया लह ना सकाई है, ज्यों ओडा कूप गोज खिन काढ़ै, त्यों सतगुर वस्त लहाई है, जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाई है, जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदले जाई है, मधसूदन हर धार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाई है, जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाई है। बसंत हिंडोल महला चौथा, आम अनजान पया दुख बिखिया, दे मनमुख सुनी सुन, राम नाम खिन पल नहीं चेतिया, जम पकरे काल सलुन, गोविंद जियो बिखाऊ मैं ममता मुन, सतसंगत गुर की हर प्यारी, मिर संगत हर रस पुन, रहाओ सत संगत साध दया कर मेलो, सरनागत साधु पंज, हम डुबदे पाथर काड लेहो, प्रभ तुम दीन दयाल दुख पंज, हर उस्तत तारो हृदय अंतर, स्वामी सत संगत मिल बुद्ध लाइ, हर नामै हम प्रीत लगानी, हम हार विटो कुम वाइ, जन के पूर मनोरथ हर प्रभ, हर नाम देवो हर लाइ, जन नानक मन तन अंध भया है, गुरमंत्र दियो हर पंज। बसंत महला पंजवा, कर पहला दो तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर सेवो कर नमस्कार, आज हमारे मंगल चार, आज हमारे बने आनंद, आज हमारे महा आनंद, चिंत लथी पेटे गोबिंद, आज हमारे गृह बसंत, गुण गाए प्रभ तुम बेअंत, रहाओ आज हमारे बने फाग, प्रभ संगी मिल खेलन लाग, होली कीनी संत सेव, रंग ला गायत लाल देव, मन तन मौल्यो वातानूप, सूके नाही शाव तूप, सगली रूती हरिया होए, सद बसंत गुर मिले देव, बिरख जम्यो है पार जात, फूल लगे फल रतन पहात, तृप्तिया गाने हर गुण है गाए, जन नानक हर हर हर ते आए। बसंत महला पंजवा, हटवाणी तनमाल हट कीत, जुआरी जुए माहे चीत, अमली जीवे अमल खाए, त्यो हर जन जीवे हर ते आए, अपने रंग सब को रचे, जित प्रभ लाया तित तित लगे, रहाओ मेघ समय मोर निरतकार, चंद देख बिकसै कौलार, माता बारक देख आनंद, त्यो हर जन जीवे जप गोबिंद, सिंह रुचे सद भोजन मास, रण देख सूरे चित उलास, किरपन कहो अतन प्यार, हर जन कहो हर हर आधार, सर्ब रंग एक रंग माहे, सर्व सुखा सुखार कह नाहे, तिसे प्राप्त हो निदान, नानक गुरजस करे दान। बसंत महला पंजवा, तिस बसंत जिस प्रभ कृपाल, तिस बसंत जिस गुरदयाल, मंगल तिसके जिस एक काम, ते सद बसंत जिस हृदय नाम, गृह ताके बसंत गनी, जाके कीर्तन हर तुनी, रहाओ प्रीत पार ब्रह्म मोल मना, ज्ञान कमाई है पूजना, सो तपसी जे साध संग, सा ध्यानी जस गुरे रंग, से निरपो जिन पौ पया, सो सुखिया जिस भ्रम गया, सोए कांति जिस रदा थाए, सोई निहचल साज ठाए, एका खोजे एक प्रीत, दर्शन परसन हित चीत,
ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਾ ਸਹਿਜਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਸ ਜਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤੁਮ ਪਿੰਡ ਦੀਨ, ਮੁਗਦ ਸੁੰਦਰ ਧਾਰ ਜੋਤ ਕੀਨ, ਸਭ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਦਿਆਲ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਵਤ ਨਿਹਾਲ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਹਉ ਪਾਵਾਂ ਤੁਮ ਤੇ ਸਗਲ ਥੋਕ, ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਵਤ ਉਧਾਰ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਾਰ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਭਗਤ ਸੋਭਾ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਬਿਘਨ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਦੇਹੇ, ਸੋ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਹੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਸਰਾਮ, ਸਦਾ ਹਿਰਦੈ ਜਪੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਨਾਮ। ਤੁਝਬੇ ਦੂਜਾ ਕੋਏ ਨਾਹੇ, ਸਭ ਤੇਰੋ ਖੇਲ ਤੁਝ ਮੈਂ ਸਮਾਹੇ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੇ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਲੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਰਾਏ, ਜਿਸੈ

अंतर्यामी प्रभ दयाल, अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोह देहो दान, जप जीवे नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवा, राम रंग सब गए पाप, राम जप तो कछ नहीं संताप, गोविंद जप तो सब मिटे अंधेर, हर सिमर तो कछ नाए फेर। बसंत हमारा राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करन हार, ईत ऊत प्रभ कार जसार, चरण कमल सों लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर, जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवा, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जाकै सिमरन नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए, गुरपुरे की सदा सरनाई, साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देस दिसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे, ओ अपना बीजा आप खाहे, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभदास रखे कर जतने आप, अखंड पूर्ण जाको प्रताप, गुण गोबिंद नित रसन गाए, नानक जीवे हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवा, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जप जीव नानक राम नाम। सार उत सुहावी जित हर चित आवै, फिर सतगुर दी सह बिललांती, सागत फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पह बिन से निरपै पद पाया, गुर मिल नानक खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल महियल रव रहया, गुर मिल नानक हर हर कहया। अहित सिद्ध नव निद एह, कर्म प्राप्त जिस नाम देह, प्रभ जप जप जीवै तेरे दास, गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवा, कर पहला एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जपनिया, प्रभ मिले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोबिंद रमन योग, जित रवै सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नजर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, से सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख धनी। मेरा गुणे अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पूजा रिया। बसंत महला पंजवा, किल बिख बिनसे गाए गुना, आन दिन उपजी सही धुना, मन मौल्यो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन भेटे, नित रातो हर नाम रंग रहाओ। कर कृपा प्रगटे गोपाल, लड़ लाए उधारे दीन दयाल, एहो मन होवा साध तूर, नित देखे स्वामी हजूर। काम क्रोध तृष्णा गई, नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवा, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने कर थाप, सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरनी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाओ।
ਸਫਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਨਿਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲ ਗੁਰਪੁਰੈ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿੰਦੀਆ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਬਾਹਾਂ ਪਕਰ ਭਵਜਲ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਮਹਿਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੇ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੋ ਧਾਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਖ ਕਠੂਲੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਹਿੰਡੋਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਵੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅੰਤਕਾਲ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਪੀਰ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ ਸਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਜੀਤੋ ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਓ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਹਰ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੈ ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ

जोगी जंगम अर संन्यास सभी पर डारिये फास। जेह जे हर को नाम समार ते पव सागर उतरे पार। जन नानक हर की शरण आए दीजे नाम रह गुण गाए। बसंत महला नावा माई मैं तन पायो हर नाम। मन मेरो धामन ते छूटो कर बैठो विश्राम रहाओ। माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान। लोभ मोए परसना साकै गही भगत भगवान। जन्म जन्म का संसार चूकार तन नाम जप पाया। तृष्णा सगल बिनासी मन ते नहीं सुख माए समाया। जा कहो दयाल कृपा निध सो गोविंद गुण गावै। कहो नानक बिद की संपै को गुरमुख पावै। बसंत महला नावा मन कहां बिसार्यो राम नाम। तन बिनसै जम स्यों परै काम रहाओ। एहो जग तुए का पहार तै साचा मानिया के विचार। तन दारा संपत ग्रेह कै संग ना चालै समझ लेहे। एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भजते एक रंग। बसंत महला नावा कहां पूले ओरे झूठे लोभ लाग। कश बिगड़ियो नाहन अजहो जाग रहाओ। सम सुपने कहो जग जान बिन सैशन मै साची मान। संग तेरे हर बस्त नीत निसबासर पाई ताहे मीत। बार अंत की होए सहाय कहो नानक गुणता के गाए। बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जग कौआ नाम नहीं चीत नाम विसार ग्रह देख पीत। मनुआ डोले चीता नीत जग स्यों तूटी झूठ प्रीत। काम क्रोध बिख बज्जर भार नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ। कार बालू का कुमन केर बरखस बाणी बुध बुदा हेर। मात्र बूंद ते तार चक फेर सर्ब जोत नामै की चेर। सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पगला गौ तोर। नाम रता चाहो तुझे और नाम दुराए चलै सो चोर। पत खोई बिखियन चल पाए साच नाम रतो पास्यों कर जाए। जो किश कीनस प्रभर जाए पै माने निरपो मेरी माए। कामन चाहे सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग। खीलै बिकसै ते तो सोग प्रभ शरणागत कीनस होग। कापड़ पहरस अधिक सिंगार माटी फूली रूप बेकार। आसा मनसा बांधो बार नाम बिना सुना कर बार। गाचो पुत्री राजकुमार नाम भणो सच दोत सवार। प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिखत्यास निवास। गुर शब्दी बिखत्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे। गुर कै शब्द पछाना तोहे। नानक ठांडे चाहे प्रभु दयार तेरे नाम संतोखे कृपा धार। बसंत महला पहला मन भूलो परमस आए जाए। अत लुब्ध लुबानो बिख माए। नय असर दी सहक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए। मन भूलो समझ सो साच नाए। गुर शब्द बिचारे सहज पाए रहाओ। मन भूलो परमस पवर तार। बिल बिरथे चाहे बहु बेकार। मैंगल ज्यो फासस काम हार। कड़बंधन बांध्यो शीस मार। मन मुग्धो दादर भगतहीन दर प्रहट सरापी नाम बीन। तां कै जात ना पाती नाम लीन सब दुख सखाई गुण है बीन। मन चलै ना जाई ठाक राख बिन हर असराते पत ना साख। तू आपे सुरता आप राख
ਧਰ ਧਾਰਨ ਦੇਖੈ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸ ਕਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੇਲੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਮਾਏ, ਅਵਗਣ ਛੋਡੋ ਗੁਣ ਕਮਾਏ, ਗੁਰਸਬਦੀ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਸਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ਕੱਢੈ ਧੋਏ, ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਸਦਾ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੈ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਮਨ ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਸਭ ਮੈਂ ਏਕੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਭ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਭ ਤੇ ਸਿਰ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਅਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਦੇ ਨਾਹੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਮਾਤਾ ਗਾਹੇ, ਤੂੰ ਮੋਟੋ ਠਾਕਰ ਸ਼ਬਦ ਮਾਹੇ, ਮਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨਿਆ ਸੱਚ ਸਲਾਹੇ, ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਜਿਸ ਨਰ ਹੋਏ, ਇਕ ਤਰਾ ਚੈ ਪਰ ਹਰ ਦੋਏ, ਦੂਰ ਦਰਦ ਮਾਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਜੈ ਏਕ ਸਮਾਏ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੇਤੀ ਬਿਲਲਾਏ, ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਚੀਨਸ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਰਹਾਉ ਬੇਦ ਵਖਾਣ ਕਹੈ ਇਕ ਕਹੀਐ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਕਿਨ ਲਹੀਐ, ਏਕੋ ਕਰਤਾ ਜਿਨ ਜਾ ਕੀਆ, ਬਾਜ ਕਲਾ ਧਰ ਗਗਨ ਧਰੀਆ, ਏਕੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਏਕ ਨਿਰਾਲਮ ਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣ, ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਕੋਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਜੁਜੁਗ ਸੋਈ, ਅਨਹਦ ਰਾਤਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਲਖ ਅਪਾਰ।

तू सर सागर गुण गहीर, तू अकुल निरंजन निरंजन परमहीर, तू आपे करता करण योग, ने केवल राजना सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम सुवाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बा। बसंत हिंडोल महला पहला, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नौ सत चौदह तीन चार, कर महल चार बहाली, चारे दीवे चौ हथ दिए एका एका वारी, मेहरवान मधसूदन माधाओ, ऐसी संगत तुम्हारी रहाओ, कर कर लश्कर पावक तेरा, धर्म करे सिकदारी, धरती देग मिलै कवेरा, भाग तेरा भंडारी, ना सा बूर होवै फिर मंगै, नारद करे खुआरी, लाभा देरा बंदी खाना, अवगुण पैर लोहारी, पूंजी मार पवै नित मुदगर, पाव करे कोटवारी, पावै चंगा पावै मंदा, जैसी नजर तुम्हारी, आदि पुरख को अल्लाह कही है, सेखा आई वारी, देवल देवत्या कर लागा, ऐसी कीर्त चाली, कूंजा बाग निवाज मुसल्ला, नील रूप बनवारी, घर घर मियां सब ना जिया, बोली अवर तुम्हारी, जे तू मीर महीपत साहिब, कुदरत कौन हमारी, चारे कुंट सलाम करेंगे, घर घर सिर्फ तुम्हारी, तीर्थ सिमरत पुन दान, किश लाहा मिलै दिहाड़ी, नानक नाम मिलै वडियाई, मेका कड़ी संभाली, बसंत हिंडोल कर दूजा महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काया नगर एक बालक वसिया, खिन पल थिर ना रहाई, अन क्यों पाव जतन कर थाके, बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन, सतगुर मिलै ता पूरा पाईए, भज राम नाम निशान रहाओ, एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं वसिया, राम नाम गुर उदग चुआया, फिर हरिया हुआ रसिया, मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया, एक गुरमुख चलत दिखाया, बाहर खोज मोए सब सागत, हर गुरमति कर पाया, दीना दीन दयाल पे है, जो कृष्ण बिदर कर आया, मिलियो सुदामा पावनी तार, सब किश आगे दालत पंज समाया, राम नाम की पैज वडेरी, मेरे ठाकरे आ परखाई, जे सब सागत करे बखीली, एक रत्ती तिल ना कटाई, जन की उसत है राम नामा, दे दे सोभा पाई, निंदक साक तो खब ना सकै तिल, अपने कर लू की लाई, जन को जन मिल सोभा पावै, गुण में गुण परगासा, मेरे ठाकर के जन प्रीतम प्यारे, जो होवै दासन दासा, आपे जल परंपर करता, आपे मिल मिलावै, नान गुरमुख सहज मिलाए, ज्यों जल जलै समावै, बसंत महला पंजवा, कर पहला दो तुगिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुन साखी मन जप प्यार, अजामल उदरिया कहे एक बार, बाल्मीकि होवा साध संग, ध्रुव को मिलिया हर निसंग, तेरिया संतां जाचौ चरण रेन, ले मस्तक लावो कर कृपा देन रहाओ, गुण का गण का उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोख, बिपर सुदामे दालद पंज, रे मन तू पी पज गोबिंद, बदक उदारियो खम परहार, कुबजा उदरी अंगुष्ट तार, पिदर उदारियो दास्त पाए, रे मन तू पी हर ते आए, प्रहलाद रखी हर पैज आप, बस्तर शीनत द्रौपदी रखी लाज, जिन जिन सेव्यांत बार,
ਰੇ ਮਨ ਸੇਵ ਤੂੰ ਪਰੈ ਪਾਰ, ਧੰਨੈ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਤਰਲੋਚਨ ਗੁਰਮਿਲ ਪਈ ਸਿੱਧ। ਬੇਣੀ ਕਹੋ ਗੁਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਪੀ ਹੋਏ ਦਾਸ, ਜੈ ਦੇਵ ਤਿਆਗਿਓ ਅਹੁਮੇਵ, ਨਾਈ ਉਦਰਿਓ ਸੈਨ ਸੇਵ। ਮਨ ਡੀਗ ਨਾ ਡੋਲੈ ਕਹੂੰ ਜਾਏ, ਮਨ ਤੂੰ ਪੀ ਤਰਸੈ ਸਰਨ ਪਾਏ, ਜਿਹਾ ਨਗਰੋ ਠਾਕਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪ, ਸੇ ਤੈ ਲੀਨੇ ਭਗਤ ਰਾਖ। ਤਿਨਕਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕੋਏ, ਇਹ ਬਿਧ ਦੇਖ ਮਨ ਲੱਗਾ ਸੇਵ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਆਇਓ ਏਕ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਦੇਵ ਹਰ ਜੀਓ ਬਸੈ ਸੰਗ। ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਅਨੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਨਕ ਜਨਮ ਭਰਮੇ ਜੋਨ ਮਾਹੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਨਰਕ ਪਾਹੇ, ਭਗਤ ਬਿਹੂਨਾ ਖੰਡ ਖੰਡ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਜਮ ਦੇਤ ਡੰਡ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਮੀਤ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤ। ਰਹਾਓ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਵਤ ਕਹੂੰ ਕਾਜ, ਤੂੰ ਬਾਦਰ ਸਭ ਮਾਇਆ ਸਾਜ।

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम ना हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा ना है, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन मैं गावार। माया मोहे बहु परमया, किरत रेख कर करमया। करने हारा लिपत आप, नहीं लेप प्रपुन पाप। राख ले हो गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूर्ण कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करनहार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की शरणाए। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै, हो हरिया पाई। कर्म लिखन तै पाई है, एह रुत सुहाई। वन त्रैण त्रिपौन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुखी उपजै, लथी सब शाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुन ना ताई। पंजे बदे महाबली, कर सच्चा टोवा। अपने चरण जपायन, विचदै खड़ोवा। रोग सोग सा मिट गए, नित नवा निरोवा। दिन रैण नाम त्याईंदा, फिर पाए ना मोवा। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होवा। किथों उपजै कह रहै, कै माए समावै। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावै। कहन त्याय न सुन नित, से भगत सुहावै। अगमा गोचर साहेबो, दूसर लवै ना लावै। सच पूरै गुरु उपदेसिया, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मौली धरती मौलिया आकाश, कटकट मौलिया आत्म प्रगास। राजा राम मौलिया अंत पाए, जै देखा तै रहा समाए। रहाओ द्वितीया मौले चार वेद, सिमरत मौली स्यो कतेब। शंकर मौलिया योग ध्यान, कबीर को स्वामी सब समान। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग ध्यान। सन्यासी माते हमेव, तपसी माते तब कह पेव। सब मत माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग। रहाओ जागे सुख देओ आर्यकूर, हनुमंत जागे तर लंकूर। शंकर जागे चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सुबत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर भज राम नाम। जोय खसम है जाया, पूत बाप खेल आया। बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ। सुत मुकलाई अपनी माओ। रहाओ पग्गा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नर पैसोवै, बिन बासन खीर बलोवै। बिन असन गऊ लवेरी, पेंडे बिन बाड़ कनेरी। बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए पंड साल, संग सखा बहुलिए बाल। मोको कहां पढ़ाव सियाल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़ने से नहीं काम। रहाओ संडे मर कह कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छिड़ाऊ मेरो कहो मान। मोको कहां सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार। एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार। काड़ खड़ग को प्यो रसाए, तुझ रख नहारो मोहे बताए। प्रभ थमते निकसे कै विस्तार, हर नक्स छेद्यो नख बिदार। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव। कहे कबीर को लखे ना पार, प्रहलाद उधारे अनकबार।
ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਮੱਧੇ ਮਦਨ ਚੋਰ ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰਲੀਨ ਮੋਰ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਨਾ ਬਿਗੂਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਆਹੇ ਮਾਦਾ ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਸਯੋ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ ਰਹਾਓ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਿਵ ਸੁਕਾਦ ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦ ਕਬ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਤਾਰ ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਵਸਰ ਚੱਲੇ ਸਾਰ ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੋ ਮੋਹੇ ਥਾਹ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੁਖ ਕਹੋ ਕਾਹੇ ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖਿਆਥ ਤੀਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਰਹੁ ਕਬੀਰ ਨਾਇਕ ਏਕ ਬਨਜਾਰੇ ਪਾਚ ਬਰਦ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗ ਕਾਚ ਨਹੋ ਬਹੀਆਂ ਦਸ ਗੋਣ ਆਹੇ ਕਸਨ ਬਹੱਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਣਜ ਸਿਓ ਨਹੀਂ ਨਕਾਜ ਜਿਹ ਘਟੈ ਮੂਲ ਨਿਤ ਬੜੈ ਬਿਆਜ ਰਹਾਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲ ਬਨ ਯਕੀਨ ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ ਤੀਨ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤਰਾਰ ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹੱਥ ਚਾਰ ਪੂੰਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਨਜ ਟੂਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਟਾਂਡੋ ਗਯੋ ਫੂਟ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪਾਜ ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਕਰ ਦੂਜਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

रहे अपहगे। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैसहो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे। इंद्री की जूठ उतर सनाही, ब्रह्म अग्न के लूठे। अग्न पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया। जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा। कह कबीर ते नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मांग, कह चंदन चोवा बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगल बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो को लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै, लोग हसै। चरण कमल मेरा ही रह बसै रहाओ। जैसे अपने तरह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना।

नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा, लोभ लहर अत निजर बाजे काया डूबे केसवा, संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बीठला, रहाओ अनल बेड़ा हों खेव ना सकाओ तेरा पार ना पाया बीठला, हो दयाल सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा, नामा कह हों तार पी ना जाना, मोको बहां दे बीठला, सहज अवल धूड़ मणि गाड़ी चालती, पीछे तिनका लेकर हागती, जैसे पनकत थ्रू टिट हाँकती, सर तोवन चाली लाडली, रहाओ तो भी तो वह बिरा बिराता, हर चरण मेरा मन राता, पंत नाम देव रम रहे अपने भगत पर कर दया, बसंत बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तुझे सुजनता कशु नाहे, पहरावा देखे उपजाहे, गर्भवती का नाही ठाओ, तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ, तू काए गर्भ बावली, जैसे पांदव खूंब राज, तू तिस्ते खरी उतावली रहाओ, जैसे कुरंक नहीं पायो पेद, तन सुगंध ढूंढे परदेस, आप तन का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे खुवार, पुत्र कलत्र का करे हंकार, ठाकर लेखा मंगनहार, फेड़े का दुख सह जियो, पाछे किसे पुकारे पियो पियो, साधु की जौ लेहे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट, कह रविदास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम, बसंत कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुरह की जैसी तेरी चाल, तेरी पुष्ट ऊपर चमक बाल, इस घर में है सो तू ढूंढ खाहे, और किसी के तू मत ही जाहे, रहाओ चाकी चट्टे चून खाहे, चाकी का चीथरा कहाँ ले जाहे, शीके पर तेरी बहुत डीठ, मत लकड़ी सोटा तेरी पर पीठ, कह कबीर भोग पले कीन, मत को मारे ईट टेम, राग सारंग चौब दे महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरपौ निर्वैर, अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद, अपने ठाकर की हों चेरी, चरण गहे जग जीवन प्रभ के, हों मैं मारन बेरी रहाओ, पूरन परम ज्योत परमेश्वर, प्रीतम प्राण हमारे, मोहन मोहे लिया मन मेरा, समझ सो शब्द विचारे, मन मुख हीन होछी मत झूठी, मन तन पीर शरीरे, जबकि राम रंगी लहराती, राम जपत मन तीरे, हाँ मैं छोड़ पई बैरागन, तब साची सुरत समानी, अकोल निरंजन स्यो मन मानिया, बिसरी लाज लुकानी, पूर पवेख नाही तुम जैसे, मेरे प्रीतम प्राण आधारा, हर कै नाम रति सुहागन, नानक राम पतारा, सारंग महला पहला, हर बिन क्यों रही है दुख व्यापै, जेहवा साधना फीकी रस बिन, बिन प्रभ काल संतापै, रहाओ जब लग दर्शना पर सह प्रीतम, तब लग भूख प्यासी, दर्शन देखत ही मन मानिया, जल रस कमल बेगासी, ऊन व कनहर गरजै बरसै, कोकल मोर बैरागै, तरवर बिरख बिहंग भयंगम, कर पिर तन सोहागै, कुचर करूप कुनार कुलखनी, तिरका सहज न जानिया, हर रस रंग रसन नहीं तृप्ति, दुर्मत दुख समानिया, आए न जावे ना दुख पावे, ना दुख दर्द शरीरे, नानक प्रभ ते सह सुहेली, प्रभ देखत ही मन तीरे, सारंग महला पहला, दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा, सतगुर बचन मेरो मन मानिया, हर पाए प्राण आधारा, रहाओ
ਇਨ ਬਿਦ ਹਰ ਮਿਲੀਐ ਵਰ ਕਾਮਨ ਤਨ ਸੁਹਾਗ ਪਿਆਰੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਸਹਿ ਸਾ ਚੁਕਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਨੈ ਅਭਮਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਉ ਹਿੰਸਾ ਲੋਭ ਵਿਸਾਰੇ ਸਹਿਜ ਰਵੈ ਵਰ ਕਾਮਨ ਪਿਰ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਸੁਵਾਰੇ ਜਾਰੋ ਵੈਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੁਟੰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਮ ਰਸ ਨਾਹੀ ਦੁਬਦਾ ਕਰਮ ਬਿਕਾਰੀ ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹਿਤ ਕਉ ਦੁਰੈ ਨਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਧਾਰੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਮ ਧੂਰ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਹਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈਐ

जब जब आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन हवाल। राख ले हो दास अपने को सदा सदा कृपाल। सुख निदान नानक प्रभ मेरा सा संग तन माल। सारंग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार। प्रेम भगत गुण गावन गीदे पोहत ने संसार। रहाओ श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी हो साध को आचार। चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी तार। नाम निदान उचरो नित रसना नानक सद बलिहार। सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन मत थोरी। सिमरत नाहे श्री धर ठाकर मिलते अंध दुख कोरी। रहाओ हर के नाम से प्रीत ना लागी अनक भेख बहु जोरी। टूट बार ना लागे ता कहो ज्यो गागर जल फोरी। कर कृपा भगत रस दीजै मन खचत प्रेम रस खोरी। नानक दास तेरी सरनाई प्रभ ज्ञान ना होरी। सारंग महला पंजवा चितवाओ वाह अवसर मन माहे। होय एकत्र मिलो संत साजन गुण गोबिंद नित गाहे। रहाओ बिन हर भजन जेते काम करिए तेते बिरथे जाहे। पूर्ण परमानंद मन मीठो तिस बिन दूसर नाहे। जप तप संजम कर्म सुख साधन तोलना कछुए लाहे। चरण कमल नानक मन बेदियो चरण संग समाहे। सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी। आगे कुशल पाछे खेम सुखा सिमरत नाम स्वामी। रहाओ साजन मीत सखा हर मेरा गुण गोपाल हर राया। बिसरना जाई निमख हृदय ते पूरे गुरु मिलाया। कर कृपा राखे दास अपने जी जंत वस जाके। एकाले पूर्ण परमेश्वर पाओ नहीं नानक ताके। सारंग महला पंजवा जाके राम को बल होए। सगल मनोरथ पूर्ण ताहू के दुख ना व्यापै कोए। रहाओ जो जो जो जन भगत दास निज प्रभ का सुन जीवा तिस सोए। उद्यम करो दर्शन पेखन कहो कर्म प्राप्त होए। गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए। दान देह नानक अपने कहो चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए। करहो कृपा गोपाल बीठले बिसरना कभी जाए। रहाओ मन तन तन सब तुमरा स्वामी आन दूजी जाए। ज्यो तू रखे तिही रहना तुमरा पैने खाए। साध संगत कै बल बल जाई बहुना जन्मा ताए। नानक दास तेरी सरनाई जो भावे तवे चलाए। सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुखसार। आन काम बेकार माया सगल दिसे शार। रहाओ ग्रह अंधकूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार। अनक जोनी प्रमत हार्यो प्रमत बारंबार। पतत पावन भगत वछल दीन कृपा तार। कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार। सारंग महला पंजवा विराजत राम को प्रताप। आद ब्याज पाद सब नासी बिनसे तीन ताप। रहाओ तृष्णा बुझी पूर्ण सब आसा चूके सोख संताप। गुण गावत्या चौतव नासी मंतन आत्म त्राप। काम क्रोध लोभ मद मत सर साधु कै संग खाप। भगत वछर पै कट नहारे नानक के माई बाप। सारंग महला पंजवा आतर नाम बिन संसार। तृप्त न होवत कुकरी आसा इत लागो बिख्या शार। रहाओ पाए ठगौरी आप लायो जन्मत बारो बार। हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर। हो कृपाल दीन दुख भंजन तेरिया संत की रावार। नानक दास दर्श प्रभ जाचै मन तन को आधार। सारंग महला पंजवा मैला हर के नाम।